हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम पर 101.6 मेगा हर्ट्ज। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 5वीं तिथि, तदनुसार 27 जुलाई 2026। प्रातःकाल के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6 बजने को है। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
2: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग 2 सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के

0: जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम पर 101.6 मेगाहर्ट्ज। प्रातःकाल के 6:05 हो चुके हैं। समय है आज के विचार का। आज के विचार का विषय है मनुष्य का पतन। आलेख और वाचक स्वर है श्री प्रमोद कुमार शर्मा का।
2: मनुष्य का उत्थान पतन भाव से होता है, वस्तु परिस्थिति आदि से नहीं। श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी के इस विचार के अनुसार मनुष्य का पतन और उत्थान भाव जगत से संबंधित है। हमारा भाव किस चीज के प्रति कैसा है, वैसा ही हमसे कर्म होगा और वैसा ही आचरण बनेगा। इन अर्थों में हमें अपने भाव जगत की शुद्धता की तरफ देखना होगा। भाव जगत भावनाओं से बनता है। हमारी भावनाएं कैसी हैं, राजसिक, तामसिक या सात्विक? इसमें राजसिक और तामसिक भावनाएं तो पतन की तरफ ले जाती है और सात्विक भावनाएं उत्थान की तरफ ले जाती है। अब कोई ये पूछे कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा भाव जगत कैसा है, क्योंकि भाव सागर तो अमूर्त है, तो ऐसे में अपनी भावनाओं का गहरा अनुसंधान करें, ध्यान करें, तो आप पाएंगे कि आपकी भावनाएं आपके सोचे गए संकल्पों का अनुसरण कर रही है। तो फिर ये सोचें कि आप क्या सोचते हैं। इसमें जो अच्छा सोच रहे हैं उसे तो रख लें और जो बुरा सोच रहे हैं उसे हटा दें। इसकी जगह जो निर्वात, जो शून्य पैदा होगा, वहाँ सच्चिंतन डाल दें। धीरे धीरे आपकी भावनाएं शुद्ध होने लगेंगी। दूसरा ये भी सही है कि विचारों के साथ साथ सत्संग कीर्तन भी उतना ही जरूरी है। बड़े बड़े नास्तिक और चोर लुटेरे भी सत्संग की बातें सुनकर बदल गए। उन्होंने तामसिकता को पूरी तरह से त्याग दिया। ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपनी तामसिक वृत्तियों को पूरी तरह से त्याग देना होगा। मनुष्य विचारों का पुलिंदा है, पर नानाविध विचारों से भरा रहता है। कोशिश करें कि आप अपने विचारों की दुनिया में इतना भी न खो जाएं कि आप लौटना ही भूल जाएं। हमें हर बार दूर दूर तक की विचार यात्राएं करके अपने भीतर लौटना होता है, जहां हम पूर्णता का बोध लिए संसार में कमलवत खिले रहते हैं। इस दृष्टि से श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी की ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं, एकांत मिले या समुदाय मिले, साधक को अपना साधन कभी भी किसी परिस्थिति के अधीन नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत प्राप्त परिस्थिति के अनुसार ही अपना साधन बनाना चाहिए। इन अर्थों में हमें समझना होगा कि जगत यानी संसार हमें किसी परिस्थिति के साथ

0: ढलकर वैसा आचरण नहीं करना है, वरना अपने आचरण से परिस्थिति का उपयोग करना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, अच्छी या बुरी, साधक को दोनों से ही तटस्थ और जल में कमल के समान रहना चाहिए, तभी आप अपने जीवन की सार्थकता खोज सकते हैं।
1: आप सुन रहे थे आज का विचार। विषय था मनुष्य का पतन। आलेख और वाचक स्वर था श्री प्रमोद कुमार शर्मा का।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। प्रातःकाल के 6:10 हो रहे हैं। जी हाँ, प्रातःकाल के 6:10 हो रहे हैं। समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं इस शिव भजन के साथ, जिसको स्वर दिया है सुरेश वाडकर ने।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में ये भजन था अनुराधा पोडवाल और साथियों के स्वरों में। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, स्वर है अनुप जलोटा और साथियों का।

जिंदी 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातःकाल के 6:30 बजने को है। समय हो रहा है रामचरित मानस गान का। कार्यक्रम रामचरित मानस गान में आज सुनिए बालकांड के दोहा संख्या 276 से दोहा संख्या 279 के अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। स्वर है श्रीकांत परगांवकर और रविंद्र साठे का।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति का स्वर था अनुज जलोटा और साथियों का। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि जबरता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी सुशील धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्रीराम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं, वास्तविक दोषी तो स्वयं राम है, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक रहे हैं।

आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। धारावाहिक संख्या था 101। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में किसान श्रोताओं के लिए होगा कार्यक्रम खेती की बातें। रोजगार की नई संभावनाएं, ऊटनी दूध विषय पर जानकारी देंगी श्रीमती मुक्ता जैन। प्रातः 6:50 का समय रहेगा लोक भजन का। सुबह 7:00 होगा कार्यक्रम सुप्रभात। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुण्यतिथि। राजस्थान और पर्यटन जैसे विषयों पर होंगी चर्चाएं। कार्यक्रम में होगी वार्ता जीवन में अनुशासन का महत्व। वार्ताकार होंगे श्री संजीव कुमार यादव। प्रस्तुति रहेगी श्रीमती बरखा थामी व्यास की। संयोजनकर्ता होंगे श्री अमित सिंह। कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकेंगे सुबह 7:30। तत्पश्चात हमारी पहली सभा में सुबह 10:00 कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप नई फिल्मों से गीत सुन सकेंगे और सुबह 11:00 कार्यक्रम फिल्म संगीत में होंगे भूले बिसरे गीत। दिन में 12:40 का समय भी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का रहेगा। दोपहर 2:30 भी आप फिल्म संगीत का आनंद उठा सकेंगे। हमारी दूसरी सभा में शाम 6:05 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप एक ही गीतकार के गीतों का आनंद ले सकेंगे। कार्यक्रम फिल्म संगीत रात्रि 8:15 और रात्रि 9:15 पर भी प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:30 कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप पुरानी फिल्मों से गीतों का लुत्फ ले सकेंगे। सुबह 8:30 कार्यक्रम सौरभ लेकर हम उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में होगी वार्ता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रीय चेतना विषय पर। वार्ताकार रहेंगे श्री श्याम सुंदर बिश्नोई। प्रस्तुति होगी श्रीमती बरखा थामी व्यास की। संयोजनकर्ता होंगे श्री अमित सिंह। कार्यक्रम लोक संगीत का आनंद आप उठा सकेंगे हमारी पहली सभा में सुबह 9:10 पर। तत्पश्चात आप कार्यक्रम लोक संगीत का आनंद ले सकेंगे हमारी दूसरी सभा में। प्रसारण समय रहेगा रात्रि 8:30 का।

कार्यक्रम सुगम संगीत हमारी दूसरी सभा में रात्रि 7:45 प्रसारित होगा। तत्पश्चात आप सुगम संगीत का आनंद ले सकेंगे। एक बार पुनः ध्यान दें, रात्रि 7:45। सुबह 9:30 होगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT। दिन में 12:40 पर आप सुनेंगे नाटक ठहरी हुई जिंदगी, लेखक रहेंगी श्रीमती शांति देवी गंगवाल। महिला जगत कार्यक्रम महिलाओं के लिए दोपहर 1:05 पर प्रसारित होगा। चर्चाएं होंगी विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका, विटामिन B12 की कमी, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करें। साथ ही साथ कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे वार्ता मरु प्रदेश की अद्भुत और अद्वितीय हवेलियां। वार्ताकार होंगी श्रीमती सुनीता श्रीमाली। दूसरी सभा के प्रारंभ में आप शाम 5:05 पर सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। युवा साथी आज की बात सुनेंगे फेक न्यूज से बचें। लघु जानकारियां होंगी राजस्थान खनिजों का अजायब घर, लोक संस्कृति और नई पीढ़ी। साथ ही साथ पॉडकास्ट संस्कृति पर भी रहेगी चर्चा। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण जगत होगा शाम 7:00 प्रसारित। चर्चा होगी इस सप्ताह के कृषि कार्य, सहजन के वृक्ष लगाएं, राजस्थान तारबंदी योजना और देशी गो

0: फसलों का संरक्षण। रात्रि 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से आप संसद समीक्षा सुन सकेंगे और आकाशवाणी दिल्ली के हमारे आज के प्रसारणों में रात्रि 10 बजे आप संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण सुन सकेंगे। ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोरा मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातःकाल के 6:45 हो चुके हैं। किसान श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, रोजगार की नई संभावनाएं, ऊंटनी दूध विषय पर जानकारी दे रही हैं श्रीमती मुक्ता जैन।
1: किसान भाई आज अपा बात करा ऊंटनी रे दूध रे फायदे रे बारे में। दूध अपने शरीर वास्ते कितो फायदेमंद है आपा सगला जाना है। दूध रे स्वास्थ्य फायदा ने जानन और जानन ही अपा इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल करो जगह है।

0: जब तक दूध की बात है, गाय और भैंस ये मुख्य स्रोत माने जा रहे हैं, लेकिन गाय भैंस के अलावा ऊंट भी स्वास्थ्य वास्ते घने फायदेमंद हुए हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हुए है, सेंचुरेट फेट कम हुए है। और आपने जानकर हैरानी होगी कि इस ऊंट दूध का फायदा कई सारा है। इसी वजह से अपने जो दैनिक आहार है जिनमें ऊंट दूध शामिल करे गए है, इनका अनेक फायदा है। जिया की लीवर में लीवर वास्ते चोखो साबित हुए है। ऊंटनी का दूध का उपयोग लीवर में स्वस्थ रखने में मदद करे है। लीवर की कार्य प्रणाली में खुश जिका कई एग्जाम्स हुए जिका रक्त में आपने शामिल हुए है। जब आपने कोई भी शरीर पर जो आपने लीवर डैमेज हुए तो इनमें आपने एग्जाम स्तर बढ़ जावे है। ऊंटनी का दूध लीवर एग्जाम्स का बढ़ेड़ा स्तर में कम करने में मदद करे है। लीवर स्वास्थ्य की दृष्टि से एक सकारात्मक है जिका में ऊंटनी का दूध घणो महत्वपूर्ण साबित हुए है। इसके अलावा मधुमेह ने नियंत्रण करने वास्ते भी ऊंटनी का दूध घणो कारगर सिद्ध हुए है। ऊंटनी का दूध मेरा लाभ ब्लड शुगर ने नियंत्रण करने में मिल सके है, क्योंकि इनमें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रभाव पाया जावे है। इन सेवन से आपने मधुमेह रोग में भी आपा काफी बचाव कर सका है। कैंसर में भी ऊंटनी का दूध काफी बचाव करे है। एक बड़े शोध के अनुसार आया है कि ऊंटनी के दूध में उपयोग से ऑटोफेगी में बढ़ावा देर आंत और स्तन कैंसर में आप कम कर सका हाँ। किडनी के वास्ते भी ऊंटनी का दूध काफी फायदेमंद हुए है। दरअसल ये बात में आप जाना हाँ कि जिको किडनी में जिको भी आपने नुकसान पहुंचाने वाला जिका भी दुष्प्रभाव है बने ऊंटनी के दूध में आप प्रभाव सु कम कर सका हाँ। और ऑटिज्म के लक्षण में भी काम आवे है। ऑटिज्म तंत्रिका और विकास संबंधी एक विकार रोग है जिको संचार और बातचीत की क्षमता में बाधित करे है। बचपन में शुरू हो जाया करे है, जीवन भर रह सके है। इसके पीछे अनेक तरह का कारण हुए तनाव वगैरह, तो ऊंटनी के दूध इनका भी आप फायदा देख सका हाँ। इनके अलावा आंता से जुड़ोड़ी समस्या में भी ऊंटनी का दूध लाभदायक सी साबित हुए है। एक शोध वो अपन सामने आयो है कि ऊंटनी का दूध पेट और आंता से जुड़ोड़ा विकारा में आपने आराम दिलाने में मदद करे है। सागे आपन जो इम्यून सिस्टम है भी ने मजबूत करने में भी सहयोग प्रदान करे है। और आंता से जुड़ोड़ी समस्या में लड़न में भी शरीर में मदद मिले है। इनके अलावा एलर्जी की जिकी समस्या हुए है जिका में भी ऊंटनी का दूध का फायदा बैक्टीरिया और फंगस वाली जिकी एलर्जी है बीमें भी आपने आराम दिलावे है। जिका मतलब एलर्जी फैलाने वाला इन जीवाणुओं ने खत्म करने में मदद करे है। और अपन देखियो गए है कि शिशु और जिका छोटा टाबर हुए है बच्चा बने गाय का दूध से एलर्जी हुए है, इन कारण इनो सेवन को नहीं कर पावे है। इनमें ऊंटनी का दूध उपयोग किए जा सके।
1: किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में थी जानकारी रोजगार की नई संभावनाएं ऊंटनी दूध विषय पर। जानकारी दी थी श्रीमती मुक्ता जैन ने। आकाशवाणी बीकानेर का ये

ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः काल के 6:50 होने को है। समय है लोक भजन का। कलाकार है पुष्पा सैनी।

0: आप सुन रहे थे पुष्पा सैनी का गाया लोक भजन। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रातःकाल के 6:55 होने को है। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नंदन नीलेकणी करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्व निदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्व निदेशकः वी कामकोटिः, पूर्व शिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञः अमित लाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानाम् आधारेण भावि परीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदप्योक्तं यत् परीक्षा सम्बद्धानाम् अनियमिततानां निवारणाय कठोर प्रावधानयुक्तं नूतन विधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकम् 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमम् 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतद् विधेयकम् लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गत शुक्रवासरे केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यता भंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतर दंड विधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी शिक्षा मंत्रिणः कार्यभारम् अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गतशनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमान मंत्रालयैः सह शिक्षा मंत्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तान देशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य सम्पूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।

0: यही अन्याय होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है, क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
1: रक्षा मंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रास नगरे सप्तविंशतितमं कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, प्रयासः श्यामबाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु मल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशो द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताह

0: अनन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्य अनन्तरं अन्तरिम युद्ध विराम विषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्त राष्ट्र संघस्य अमेरिका देशस्य राजदूतः माइक वॉल्ट्स इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपति ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु महिलानां 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू इत्येषा स्वर्ण पदकं विजितवती। इति वार्ता।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 7 बज रहे हैं। समय है कार्यक्रम सुप्रभात का।

सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज का दिन खास है, महत्वपूर्ण है। आज 27 जुलाई है। सपनों को सच करने वाले भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद करने का दिन। आज हम श्रद्धा, सम्मान और प्रेरणा के साथ याद कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, शिक्षक और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। 27 जुलाई यानी आज का दिन केवल एक पुण्यतिथि नहीं है श्रोताओं, बल्कि उस महान व्यक्तित्व को स्मरण करने का अवसर है जिसने अपने जीवन से ये साबित किया कि साधारण परिस्थितियों में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपने सपनों और मेहनत के बल पर असाधारण ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण से परिवार में हुआ। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी अपनी शिक्षा और सपनों को नहीं छोड़ा। बचपन में वो समाचार पत्र बांटते थे, लेकिन उनके मन में कुछ बड़ा करने का संकल्प हमेशा बना रहा। आगे चलकर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों की वजह से ही उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में उनकी भूमिका भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का गौरवपूर्ण अध्याय है। वर्ष 2002 से लेकर 2007 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे, लेकिन राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उनकी सबसे बड़ी पहचान एक शिक्षक और प्रेरक वक्ता की ही रही। वो जहां भी जाते युवाओं से संवाद अवश्य करते। उनका विश्वास था कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के सपनों और उनकी मेहनत में ही बसता है। डॉक्टर कलाम का एक प्रसिद्ध कथन है, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये केवल एक प्रेरक वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन का मंत्र है। इसका अर्थ ये है कि अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो और हम उसके लिए लगातार कोशिश करें तो सफलता निश्चित तौर पर हमारे कदम चूमती है। डॉक्टर कलाम का जीवन श्रोताओं हमें सिखाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत, सकारात्मक सोच ही सफलता की असली कुंजी है। उन्होंने हमेशा ही कहा कि असफलता से घबराना नहीं, क्योंकि असफलता ही हमें बेहतर बनने का मौका देती है। वो विज्ञान और तकनीक को केवल विकास का जरिया नहीं समझते थे, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। उनका सपना था कि भारत एक विकसित, आत्मनिर्भर और ज्ञानवान राष्ट्र बने। डॉक्टर कलाम को किताबों से खास प्यार था। उन्होंने कई प्रेरणादायक किताबें लिखी जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइट माइंड्स और इंडिया 2020 विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। श्रोताओं, डॉक्टर कलाम का जीवन जितना महान था, उनका अंतिम क्षण भी उतना ही प्रेरणादायक रहा। 27 जुलाई 2015 को वो मेघालय के शिलांग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। मंच पर युवाओं के बीच ज्ञान बांटते हुए उन्हें हृदयघात हुआ और उन्होंने अंतिम सांस ली। सचमुच एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बीच ही अमर हो गया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम केवल उन्हें श्रद्धांजलि ही ना दें, बल्कि उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प भी लें। आइए हम सब मिलकर प्रण करें, हम बड़े सपने देखेंगे, ईमानदारी और मेहनत को अपना जीवन मंत्र बनाएंगे, अपने देश की प्रगति में अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे, विज्ञान, शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देंगे और हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। कलाम कहा करते थे, अगर सूरज की तरह चमक

है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। ये संदेश हमें बताता है कि बिना कठिन परिश्रम के कोई भी महान उपलब्धि संभव नहीं है। हमारा राष्ट्र यानी ये भारत राष्ट्र, भारतवर्ष पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण रहा है जिसमें अनेकों अनेक महान विभूतियों ने जन्म दिया और उनका जीवन हमें बहुत कुछ सिखलाता है। भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया जिसमें बड़े बड़े योगदानों में ऐसे योगदान शामिल हैं जिनके बगैर विश्व आज जिस स्वरूप में जिस शक्ल में है उसका उस स्वरूप और उस शक्ल में होना मौजूद नहीं था। ज़्यादा बात ना करके कार्यक्रम में भारत की महानता को समर्पित करते हैं ये पहला गीत।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारु चैनल की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, जब भी महान व्यक्तित्व के जीवन से कुछ सीखने की बात होती है तो सबसे पहली बात होती है अनुशासन की। जी हाँ, सभी महान व्यक्तित्व हमें बताते हैं कि जीवन में अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। अनुशासन पर हमारी बात को पूरी करती है आज की वार्ता, जीवन में अनुशासन का महत्व। वार्ताकार हैं श्री संजीव कुमार यादव, प्रस्तुति है श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, संयोजनकर्ता हैं श्री अमित सिंह।
2: अनुशासन जीवन की वह धुरी है जिसके बिना सफलता और एक संतुलित जीवन की कल्पना करना असंभव है। सरल शब्दों में कहें तो नियमों के दायरे में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाना और खुद पर नियंत्रण रखना ही अनुशासन है। जीवन में अनुशासन सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अनुशासित व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु पीछे और शासन नियम, यानी किसी नियम या सही रास्ते का पालन करना ही अनुशासन है। यह केवल बड़ों की बात मानना नहीं है, खुद पर नियंत्रण रखना है। हमारे जीवन में अनुशासन एक ऐसा गुण है जिसकी आवश्यकता मानव जीवन में पग पग पर पड़ती है। इसका प्रारंभ जीवन में बचपन से ही होना चाहिए और यहीं से ही मानव के चरित्र का निर्माण हो सकता है। अनुशासन राष्ट्रीय जीवन का प्राण है। यदि प्रशासन, स्कूल, समाज, परिवार सभी जगह सब लोग अनुशासन में रहेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तो कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी या अशांति नहीं होगी। नियम तोड़ने से ही अनुशासनहीनता बढ़ती है तथा समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। बड़े होकर अनुशासन सीखना कठिन है। अनुशासन का पाठ बचपन से परिवार में रहकर सीखा जाता है। बचपन के समय में अनुशासन सिखाने की जिम्मेवारी माता पिता तथा गुरुओं की होती है। अनुशासन ही मनुष्य को अच्छा व्यक्ति व एक आदर्श नागरिक बनाता है। विद्यालय जाकर अनुशासन की भावना का विकास होता है। अच्छी शिक्षा विद्यार्थी को अनुशासन का पालन करना सिखाती है। वास्तव में अनुशासन शिक्षा के लिए विद्यालय ही सर्वोच्च स्थान है। विद्यार्थियों को यहाँ पर अनुशासन की शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए ताकि उनका सामाजिक दृष्टि से संपूर्ण विकास हो सके। उन्हें सदा गुरुओं की आज्ञा का पालन

करना चाहिए। सच्चा अनुशासन ही मनुष्य को पशु से ऊपर उठाकर वास्तव में मानव बनाता है। अनुशासित विद्यार्थी अनुशासित नागरिक बनते हैं। अनुशासित नागरिक एक अनुशासित समाज का निर्माण करते हैं। एक अनुशासित समाज पीढ़ियों तक चलने वाली संस्कृति की और पहला कदम है। अनुशासन का पाठ वास्तव में प्रेम का पाठ होता है, ना कि कठोरता का। अतः इसे प्रेम के साथ सीखना चाहिए। बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते समय कुछ कठोर कदम उठाने आवश्यक हैं, लेकिन आजकल माता पिता अपने बच्चों को बाल्य अवस्था में अति प्रेम में आकर उन्हें कुछ छूट दे देते हैं, जिससे उनमें अनुशासन की कमी आ जाती है। इस बात का पता उन्हें समय निकल जाने के बाद होता है। आज हमारे जीवन में अनुशासन की सख्त आवश्यकता है। अनुशासन जीवन के विकास का अनिवार्य तत्व है। जो अनुशासित नहीं होता वह दूसरों का हित तो नहीं कर पाता, स्वयं का अहित भी टाल नहीं सकता। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का सेतु है। जीवन में अनुशासन का महत्व सफलता का आधार। अनुशासित व्यक्ति अपने काम को समय पर पूरा करता है, इससे वह लक्ष्य पाना आसान हो जाता है। तनाव से मुक्ति। जो लोग समय के साथ और योजना बनाकर काम करते हैं वे तनाव से मुक्त रहते हैं। चरित्र का निर्माण बचपन से ही अनुशासन सीखने वाले बच्चे बड़े होकर अच्छे नागरिक बनते हैं। स्वास्थ्य लाभ। सही समय पर सोना उठना और खाना पीना अनुशासन का ही हिस्सा है, जो हमें स्वस्थ रखता है। हमें अनुशासन प्रकृति से सीखना चाहिए। सूरज हमेशा समय पर उगता है और छुपता है। ऋतुएं भी अपने समय पर बदलती हैं। यदि प्रकृति अनुशासन तोड़ दे तो जीवन भी एक रुक जाएगा। मनुष्य के जीवन में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके लिए यह आवश्यक है कि वह समाज के सभी प्राणियों के साथ सामंजस्य स्थापित करे। इसके लिए अनुशासन का होना अत्यंत अनिवार्य है। अनुशासन के बिना किसी भी समाज में अराजकता का माहौल व्याप्त होना स्वाभाविक है। अनुशासनहीन समाज के सभी मनुष्यों को अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अनुशासन के बिना आनंददायक तथा सुखी जीवन की कल्पना करना कठिन है। अनुशासन प्रत्येक संस्था की आवश्यकता है, फिर वह चाहे परिवार ही क्यों ना हो। इसी तरह परिवार के सदस्य यदि अनुशासित ना हो तो उस परिवार का अव्यवस्थित होना स्वाभाविक है। इसी तरह सरकारी कार्यालयों में यदि कर्मचारी अनुशासित ना हो तो वहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाएगा। इस तरह स्पष्ट है कि अनुशासन के बिना ना तो परिवार चल सकता है, ना कोई संस्थान और ना ही कोई राष्ट्र। अनुशासन किसी भी सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता है। अनुशासन ना केवल व्यक्ति हित बल्कि सामाजिक हित के दृष्टिकोण से भी अनिवार्य है। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का महत्व है। अनुशासन से धैर्य और समझदारी का विकास होता है। समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इससे कार्य क्षमता का विकास होता है तथा व्यक्ति में नेतृत्व की शक्ति जागृत होने लगती है। इसलिए हमें हमेशा अनुशासन पूर्वक आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। मानव जीवन की सफलता का एकमात्र अनुशासन मंत्र है। सफलता का मूल मंत्र अनुशासन। संसार के जितने भी महान और सफल व्यक्ति हुए हैं, चाहे वे वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो, सैनिक हो या व्यवसायी, उनकी सफलता के पीछे केवल उनकी प्रतिभा नहीं बल्कि उनका कड़ा अनुशासन रहा है। प्रतिभा आपको शुरुआत दे सकती है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जब हम खुद को अनुशासित करते हैं तो हम आलस्य और टालमटोल की आदत पर विजय पा लेते हैं। यह हमारे भीतर आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का संचार करता है। कड़ी मेहनत और अनुशासन के बिना सफलता का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। यदि आपके पास बहुत प्रतिभा है लेकिन आप में अनुशासन नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ जा सकती है। अनुशासन हमारे सपनों को हकीकत बदलने का माध्यम है। सरल शब्दों में कहें तो सही समय पर सही काम करना ही अनुशासन है। जीवन को सुव्यवस्थित, सफल और सार्थक बनाने के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। बिना अनुशासन के मानव जीवन एक ऐसी नाव के समान है जिसमें पतवार ही ना हो। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की भूमिका। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की नींव माना जाता है। इस काल में अनुशासन का महत्व सबसे अधिक

0: होता है। समय का सही उपयोग एक अनुशासित छात्र कभी भी आज का काम कल पर नहीं टालता। वह अपनी पढ़ाई, खेलकूद और आराम के लिए एक निश्चित समय सारणी बनाता है। सफलता की कुंजी अनुशासन छात्रों में एकाग्रता और धैर्य पैदा करता है। जो छात्र अनुशासित रहकर पढ़ाई करते हैं वे परीक्षा में तो अच्छे अंक लाते ही हैं, साथ ही भविष्य के लिए एक बेहतरीन नागरिक भी बनते हैं। किसी भी मनुष्य की व्यक्तिगत सफलता में उसके अनुशासित जीवन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती आदि का जीवन अनुशासन के कारण ही सफल और प्रेरणादायी बन सका। इसी तरह की राष्ट्र की प्रगति भी उसके अनुशासित नागरिकों पर निर्भर होती है। अतः यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज एवं राष्ट्र प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे तो हमें अनुशासित रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्वयं अनुशासित रहेंगे तभी किसी दूसरे को अनुशासित रख सकेंगे। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। देश का नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है जिसका पालन करना चाहिए, क्योंकि जिस देश के नागरिक अनुशासित होते हैं वह देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। अनुशासन कोई बंधन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को स्वतंत्रता और प्रगति का रास्ता दिखाता है। यह हमें खुद पर नियंत्रण रखना सिखाता है। यदि हम अपने जीवन को खुशहाल, सम्मानित और सफल बनाना चाहते हैं तो हमें आज और इसी पल से आत्म अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अनु का मतलब पालन है, शासन का मतलब नियम, जीवन की नींव अनुशासन, सफलता की चाबी अनुशासन। अनुशासन महत्वपूर्ण है जो हमें सफलता तक ले जाता है। अनुशासन वह शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदल देती है।
1: कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वार्ता जीवन में अनुशासन का महत्व। वार्ताकार थे श्री संजीव कुमार यादव। प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की। संयोजनकर्ता थे श्री अमित सिंह। श्रोताओं, जीवन में अनुशासन अति महत्वपूर्ण है। इसके बिना जीवन का कोई भी कर्म नहीं साधा जा सकता। पर अति हर चीज की बुरी होती है। हम स्वयं को अनुशासन के नाम पर नियमों में कई बार इतना अधिक जकड़ लेते हैं कि वो नियम हमारे जीवन की, न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे प्रियजनों के, हमारे परिवार के सदस्यों के, हमारे सामाजिक परिवेश के में भी एक जकड़न बन जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को स्वयं पर इतना हावी ना करें। कभी कभी खुद से साक्षात्कार करने के लिए नियमों को तोड़ देना भी ज़रूरी होता है। तो खुलकर सांस लें और खिलकर खुलकर मुस्कुराएं। कार्यक्रम में लें इस गीत का आनंद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: जीवन भर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, हम बात कर रहे थे भारत की एकता की, भारत की अखंडता की, भारत की विविधता की। और भारत इसीलिए अनूठा है क्योंकि यहाँ हर राज्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जुदा है, पर बावजूद अलग और जुदा होने के जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की संस्कृति तो विश्व प्रसिद्ध है श्रोताओं। चाहे यहाँ जयपुर की बात की जाए, उदयपुर की बात की जाए, बीकानेर की बात हो, जोधपुर की बात हो, कोई राजस्थान का जिला ऐसा नहीं है जिसे पर्यटन की दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना जा सकता है। तो हमें अपनी संस्कृति पर गौरव होना चाहिए और अपने देश के प्रति हमारी कर्तव्य निष्ठा हमेशा बनी रहनी चाहिए। आपसे बात यूं ही जारी रहेगी, तब तक लेते हैं एक विराम।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और

0: फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मणिपुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, तो हम अपने जीवन में आदर्शों को अपनाएंगे, महान व्यक्तित्वों से सीखेंगे, अनुशासन हमारे जीवन की आधारशिला होगा। इसी संकल्प और प्रण के साथ कार्यक्रम सुप्रभात से दें आज्ञा, नमस्कार।

आप सुन रहे थे सुप्रभात आकाशवाणी बीकानेर का। ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ज पर। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की पहली पेशकश सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है धनवान। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने। संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में साहिल लुधियानवी का लिखा गीत किसी

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए फिल्म सिलसिला से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अगला गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है शिव हरी का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और बाबला मेहता की आवाजों में फिल्म चांदनी से आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीतकार हैं शिव हरी।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। लीजिए सुनिए फिल्म आपकी कसम से। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

फिल्म आपकी कसम के इस गीत के साथ, जिसे आवाजें दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था, संगीत था आर डी बर्मन का। फिल्म गीतों का ये सफर यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़।

0: और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8 बजने को ही आकाशवाणी दिल्ली से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: घर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। तई मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
6: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
5: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संदिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
7: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बने।

0: जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बन गए 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
3: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
4: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंद्र और मानगंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में

0: कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
1: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंदम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है, इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलेकणी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने नीलेकणी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में

केवल एक कवि नहीं थे बल्कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना के सशक्त स्वर थे। उनकी कविताएं केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में आत्मसात करने के लिए लिखी गई थी। उसमें राष्ट्र का स्वाभिमान है, जन जन की पीड़ा है, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान है और एक सशक्त आत्मनिर्भर और नैतिक भारत का स्वप्न भी है। राष्ट्रीय चेतना का अर्थ केवल देशभक्ति का गीत गाना नहीं है, यह वह भावना है जो हमें अपने देश, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास, उसकी भाषा, उसकी परंपराओं और उसके नागरिकों प्रति उत्तरदायी बनाती है। यह हमें स्मरण कराती है कि राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाओं का नाम नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की साझा आशाओं, संघर्षों, मूल्यों और सपनों का जीवन स्वरूप है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के समरिया गांव में हुआ। यह वह समय था जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और स्वतंत्रता आंदोलन निर्णायक चरण की ओर अग्रसर हो रहा था। देश का वातावरण संघर्ष, त्याग और बलिदान की भावना से ओतप्रोत था। ऐसे ऐतिहासिक परिवेश में दिनकर का व्यक्तित्व विकसित हुआ और उनकी साहित्यिक चेतना का निर्माण हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को केवल देखा ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा और उसकी आकांक्षाओं को अपनी ओजस्वी वाणी के माध्यम से अमर कर दिया। दिनकर का मानना था कि साहित्य को मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाला सशक्त माध्यम है। इसीलिए उनकी कविताएं केवल सौंदर्य बोध तक सीमित नहीं रही बल्कि उन्होंने समाज को जागृत करने और राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ करने का कार्य किया। उनकी कविताओं को प्रत्येक पाठ शब्द श्रोताओं के मन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम का संचार करता है। दिनकर केवल शब्दों के नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा के कवि थे। उनकी रचनाओं में भारतीय जनमानस की बेचैनी, संघर्ष, स्वाभिमान, भविष्य के प्रति अटूट विश्वास एक साथ मुखर होता है। उनकी प्रसिद्ध कृति हुकार वसुतः राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोषणा है। यह काव्य संग्रह में भारतीय कविता भारतीय जनता को उनकी शक्ति का बोध कराते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि परिवर्तन केवल इच्छाओं और संकल्पों से नहीं आता बल्कि उसके लिए साहस, संघर्ष और सतत कर्म आवश्यक है। दिनकर का विश्वास था कि स्वतंत्रता उन्हें कभी भीख में नहीं मिलती, उसे अपने पुरुषार्थ, त्याग और बलिदान से अर्जित करना पड़ता है। उनकी प्रसिद्ध कृति कुरुक्षेत्र की एक अत्यंत मार्मिक पंक्ति है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनित, सरल हो। इस संक्षिप्त किंतु अत्यंत प्रभावशाली कथन में दिनकर का राष्ट्रीय दर्शन निहित है। इसका आशय है कि क्षमा तभी सार्थक है जब इसके पीछे सामर्थ्य और आत्मविश्वास हो। निर्बल की क्षमा व्यवस्था ही हो सकती है किंतु सबल की क्षमा उदारता, नैतिक शक्ति का प्रतीक होती है। यही संदेश वे राष्ट्र के संदर्भ में भी देते हैं। उनका मानना है कि राष्ट्र को इतना समर्थ और आत्मनिर्भर होना चाहिए कि वह शांति, न्याय, सहिष्णुता की रक्षा करने में सक्षम हो। शक्ति और शांति का यह संतुलन ही राष्ट्रवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विचार के साथ दिनकर भारतीय समाज में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और कर्मशीलता का संचार करना चाहते थे। वे चाहते थे कि प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहे, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही एक सशक्त राष्ट्र की आधारशिला बनता है। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है वीरता और संघर्ष। हिंदी साहित्य में दिनकर को आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ वीर रस के कवियों में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। उनकी कविताओं में उत्साह, ऊर्जा, आत्मविश्वास और अन्याय के विरुद्ध निर्भीक होकर खड़े होने का अदम्य साहस है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि शांति तभी सार्थक है जब न्याय सुरक्षित हो। यदि अन्याय अपनी सीमाएं लांघ जाए और अत्याचार समाज पर हावी होने लगे तो उसका प्रतिशोध करना ही सच्चा धर्म है। दिनकर का संघर्ष हिंसा का समर्थन नहीं करता बल्कि अन्याय के प्रतिकार का संदेश देता है। वे आक्रमण को नहीं बल्कि न्याय, मानवीय गरिमा की रक्षा का साधन मानते हैं। इसीलिए उनकी कविताएं केवल सैनिकों को ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक को उसके कर्तव्य, उत्तरदायित्व और साहस का बोध कराती है। उनका विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र की रक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिक नहीं करते बल्कि उसके जागरूक, नैतिक और कर्मशील नागरिक भी करते हैं। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। उनका तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान, अटूट आस्था। दिनकर का विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी संस्कृति में निहित है। जिस समाज की सांस्कृतिक चेतना जीवित रहती है वही समाज कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व, आत्मसम्मान और पहचान को सुरक्षित रखता है। उन्होंने भारतीय इतिहास, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और भारतीय दर्शन से प्रेरणा लेकर आधुनिक भारत के लिए नए आदर्शों की स्थापना की है। उनके लिए अतीत केवल गौरव का विषय नहीं बल्कि वर्तमान को दिशा देने और भविष्य का निर्माण करने वाली प्रेरक शक्ति था। वे भारतीय संस्कृति को जड़,

रूढ़ परंपरा नहीं मानते थे, बल्कि ऐसी जीवन परंपरा मानते थे जो समय के साथ स्वयं को परिष्कृत करती हुई समाज को निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करती है। दिनकर के साहित्य की एक बड़ी विशेषता यह है कि वे इतिहास और मिथकों को केवल कथाओं के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि उन्हें समकालीन जीवन से जोड़ देते हैं। उनके पात्र अपने युग की सीमाओं में बंधे नहीं रहते, बल्कि आज के समाज से भी संवाद करते हैं। यही कारण है कि उनकी रचनाएं समय के साथ और अधिक प्रासंगिक होती गई है। इस दृष्टि से उनकी कालजयी कृति रश्मिरथी भारतीय साहित्य की अनुपम धरोहर है। यद्यपि उनका आधार महाभारत का कर्ण है, किंतु यह केवल कर्ण की कथा नहीं है। दिनकर ने कर्ण के व्यक्तित्व के माध्यम से सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा, प्रतिभा के सम्मान और आत्मसम्मान का व्यापक संदेश दिया है। रश्मिरथी का कर्ण उस प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधि बन जाता है जिसे समाज ने जन्म, जाति या परिस्थिति के कारण उपेक्षित किया है। दिनकर यह स्थापित करते हैं कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म, उसके चरित्र और उसकी प्रतिभा से होती है। यह विचार केवल साहित्यिक आदर्श नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और राजनीतिक एकता का मूल भावना से भी जुड़ा हुआ है। दिनकर का यह संदेश स्पष्ट है कि कोई भी राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करे और प्रतिभा का सम्मान जन्म या वंश के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कर्म, योग्यता के आधार पर करे। इसी कारण रश्मिरथी केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि प्रतिभा, स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा का महाकाव्य बन जाती है। दिनकर भारतीय संस्कृति को अतीत में लौटने का आग्रह नहीं मानते, बल्कि वर्तमान को समृद्ध करने का माध्यम मानते हैं। वे मानते हैं कि अपनी संस्कृति के जड़ों से जुड़े बिना कोई भी राष्ट्र स्थायी रूप से प्रगति नहीं कर सकता, किंतु साथ ही वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि संस्कृति तभी जीवित रहती है जब वह परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता रखती है। इसलिए उनके साहित्य में परंपरा और प्रगतिशीलता का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। वे भारतीय संस्कृति के मूल जीवन मूल्यों, सत्य, न्याय, करुणा, साहस, सहिष्णुता और मानवता को आधुनिक राष्ट्रीय जीवन का आधार मानते हैं। उसके लिए सांस्कृतिक विभाजन का नहीं, बल्कि एकता का सूत्र है। वह राष्ट्र को जोड़ने वाली वह शक्ति है जो भाषा, क्षेत्र, जाति और वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठकर समूचे समाज को एक सूत्र में बांधती है। इतिहास और संस्कृति के प्रति यही व्यापक दृष्टि दिनकर के राष्ट्रवाद को संकीर्णता से मुक्त करती है। उनका राष्ट्रवाद आत्मगौरव से प्रेरित है, किंतु अहंकार से रहित है। वह अपनी संस्कृति को पहचान को सुरक्षित रखते हुए समस्त मानवता के कल्याण की भावना का भी समर्थन करता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का साहित्य केवल अतीत के गौरव का गान नहीं करता, बल्कि वर्तमान के प्रश्नों में भी पूरी गंभीरता के साथ संवाद करता है। यही कारण है उनकी राष्ट्रीय चेतना का अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है सामाजिक समानता और न्याय। दिनकर का विश्वास था किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था या उसके प्राकृतिक संसाधनों में नहीं होती, बल्कि उसके नागरिकों की समान भागीदारी, पारस्परिक विश्वास और सामाजिक न्याय में निहित होती है। यदि समाज जाति, वर्ग, ऊंच नीच और भेदभाव में विभाजित रहेगा तो राष्ट्रीय एकता भी कमजोर होगी। इसीलिए उन्होंने सामाजिक न्याय को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला माना है। उनका राष्ट्रवाद समावेशी था, प्रत्येक नागरिक के सम्मान, अधिकार और गौरव के लिए समान स्थान है। वे ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जन्म से नहीं, उसके चरित्र, कर्म और योग्यता से किया जाए। यही दृष्टि उन्हें साहित्य को मानवीय संवेदना और लोकतांत्रिक मूल्य से समृद्ध बनाती है। यदि दिनकर के साहित्य की ऐसी एक कृति का उल्लेख किया जाए जिसमें राष्ट्र, न्याय, युद्ध, शांति और मानवता का गहन चिंतन एक साथ मिलता है तो वह है कुरुक्षेत्र। यह केवल महाभारत के युद्ध का काव्यात्मक पुनर्कथन नहीं है, बल्कि युद्ध और शांति का गहन दार्शनिक विश्लेषण है। दिनकर यह स्वीकार करते हैं कि युद्ध कभी भी आदर्श स्थिति नहीं हो सकता। मानवता वास्तविक उद्देश्य शांति और सह अस्तित्व ही होना चाहिए, किंतु यदि अन्याय अपनी सीमाएं पार कर जाए, अत्याचार असहनीय हो जाए और शांति के सभी प्रयास विफल हो जाए, तब न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक हो जाता है। यह विचार केवल महाभारत के युग तक सीमित नहीं, बल्कि प्रत्येक काल में प्रासंगिक बना रहता है। दिनकर का यह संदेश है कि शांति और न्याय एक दूसरे के पूरक है। न्याय के बिना शांति स्थायी नहीं हो सकती, शक्ति के बिना न्याय सुरक्षित नहीं रह सकता। दिनकर का साहित्य विशेष रूप से युवाओं को निरंतर कर्म, साहस, राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। वे मानते हैं कि अन्याय, अज्ञानता, असमानता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए प्रत्येक पीढ़ी का अपना एक दायित्व होता है। उनकी प्रसिद्ध कविता परशुराम की प्रतीक्षा की बहुचर्चित पंक्तियां आज भी उतनी ही प्रेरणादायी है। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध्य, जो तटस्थ है समय लिखेगा उस

0: कभी अपराध इन पंक्तियों का आशय अत्यंत व्यापक है। दिनकर कहना चाहते हैं कि समाज में जब अन्याय हो रहा था तब केवल अत्याचारी ही दोषी नहीं होता। जो लोग सब कुछ देखकर भी मौन रहते हैं इतिहास उनके उत्तरदायित्व को भी दर्ज करता है। इसीलिए वे निष्क्रियता के स्थान पर सक्रिय नागरिकता का संदेश देते हैं। इसी कारण दिनकर को युवाओं का कवि कहा जाता है। वे युवाओं से अपेक्षा करते हैं कि वे केवल शिक्षा और रोजगार तक सीमित न रहे, अपने भीतर चरित्र, अनुशासन, आत्मविश्वास, सामाजिकता, संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास करें। उनके अनुसार राष्ट्र निर्माण केवल भाषणों या नारों से नहीं बल्कि ईमानदार कर्म, नैतिक आचरण और दृढ़ विश्वास से होता है। दिनकर लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया का नाम नहीं है। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब नागरिक जागरूक, नैतिक और उत्तरदायी हो। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वहन भी लोकतांत्रिक जीवन का अनिवार्य आधार है। उनकी कविता जनतंत्र का जन्म की पंक्तियां सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने इटलाती है, दो रहा समय के रथ का घरघन नाग सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, आज भी लोकतांत्रिक चेतना का सशक्त उद्घोष मानी जाती है। इन पंक्तियों के माध्यम से दिनकर सत्ता को यह स्मरण कराते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। शासन तभी सार्थक होगा जब वह जनता के विश्वास, सहभागिता और कल्याण पर आधारित हो। यदि हम आज के भारत पर दृष्टि डालें तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, अंतरिक्ष, उद्योग और वैश्विक मंच पर देश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की है। भारत निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, किंतु इसके साथ ही सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय चुनौतियां, नैतिक मूल्य का क्षरण और सामाजिक समस्याएं, विभाजन जैसी समस्याएं आज भी हमारे सामने उपस्थित है। ऐसे समय में दिनकर का साहित्य में स्मरण कराता है कि राष्ट्र निर्माण केवल आर्थिक प्रगति से संभव नहीं होता, इसके लिए चरित्र, नैतिकता, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और जागरूक नागरिकता का भी उतनी ही आवश्यकता है। जब हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पर समग्र दृष्टि से विचार करते हैं तो स्पष्ट अनुभव होता है कि उनका साहित्य केवल स्वतंत्रता आंदोलन के युग का दस्तावेज नहीं है, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि वह हमें राष्ट्र प्रेम के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक साहस, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और लोकतांत्रिक मूल्य का संदेश देता है। दिनकर का राष्ट्रवाद किसी संकीर्ण विचारधारा का प्रतिनिधि नहीं करता। उनका राष्ट्रवाद भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों से जुड़ा हुआ है, किंतु साथ ही वह मानवता, न्याय, समानता और बंधुत्व की भावना से भी अनुप्रेरणित है। वे चाहते थे कि भारत अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए आधुनिकता को अपनाए और विश्व समुदाय के समक्ष एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जिसकी पहचान केवल आर्थिक या सामरिक शक्ति से नहीं बल्कि उसके नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक चेतना और मानवीय दृष्टि से हो। दिनकर का साहित्य हमें यह सिखाता है कि राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाओं या राजनीतिक सत्ता का नाम नहीं है। राष्ट्र अपने नागरिकों के चरित्र, उसकी चेतना, उसके कर्तव्य बोध, उसके सामूहिक उत्तरदायित्व से निर्मित होता है। जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करते हैं तब राष्ट्र की वास्तविक शक्ति विकसित होती है। आज के समय में जब भारत विकास और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है तब दिनकर की वाणी हमें निरंतर यह प्रेरणा देती है कि प्रगति का अर्थ केवल भौतिक समृद्धि नहीं है, वास्तविक विकास वह है जिसमें सामाजिक न्याय, नैतिकता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों का भी समान रूप से सम्मान हो। यही वे आधार है जिन पर एक सशक्त, समावेशी और आत्मविश्वासी राष्ट्र का निर्माण होता है। दिनकर का समूचा साहित्य हमें कर्म, साहस और उत्तरदायित्व का संदेश देता है। वे हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि परिवर्तन की शुरुआत सदैव जागरूक नागरिक से होती है। यदि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करे, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखे, न्याय और सत्य के समक्ष खड़ा हो तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि माने तो ही राष्ट्रकवि दिनकर के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सौरभ, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। आकाशवाणी जयपुर से प्रस्तुत है समाचार तरंग।
2: श्रोताओं, मैं हूँ आपके साथ सालिहा, स्वीकार कीजिए हमारा अभिवादन। क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से आप सुन रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग।

0: श्रोताओं, मानसून का मौसम अपने साथ हरियाली और ठंडक तो लेकर आता ही है, लेकिन इसी मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल बुखार, दस्त और पानी जनित कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और इसी पर बातचीत और हमें और ज्यादा जानकारी देने के लिए, साथ ही आमजन को जागरूक करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर प्रवीण असवाल जी। सर नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि मानसून के दौरान कौन कौन सी बीमारियां जो है, कहते हैं कि ये बहुत बीमारियों का मौसम है, लेकिन खास तौर पर कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं?
1: मानसून एक तापमान में परिवर्तन का समय भी है और खास बात यह है कि मानसून में मॉइस्चर और टेम्परेचर की वजह से कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस का बीमारियों का होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जनरली हम जानते हैं कि सर्दियों में वायरल डिजीजें ज्यादा हो जाती हैं और गर्मियों में बैक्टीरियल डिजीज ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन मानसून के इस समय में कई बार हमें दोनों तरह की बीमारियां देखने को मिलती है और इसलिए हमें विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ती है।
0: सर, डेंगू और मलेरिया की बात करें तो ऐसा होता है कि हर साल ऐसा लगता है जैसे मामलों में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, तो एक आम आदमी को इनसे बचाव के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
1: डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये मच्छर से फैलने वाली बीमारियां हैं और जैसा कि हमने बात किया, मानसून के दौरान जगह जगह जो पानी का स्रोत बन जाते हैं उसमें मच्छर ब्रीड करता है, यानी उसका प्रजनन होता है और मच्छरों की संख्या बढ़ती है। इसलिए मानसून से पहले हमारी कोशिश ये रहती है कि मच्छर की संख्या को कम किया जाए, उसको लार्वा को खत्म किया जाए ताकि मच्छर ज्यादा नहीं बन सके। अब ये जो मानसून के दौरान मच्छरों की संख्या ज्यादा हो जाती है और संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो उसमें मलेरिया डेंगू होने की संभावना रहती है। हर साल हमारे यहाँ मलेरिया डेंगू में कमी आ रही है। हमारे पास जांच सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा होने के कारण हम छोटे छोटे से गांव, कस्बे, ढाणी में भी रोगियों की पहचान कर उनको समुचित उपचार दिलाने में लगातार प्रयत्नशील हैं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो अभी आपने बताया कि एंटी लार्वा गतिविधियों के बारे में कि मच्छरों की बढ़ोतरी को रोका जाए क्योंकि इससे आमतौर पर ये रोग होते हैं, लेकिन अगर हम सांस की बीमारियों की बात करें, श्वसन रोगों की, तो क्या इनकी संभावना भी इस मौसम में ज्यादा रहती है?
1: ऐसा मैंने बताया, आर्द्रता और तापमान में कमी के कारण कुछ बैक्टीरिया और वायरस के रोग ज्यादा प्रोलिफरेट होते हैं। हमारे देश में और प्रदेश में भी जैसा कि हम जानते हैं स्वाइन फ्लू या मिक्स वायरस या कोविड का केसेस हमारे यहाँ रिपोर्ट हुए थे। अभी हमारे यहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें श्वसन रोगों, विशेषकर स्वाइन फ्लू, कोविड के लक्षण वाले खांसी जुकाम, जिन्हें हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, खांसी जुकाम, बुखार, बदनदर्द, सिरदर्द ऐसा लक्षण हो और सांस से संबंधित कोई परेशानी हो तो चिकित्सक से सलाह इन रोगों के लिए भी लिया जाना आवश्यक।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि मच्छरों से होने वाली बीमारियों के अलावा, इसके अलावा पानी से भी इन दिनों काफी इन्फेक्शन बढ़ जाता है, खाने पीने की चीजों में भी किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए?
1: मानसून के दौरान जो श्वसन रोग हैं, जल जनित रोग हैं, जल दूषित होने की संभावना की वजह से उसमें सामान्य तौर पर उल्टी, दस्त, पीलिया या जिसे हम हेपेटाइटिस ए और ई बोलते हैं, जो जल जनित रोगों से फैलते हैं, या हैजा, कॉलरा, इनकी संभावना रहती है। इसलिए शुद्ध जल इस समय बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: अक्सर ऐसा भी देखने में आता है डॉक्टर साहब कि जब मौसम बदलता है और सर्दी जुकाम या बुखार या ऐसी कोई चीज होती है तो लोग अपने आप ही दवाई लेना शुरू कर देते हैं, तो क्या ये सुरक्षित है?
1: देखिए, ये आमजन के लिए समझने की और सावधानी की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें चिकित्सक की सलाह के बिना दवा नहीं लेनी चाहिए। कई बार इसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जैसे हमें लक्षण आते हैं तो एक आम धारणा होती है कि वो कुछ दिनों तक के लिए स्वयं ही उपचार करने की कोशिश करते हैं या फिर आसपास की किसी दवा की दुकान से लाके और इलाज करते हैं, लेकिन ये कई बार बड़ा गंभीर हो सकता है, इसलिए चिकित्सक की सलाह लेना बहुत जरूरी है। ड्रग पॉलिसी जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कुछ दवाओं को तो शेड्यूल एक्स में भी डाला गया है, यानी वो तो काउंटर पर भी नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी विशेष सावधानियों की जरूरत होती है। जैसे मान लो यदि किसी को डेंगू की संभावना है और वो ब्रूफेन लेते हैं तो उससे डेंगू में हालात बिगड़ने की संभावना रहती है, इसलिए जनरली में डेंगू में की संभावना में पैरासिटामोल ही दवा दी जाती है। तो ऐसे और भी तकलीफ हैं जिनमें स्वयं दवा लेना कई बार भारी हो सकता है, इसलिए चिकित्सक की सलाह से ही दवा लिया जाना उचित होता है और ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए इंतजाम भी हैं कि कुछ दवाइयां जो शेड्यूल एक्स में डाली हुई हैं वो

0: काउंटर पर मिलती भी नहीं है।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना कि सेल्फ मेडिकेशन से बचना है, अपने आप अपनी समझ से दवाई नहीं लेनी है, बल्कि आप ये क्या बताना चाहेंगे कि किन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
0: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हमें हाई ग्रेड फीवर है और हमारे रोगों से मलेरिया डेंगू से के जो लक्षण है कि हाई ग्रेड फीवर आया या डेंगू में आंखों के पीछे दर्द होता है या बॉडी एक होता है या जॉइंट पेन है, ऐसे एक साथ लक्षण यदि तीव्र गति से आते हैं तो हमें तुरंत दिखाना चाहिए। और यदि हल्का बुखार आया है तो हमें घर पे कुछ सावधानी रहते हुए हम आराम से भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमें विलंब नहीं करना चाहिए। ये जनरली देखने को मिला है किसी भी बीमारी में कि लोग बाग विलंब करते हैं और जब वो काफी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं तो उन्हें दवाइयां भी ज्यादा लेनी पड़ती है या उन्हें हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है या आईवी ड्रिप लगाने की जरूरत पड़ती है। तो मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि लक्षण हो तो चिकित्सक से संपर्क करें और प्रारंभिक जो जांच है वो कराएं ताकि आपको भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़े या कोई और तरीका ड्रिप लगाना या एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़े।
1: सर, ये तो हुई एक सामान्य सी जानकारी। अगर हम विभाग के लिहाज से बात करें तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जो है इस मौसम में कौन कौन से खास अभियान चलाता है या क्या खास व्यवस्थाएं करता है?
0: जी हाँ, देखिए जैसा कि आज हम इस माध्यम से जन सामान्य को मौसम बीमारियों के बचाव उपचार नियंत्रण के लिए जानकारी दे रहे हैं, इसी प्रकार और भी कई माध्यम हैं हमारे जिनके लिए जन सामान्य को हम जानकारी देते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है कि गांव-गांव में हमारी जो मेडिकल टीम है वो घर घर जाकर संदेश भी देते हैं और यदि कोई बुखार का रोगी मिलता है तो उसकी मलेरिया जांच के लिए ब्लड स्लाइड भी लेते हैं। ये सब निःशुल्क होता है। हम ये संदेश देते हैं कि किस प्रकार वो मच्छर जनित बीमारियों से बचें, यानी खुला पानी नहीं रहने दें जिसमें मच्छर ब्रीड करता है, प्रजनन करता है, मच्छर की संख्या बढ़ेगी। इसी प्रकार ऐसे वस्त्र पहने कि शरीर पूरा ढका रहे ताकि मच्छर के काटने की संभावना नहीं रहे। डेंगू का जो मच्छर है वो अक्सर दिन के समय काटता है तो हमें दिन के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए और हमारे घर के आसपास छत पर जो कुछ कबाड़ है वहां एक चम्मच भी पानी पड़ा हुआ है तो मच्छर उसमें प्रजनन कर सकता है, मच्छरों की संख्या बढ़ सकती है। तो हमें मच्छर के प्रजनन को रोकना है, मच्छर के काटे जाने को रोकना है और यदि कोई लक्षण हो तो तुरंत दिखाना है। इसी प्रकार यदि कोई श्वसन रोग होता है तो हमें उसमें आराम करना है, हाइड्रेशन लेना है और चिकित्सक से सलाह करनी है और चिकित्सक से सलाह के बाद ही दवा लेनी है। इसी प्रकार यदि जल जनित रोग हो तो शुद्ध जल का उपयोग करना है। शुद्ध जल का मतलब हुआ कि कांच के गिलास में वो आर पार दिखना चाहिए, उसको स्वादहीन होना चाहिए और गंधहीन होना चाहिए। और यदि जरा सी भी शंका हो तो हम किसी भी पानी को शुद्ध जल बना सकते हैं, 20 मिनट तक उसको उबाल कर ठंडा करके उसको पिए तो वो एक शुद्ध जल बन जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, जो विभाग का दूर दराज की ढाणियों तक या गांवों तक जो नेटवर्क है वो किस तरह से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से सशक्त होता है?
0: विभाग में हर 1000 की आबादी पर आशा बहन जी उपलब्ध हैं जो प्रतिदिन सर्वे करके और बीमार लोगों को आइडेंटिफाई चिन्हित करने की कोशिश करती हैं और उनको सेंटर पर, हायर सेंटर पर जांच या चिकित्सक सलाह के लिए रेफर करती हैं। उसके ऊपर ANM बहन जी होती हैं, वो एक सब सेंटर पर बैठती हैं, वो भी फील्ड सर्वे करती हैं और यदि बुखार का कोई रोगी मिलता है तो आशा बहन जी भी ब्लड स्लाइड लेने का प्रयोजन है वो लेके जांच करवा लेती हैं और ORS जैसे दस्त रोग में ऐसा कुछ उपाय भी उनके द्वारा किया जाता है।
1: अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से बात करें, बच्चों की, महिलाओं की और खासतौर पर गर्भवती महिलाओं की या बुजुर्गों की, तो इस मौसम में उन्हें अपनी आयु वर्ग के हिसाब से क्या खास सावधानियां रखनी चाहिए?
0: इसे हम मेडिकल में वल्नरेबल ग्रुप यानी जोखिम भरा ग्रुप बोलते हैं। इस जोखिम ग्रुप में बच्चे, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध और जो पहले से बीमार हैं यानी कोमोरबिड हैं, ये विशेष जोखिम वाले वर्ग हैं, इन्हें विशेष सावधानी की जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं गर्भवती महिलाओं का हम कितना समाज में भी हमारी प्रवृत्ति है, उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार विभाग में भी उनके लिए अनेक कार्यक्रम संचालित हैं। तो ये जो वर्ग हैं इनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है इसलिए उन्हें भी संक्रामक रोग होने के चांसेज और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेज ज्यादा होते हैं, इसलिए इस वर्ग को विशेष सावधानी की जरूरत होती है।
1: क्या इसके लिए जांच जरूरी है? ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, आमतौर पर कई बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनके लक्षण समान होते हैं, तो इसके लिए जांच करवाना ही जरूरी है? और ये जांच और इलाज की सुविधा एक आम आदमी को कहां कहां उपलब्ध है?
0: जांच की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में निशुल्क है।

0: निशुल्क दवा भी दी जाती है। लेकिन जांच कब करना है, जांच की आवश्यकता कब है, ये चिकित्सक का काम है, वो समझते हैं। और हमें ये भी समझना है कि इन्वेस्टिगेशन टेस्ट जो हम जांच करते हैं, ये एक चिकित्सक के लिए सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता है। चिकित्सक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके लक्षण देखकर उसका एक जो निदान डायग्नोसिस वो तय करते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। वो उस बेसिस पर अपने सपोर्ट या और कुछ देखने के लिए जांच कराते हैं। लेकिन एक चिकित्सक के लिए जांच सब कुछ नहीं होता, पेशेंट को एग्जामिन करना और उसका जो ट्रीटमेंट वो प्रेस्क्राइब करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है।
1: इस मौसम में यानी मानसून में विभाग की ओर से क्या इन बीमारियों का प्रबंधन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं?
0: निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हमने सभी जिलों में डायरेक्शन जारी की गई जो इस मौसम में मच्छर जनित रोगों, जल जनित रोगों और श्वसन रोगों के संबंध में क्या क्या सावधानी हो। और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया आशा और एएनएम है, इनको भी आमुखीकरण एक बार हर साल की तरह फिर से हम करते हैं। हालांकि ये निरंतर काम होता है, लेकिन फिर भी कहीं कोई चूक नहीं हो जाए इसके लिए हम बार बार आमुखीकरण करते हैं, विशेषकर इस मौसम के लिए।
1: कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा जानकारी भी थोड़ा लोगों में भय व्याप्त कर देती है। जब हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं, कई बार नए नए वायरस के बारे में पता चलता है, या इन दिनों बात हो रही है चांदीपुर वायरस की, तो ये क्या है और इसकी रोकथाम के लिए, इसके संक्रमण से बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
0: जी हाँ, चांदीपुरा वायरस डिजीज है। और जैसा कि राजस्थान और गुजरात दो स्टेट आपस में बॉर्डर स्टेट हैं, गुजरात में ये हाईली एंडेमिक है, यानी चांदीपुरा के बड़े सारे केसेस पाए जाते हैं। राजस्थान हमारे लिए एंडेमिक नहीं है चांदीपुरा रोग, लेकिन चूंकि हमारे बॉर्डर वाले लोग वहां गुजरात जाते हैं, इस वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेज हैं।
1: क्या अमूमन ये बच्चों में देखने को मिलता है?
0: इसका प्रभाव बच्चों में ज्यादा होता है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों में प्रभाव ज्यादा होता है। और ये एक सैंड फ्लाई मक्खी है, उसके काटने से होता है। तो यदि सैंड फ्लाई मक्खी है और वो इन्फेक्टेड है और वो बच्चों को काटती है, तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन यदि समय रहते तुरंत चिकित्सक को दिखाया जाए तो उपचार भी संभव है। हालांकि इसमें यदि विलंब किया जाए तो इसमें मृत्यु दर ज्यादा है।
1: डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को स्वास्थ्य संबंधी इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि मॉनसून का जो ये मौसम होता है आनंद लेने का होता है, लुत्फ लेने का, तो वो अपनी सेहत का ध्यान भी रख सकें, स्वस्थ रहें और मॉनसून का आनंद भी ले सकें? क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
0: मानसून का आनंद लें बहुत जरूरी है, लेकिन वो आनंद लगातार रहे इसके लिए सजग रहें, चिकित्सा कर्मियों की बात सुनें और समय रहते चिकित्सक को दिखाएं, विलंब नहीं करें।
1: तो हमारे प्यारे श्रोताओं, याद रखें साफ सफाई, साफ पीने का पानी, मच्छरों से बचाव और समय पर डॉक्टर की सलाह और जांच मानसून में स्वस्थ रहने की, अपनी सेहतमंद अपने आप को रखने की ये सबसे बड़ी कुंजी है। और अगर बुखार या किसी भी तरह के किसी रोग के कोई लक्षण दिखाई दे तो स्वयं दवा लेने की बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से संपर्क करें। आज के अंक में बस इतना ही। समाचार तरंग का ये अंक आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा पतंजलि कुमार, रिकॉर्डिंग सहयोग सुदर्शन नाहर, संपादन रितिका गुप्ता, संयोजन डॉ. जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज, इसके साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है, अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। लोकसभा में आज लोक परीक्षाएं अनुचित

0: नागरिकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के समयबद्ध क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए और प्रदेश में दो दिन मानसून कमजोर रहने का अनुमान। 29 जुलाई से मानसून के फिर से सक्रिय होने से कई स्थानों पर बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये टास्क फोर्स परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय और पारदर्शी होनी चाहिए और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। कार्यबल में पूर्व खुफिया ब्यूरो निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व शिक्षा सचिव अनिता कारवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीना भी कार्यबल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आज संसद में परीक्षाओं से संबंधित कड़े कानूनी प्रावधानों वाला एक नया कानून पेश करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता की रक्षा करने और लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। इसके माध्यम से पूर्व अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। गौरतलब है कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के समयबद्ध क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में इन एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समझौतों को धरातल पर उतारना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे प्रदेश की आर्थिक प्रगति होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने भूमि आवंटन और अन्य स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव स्तर पर एमओयू के नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ निवेशकों से लगातार संवाद बनाए रखने को कहा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने 10 दिसंबर को मनाए जाने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर भी बैठक की। उन्होंने कहा कि ये दिवस विश्वभर में बसे राजस्थानियों और उनकी मातृभूमि के बीच संबंधों को और मजबूत करने का माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों से लगातार संवाद बनाए रखने और नए चैप्टर्स जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से प्रवासियों को प्रदेश के विकास और निवेश में भागीदारी का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री अधिक से अधिक प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी के लिए विभिन्न शहरों में रोड शो करने और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सेक्टोरल सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र के प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष कार्यक्रम शेखावाटी में ही आयोजित किया जाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि

0: गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा, शोध और नवाचार से स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने ये बात एम्स जोधपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उपाधियां और मेधावी छात्रों को पदक प्रदान किए। राज्य मंत्री ने कहा कि एम्स जोधपुर निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने युवा डॉक्टरों से सेवा, संवेदनशीलता और समर्पण की भावना के साथ समाज की सेवा करने का आह्वान किया।
1: एम्स जोधपुर आज हमारे देश के टॉप 10 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में से एक है और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। यहाँ पांचवें दीक्षांत समारोह में 900 बच्चों को, जो जिसमें हमारे एमबीबीएस के डॉक्टर्स हैं, पीजी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं, सभी को उनके डिग्रीज और मेडल्स दिए गए हैं।
0: जैसलमेर के रामदेवरा स्थित गोडावण संरक्षण केंद्र में पहली बार 3 गोडावण चूजों को नवनिर्मित रिवाइल्डिंग टनल में छोड़ा गया है। वन विभाग ने इसे गोडावण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। डेजर्ट नेशनल पार्क के एसीएफ अशोक सिंह ने बताया कि अब तक कैप्टिव ब्रीडिंग केंद्र में तैयार होने वाले चूजे इंसानों की देखरेख में बड़े होते थे, जिससे उन्हें जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में कठिनाई होती थी। उन्होंने कहा कि रिवाइल्डिंग टनल का उद्देश्य चूजों को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाना है, ताकि उन्हें भविष्य में सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा जा सके और उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ सके।
2: जो ब्रीडिंग सेंटर्स के अंदर तैयार हुए हैं, उनको फील्ड में रिलीज करने के लिए पहले रिवाइल्डिंग स्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ट्रांसपोर्ट करने के बाद में लोगों उनको 6 महीने उसमें रखा जाएगा। उनको फील्ड में सर्वल की ट्रेनिंग मिलने के बाद में फिर फील्ड में रिलीज करने का प्लान है। जीआईबी के रामदेवरा में जो ब्रीडिंग सेंटर है उसके पास में ही रिवाइल्डिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है, जिसका पैमाना 160x64x14 मीटर है।
0: प्रदेश में 2 दिन मॉनसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। हालांकि दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कल से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी के आसार हैं। वहीं 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून के फिर सक्रिय होने और पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं भारी वर्षा का अनुमान है। इस बीच पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बरसात हुई। जालौर, सीकर, हनुमानगढ़ के संगरिया और आबूराज में हल्की से मध्यम बारिश हुई। जैसलमेर में करीब 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। डूंगरपुर और पाली में आज रिमझिम बरसात दर्ज की गई। सवाईमाधोपुर में बरसात का दौर बंद है, लेकिन हाड़ौती क्षेत्र में हो रही बारिश से चंबल नदी में पानी की आवक बढ़ गई है। जिले के झरेल के बालाजी रपट पर करीब 1 फीट पानी बहने से मार्ग बाधित है। भारत की मीराबाई चानू ने ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलो भारोत्तोलन वर्ग में 190 किलो के रिकॉर्ड का तोड़ प्रदर्शन के साथ ये पदक हासिल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। भारत ने भारोत्तोलन में 2 रजत पदक भी जीते। ऋषिकांत सिंह और राजा मुथु पंडी ने ये पदक प्राप्त किए। उधर विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर भारत की अनाहत सिंह ने इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालेम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी बन गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। लोकसभा में आज लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के समयबद्ध क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। और प्रदेश में 2 दिन मॉनसून कमजोर रहने का अनुमान। 29 जुलाई से मॉनसून के फिर से सक्रिय होने से कई स्थानों पर बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 9:10 हो रहे हैं। समय है कार्यक्रम लोक संगीत का। कलाकार है सीमा मिश्रा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे थे लोक संगीत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT का।

0: बिट्टू जी ने, लिखते हैं,
1: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
1: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए के अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी, हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी का। लिखते हैं,
1: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी, ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
1: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
0: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं। धन्यवाद साहब
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल कुमारी
0: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का। आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
1: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
1: इसका उत्तर है, मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं की बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, हमने पूछा था कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है।
1: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पोध का अर्थ होता है उत्सव यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी

0: तो फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: जी तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।
2: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
3: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
2: वो उन्हें मार डालता था, वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था, उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया।
4: नाथ,
5: महात्मा प्रभु अब जंगल में मत जाएं।
4: वहाँ अंगुलीमाल है।
5: हाँ प्रभु,
4: वो बहुत बड़ा डाकू है।
6: हाँ प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
4: हाँ
6: प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
5: ना जाएं प्रभु।
7: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहाँ?
0: ये गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्य पूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत?
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
2: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
1: हाँ

0: को जहां से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते?

अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्सकपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
3: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
4: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल

0: की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है।
1: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
0: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
3: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपने कर्मस्थली के रूप में चुना।
1: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
3: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग दीतल दासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु।
1: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
3: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
3: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के

0: हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
1: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
1: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
2: जी मैं प्रस्तुत हूं।
1: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के दो पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
2: जी अवश्य।
3: फादर कामिन बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
2: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा। जी।
3: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
5: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
3: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति?
6: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
2: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
6: जी जी,
2: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
6: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
2: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
6: जी,
2: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
6: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
2: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
6: जी,
5: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
3: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
5: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
3: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल

0: बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सबहें नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: फादर कामल बुल्के ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डी फिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
2: डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा कहते हैं,
3: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
2: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
4: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
5: जगबंधु,
4: चेतना
5: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। कार्यक्रम फिल्म संगीत नई फिल्मों से प्रस्तुत है। कार्यक्रम में सुनिए पहला गीत, फिल्म का नाम है उमराव जान। आवाज अलका याग्निक की है, गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, अनु मलिक का है संगीत।

0: है वो पहुंच रहे हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्मी गीतों के इस सफर में लीजिए सुनिए अगला गीत। आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम है बॉर्डर। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है अनु मलिक का।

0: है बदर। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए फिल्म पाप से अगला गीत। आवाज राहत फतेह अली खां की है। अमजद स्माइल अमजद ने गीत को लिखा है। शाही का है संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सुन रहे हैं नई फिल्मों से गीत। लीजिए सुनिए अगला गीत, फिल्म का नाम है रिफ्यूजी। आवाजें सोनू निगम और अलका याग्निक की हैं, बोल जावेद अख्तर के हैं, संगीत है अनु मलिक का।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: फिल्मी गीतों के सफर में लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है साया। आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की हैं। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है। संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-220-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में, आप सुन रहे हैं नई फिल्मों से गीत। लीजिए सुनिए फिल्म करीब से कुमार सानू और संजीवनी की आवाजों में अगला गीत। राहत इंदौरी ने गीत को बोल दिए हैं, संगीतकार हैं अनु मलिक।

जावेद अली के खास गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। श्रोता पेश है कार्यक्रम भूलो बिसरे की। कार्यक्रम में सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम

0: श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम अलग अलग।
1: कुछ हमको
2: क्या
1: कुछ तुमको।

राजा बागेश्वरी बीकानेर के दोनों मेरू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहम्मद रफी और लगा मंगेशकर की आवाज में फिल्म का नाम कारवां।

दिली मिश्री गीत आप आकाशवाणी बीकानेर के बीकानेर चैनल से सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। फिल्म का नाम

विश्वल संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ब्रह्मारू चैनल से सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम मेरे जीवन

मिश्री गीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारो चैनल से सुन रहे हैं। ये आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था सन ऑफ इंडिया। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम कुदरत।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म तुम्हारे लिए मैं। श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी भी करने के ढोली मारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था जेलर। श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम चिराग।

0: रफी के वॉइस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मेहरू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें

0: राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों मीराबाई चानू चानम्बम ऋषिकांत सिंह राजा मुथु पांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को बधाई दी।
1: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
1: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। श्रोता लीजिए सुनिए हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

कुछ देर पश्चात 12:10 पर आप सुनेंगे नाटक ठहरी हुई जिंदगी। लेखक होंगी श्रीमती शांति देवी गंगवाल। दोनों के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत दिन में 1:05 से। आज के इस कार्यक्रम में बहनें सुनेगी चर्चा विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका, साथ ही सुनेंगे रोचक जानकारियां और वार्ता मरु प्रदेश की अद्भुत और अद्वितीय हवेलियां। वार्ताकार होंगी श्रीमती सुनीता श्रीमाली। आज का ये कार्यक्रम पेश करेंगी मधु शर्मा और साक्षी गोस्वामी।

हमारी दूसरी सभा में शाम 5:05 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज के इस कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज की बात, विषय रहेगा फेक न्यूज से बचें। साथ ही सुनेंगे लघु जानकारियां और रोचक जानकारियां, साथ ही सुनेंगे फिल्म संगीत। आज का ये कार्यक्रम पेश करेंगे विशाल आचार्य और निशा शर्मा।

ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत शाम 7 बजे से। आज के इस कार्यक्रम में ग्रामीण श्रोता सुनेंगे चर्चा इस सप्ताह के कृषि कार्य सहजन के वृक्ष लगाएं, साथ ही राजस्थान तारबंदी योजना विषय पर जानकारी, साथ ही सुनेंगे लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम पेश करेंगे दीवान दान रत्न और संदीप कुमार पारीक। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात 7:45 बजे से और फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 8:15 बजे, रात्रि 9:15 बजे और रात्रि 10:30 बजे से।

0: ये था हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है नाटक ठहरी हुई जिंदगी। लेखक हैं श्रीमती शांति देवी गंगवाल।
1: ठहरी हुई जिंदगी, लेखिका शांति देवी गंगवाल।

0: माँ माँ कहाँ हो? मीता मौसी आ रही है अमेरिका से। वाओ कितना मजा आएगा ना। माँ कहाँ हो तुम?
1: अच्छा मीता आ रही है, कितने साल हो गए उसे देखे। तुम्हारे पिता की 13वीं पर ही आई थी वो, उसके बाद तो बस फोन से ही बात हो पाती है।
0: माँ मौसी है तो तुम्हारी सगी बहन, पर तुम दोनों कितना अलग लगती हो। मौसी कितनी अच्छी लगती है मॉडर्न कपड़ों में, और एक तुम हो वही गंवारों जैसे रहती हो।
1: अच्छा अच्छा बस कर, ये बता तू मेरे साथ मंदिर चल रही है या नहीं?
0: नहीं माँ, अभी मुझे कुछ आर्टिकल्स लिखने हैं मैगजीन्स के लिए, और फिर उन्हें मेल भी करना है। महिला उत्पीड़न और भ्रूण हत्या जैसी बुराइयां हमारे समाज में कितने गहरे तक जमी है। लाख कोशिश करो पर फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घटना सुनने को मिल ही जाती है।
1: अच्छा बाबा ठीक है, मैं आती हूँ मंदिर जाकर।

0: हेलो,
1: हाय मौसी,
0: मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। अब बस एक या दो दिन की बात, आ रही हो ना इंडिया?
2: आ रही हूँ, पर ये तो बता, तुझे कुछ चाहिए यहाँ से? वैसे तो मैंने बहुत कुछ लिया है तेरे लिए, पर तेरी कुछ खास डिमांड हो तो वो बता दे।
0: कुछ नहीं मौसी, बस आप आ जाओ यहाँ पर, बड़ी इच्छा हो रही है आपसे मिलने की। काश मैं भी अमेरिका आ पाती।
2: राधिका, मुझे तो यहाँ की लाइफ अब बोर लगने लगी है। मैं तो हमेशा के लिए इंडिया लौटना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, ये हो नहीं सकता।
0: तो आ जाओ ना मौसी, सब कुछ छोड़ कर इंडिया आ जाओ, आपके साथ तो मजा आ जाएगा। हमारे घर में हमारे साथ रहो, और फिर अमेरिका के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी तो लेनी है मुझे आपसे।
2: अरे राधिका, अब तो हमारे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को है अमेरिका के बारे में। इंटरनेट ओपन करो तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और साथ ही फोटोज भी देखने को मिल जाती है।
0: पर फिर भी मौसी, प्रत्यक्ष देखने की तो बात ही कुछ और है, और उसका आनंद और अनुभव भी तो डिफरेंट होता है।
2: राधिका, फिर तो तुम अमेरिका ही आ जाओ, मैं तुम्हें यही किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दूंगी। मैं तो अमेरिका की सिटीजन हूँ ही, तो मैं तुम्हें स्पॉन्सर भी कर सकती हूँ।
0: इच्छा तो मेरी भी होती है मौसी, पर माँ ना मुझे छोड़ेंगी नहीं। उन्होंने तो मुझे एमए करने के लिए दूसरे शहर तक नहीं भेजा, यही लोकल कॉलेज से एमए करवाया। तुम तो जानती हो उनको, मुझसे दूर नहीं रह सकती, और वैसे भी पुराने ख्यालों की है माँ, तुम्हारी तरह मॉडर्न थोड़ी ना है।
2: तो ऐसा करते हैं, तुम्हारे लिए कोई अमेरिकन लड़का ढूंढ लेते हैं, फिर तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ को भी यही।
3: अरे ये क्या बातें हो रही है तुम दोनों में, खुद तो सब कुछ छोड़कर अमेरिका जाकर बस गई, और अब तुझे भी ले जाने की योजना बना रही है।
0: चलो ठीक है माँ, रख रही हूँ फोन। अच्छा मौसी, आपसे बाद में बात करते हैं, बाय
2: बाय डार्लिंग।
3: बस बस, बहुत हो गई बातें फोन पर, अब आमने सामने बैठकर खूब बतियाना। आ रही है ना तेरी प्यारी मौसी?
0: माँ तुम्हारी भी तो बहन आ रही है। अच्छा ये बताओ, क्या क्या तैयारियां करी है मौसी के लिए? अच्छा चलो मुझे बताओ, मुझे क्या क्या करना है मेरी प्यारी मौसी के लिए?
3: ऐसा कर, कमला से कहकर वो बगल वाला कमरा ठीक करवा ले मीता के लिए।
0: पर माँ, मौसी मेरे साथ मेरे कमरे में नहीं रह सकती क्या, प्लीज माँ?
3: अच्छा, तुझे बड़ा प्यार आ रहा है मौसी पर।
0: आई भी क्यों ना, मौसी है भी तो कितनी मॉडर्न, हर तरह की ड्रेस उन पर फपती है। अमेरिका में रहती है वो भी अकेले, जॉब करती है इतनी बड़ी कंपनी में, तुम्हारी तरह नहीं, घर से मंदिर, मंदिर से घर, इसके सिवा कहीं आना जाना नहीं, दुनिया जहान में कुछ भी हो तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं।
4: ओहो, तू फिर से शुरू हो गई।
0: चलो छोड़ो माँ, अब तो मौसी आने वाली है, कितना मजा आएगा ना, मैं अपनी सारी फ्रेंड को मौसी से मिलवाऊंगी, वो भी तो देखे मेरी मौसी कितनी मॉडर्न है।
4: अच्छा बाबा ठीक है, तू और तेरी मौसी, चल अब मुझे कुछ काम भी करने दे। कमला, ओ कमला।
5: आई आई माँ जी।
4: देख मीता आ रही है अमेरिका से, राधिका की मौसी, तो उसके हिसाब से थोड़ा घर ठीक ठाक कर दे, अच्छे से साफ सफाई कर दे, उसे थोड़ी सी भी गंदगी पसंद नहीं है।
5: अच्छा तो आपकी बहन आ रही है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप चिंता ना ही करो, और बाजार से कुछ मंगवाना हो तो बता दो, पहले से ही ले आऊं।
4: हाँ हाँ चल, अभी तुझे लिख कर दे देती हूँ जो जो मंगवाना है, और देख जब वो यहाँ रहेगी तो छुट्टी मत कर लेना, पहले से ही कह रही हूँ, काम बढ़ते ही तो छुट्टी करने लगती है।
5: नहीं माँ जी, आप फिक्र मत करो, वैसे

0: कितने लोग आ रहे हैं उनके साथ?
1: बस केवल मीता ही आ रही है।
0: और उनके बाल बच्चे, वो नहीं आ रहे? उन्हें वहीं छोड़कर आ रही हैं क्या वो?
1: अरे उसने शादी ही कहाँ की है जो बाल बच्चे होंगे। चल अब ज्यादा पंचायती मत कर, काम पर लग जा।
0: जी जी माँ जी।
2: माँ माँ क्या कर रही हो? सारी तैयारियां हो गई क्या? आज मेरी प्यारी मौसी आ रही है, कुछ काम बचा हो तो बता दो, फिर उन्हें लेने एयरपोर्ट भी तो जाना है।
1: हाँ हाँ ठीक है, काम सब हो चुका है। कितने बजे जाना है उसे लेने? मैं भी तैयार हो जाऊंगी एयरपोर्ट जाने के लिए।
3: तुम भी चलोगी एयरपोर्ट?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, तू समय तो बता।
3: आज शाम 4 बजे।
1: ठीक है, फिर मैं थोड़ा बहुत काम निपटा कर तैयार होती हूँ, तू भी देख ले कहीं कुछ रह तो नहीं गया।
3: हाँ, हमेशा मंदिर के सिवा कहीं ना जाने वाली माँ आज मौसी को लेने एयरपोर्ट चलेगी। वैसे तो कहीं भी जाने को कहो तो कहेंगी तुम ही जाओ, मुझे बड़ा काम है। क्या ये वही माँ है? कुछ भी हो, बहन जो आ रही है, मिलने का मन तो होगा ही। माँ माँ चलो भी, मौसी की फ्लाइट आने ही वाली है, जल्दी करो, एयरपोर्ट पहुंचने में भी तो समय लगेगा ना, कैब इंतजार कर रही है कितनी देर से।
4: आती हूँ बाबा आती हूँ। कमला
0: जी।
4: ओ कमला, हम आते हैं एयरपोर्ट से, नाश्ता तैयार रखना।
0: जी माँ जी।
4: लो चलो, आ गई मैं।
3: ओहो माँ कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे।
4: नहीं होंगे, शांति रख।
3: ए, दिल्ली का ट्रैफिक, उफ, मैंने तुम्हें कहा था समय से निकलो घर से, आज मौसी आ रही है माँ।
4: हाँ हाँ सबर रख, इतनी बेसब्री क्यों हुई जा रही है, बाहर निकलने में भी उसे समय लगेगा।
3: आज मैं ऊपर आसमानी चे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। मौसी मौसी मौसी, आज मेरी मौसी आ रही है। यस

0: लो माँ आ गया एयरपोर्ट।
1: हाँ हाँ, और तेरी प्यारी मौसी भी।
0: चलो अब जल्दी चलो,
1: चलो जल्दी चलो। मीता भी आती होगी।
0: चलो माँ संभल के। लो आ गई मौसी की फ्लाइट। पर माँ मौसी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। मौसी शायद निकली नहीं है प्लेन से। मौसी कम फास्ट ना। अरे बुरी मौसी, मौसी माँ देखो ना कितनी सुंदर और यंग लग रही है, देखो तो सही।
1: हाँ हाँ आ गई आ गई। कैसी हो मीता, हम तो बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
2: मैं भी तुम सब से मिलने को आतुर थी। कैसे हो तुम सब? अरे राधिका कितनी बड़ी।
1: अरे मीता बातें तो होती रहेंगी। चलो पहले जल्दी से घर पहुंचते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी। आज मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनाया है।
2: अच्छा, मैं भी यहाँ का डिलिशियस फूड बहुत मिस करती थी, आज तो मजा ही आ जाएगा।
0: हाँ, तो चलो ना फटाफट घर चलते हैं, फिर ढेर सारी बातें भी तो करनी है मौसी से, मेरी प्यारी मौसी।
2: हाँ हाँ, व्हाई नॉट राधिका, लव यू डार्लिंग।

0: लो आ गया घर।
1: चलो मौसी घर आ गया। और अरे ये सामान तो मैं उठा लूंगी। माँ आप वो बैग उठा लो।
2: अरे अरे अरे माँ जी रहने दो, मैं उठा लूंगी सामान तो। मैम साहब नमस्ते। नमस्ते
3: नमस्ते। हाँ घर सा सुकून तो इंडिया आकर ही महसूस होता है। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ आकर।
0: हाँ वो तो है ही। अब आराम से रहे यहाँ कुछ दिन, वहाँ अमेरिका में तो भागदौड़ ही लगी रहती होगी।
3: हाँ वहाँ की लाइफ तो एकदम मशीनी है, बस घड़ी के साथ साथ चलते जाओ। खैर छोड़ो ये सब। अरे राधिका जरा

0: वाला बैग देना। नहीं नहीं वो नहीं, वो हाँ हाँ वो काला वाला।
1: अरे मीता थोड़ा आराम तो कर लो, बैग वैग बाद में खोल लेना।
0: अरे रुको तो, मैं राधिका के लिए बहुत कुछ लाई हूँ वहाँ से, वो भी तो इंतजार कर रही होगी ना कि मौसी क्या लाई है।
2: हाँ हाँ मौसी दिखाओ ना, माँ को तो छोड़ो, माँ तो हमेशा ही ऐसे करती है। तुम बताओ क्या क्या लाई हो मेरे लिए।
3: ये लो। अरे मैं निकाल रही हूँ ना।
2: कोई नहीं मौसी, मैं खुद ही देख लूंगी। अरे वाह मौसी, मेकअप किट। अरे इसमें तो सब कुछ एक साथ ही है, ये तो मिनी ड्रेसिंग टेबल है मौसी। वाओ इसमें तो इतने सारे शेड्स हैं, नेल पेंट, लिपस्टिक। ओहो मौसी थैंक यू सो मच, मौसी लव यू।
3: और ये भी तो देख।
2: अरे ये क्या है मौसी, मोबाइल, इतना सुंदर, एकदम लेटेस्ट। वाओ मौसी आपको तो मेरी सारी चॉइसेस पता है, ये तो बहुत सुंदर है। अब मैं अपनी सारी फ्रेंड्स के बीच चान से बताऊंगी कि मेरी मौसी इम्पोर्टेड मोबाइल लाई मेरे लिए सीधा अमेरिका से। मैं अभी आती हूँ।
3: अरे अरे रुक तो राधिका डार्लिंग, रुक तो सही, पहले सारी चीजें तो देख ले जो मैं खास तेरे लिए लाई हूँ।
2: अच्छा और भी कुछ है मेरे लिए? ये तो डिजिटल कैमरा है ना, और ये लैपटॉप, साथ में प्रिंटर भी। वाओ अब तो मजा ही आ जाएगा और मेरा काम और भी आसान हो जाएगा मौसी, लव यू।
3: और ये भी देख, किचन के लिए हैंड मिक्सर भी।
2: मौसी छोड़ो ना ये सब, ये तो माँ को ही दिखाना, उन्हीं के लिए ठीक है। देखो तो अभी भी रसोई में लगी हुई है खाना पकाने में। चलो पहले मैं तुम्हारी फोटो खींचती हूँ। माँ माँ तुम भी आ जाओ ना मौसी के साथ फोटो खिंचा लो। आओ ना माँ जल्दी आओ।
1: आती हूँ बाबा, तुझे तो हमेशा जल्दी ही लगी रहती है, अभी कौन भागा जा रहा है यहाँ से।
2: माँ तुम भी ना, चलो आओ यहाँ बैठो, और ये बाल भी तो सही करो अपने, थोड़ा सा पीछे। हाँ अब लग रही हो अच्छी, और स्माइल। वाह मौसी कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो आप, माँ को तो कोई सलीका ही नहीं है सजने सवरने का। अच्छा चलो आप दोनों बातें करो, मैं चली अपने फ्रेंड्स के पास अपना नया मोबाइल दिखाने। बाय।
0: कितनी प्यारी और इनोसेंट है ना ये, और इंटेलिजेंट भी।
3: अच्छा अच्छा अब कुछ खाने का इरादा है या? कमला जल्दी से नाश्ता लगा।
4: हाँ माँ जी सब तैयार है, जैसा आपने बोला था ना मेम साहब के लिए मैंने आलू के पराठे गरम गरम और वेजिटेबल रायता बनाया है।
0: रुको तो मैं फ्रेश होकर आती हूँ पहले।
3: अच्छा जल्दी आ। कितना अरसा बीत गया पर फिर भी वो सारी बातें जहन में आज भी वैसी की वैसी ही बसी हुई हैं। कल की ही सी बात लगती है, यही मीता कितनी अल्हड़ और मस्त थी, कितनी मिलनसार थी, सबसे घुल मिलकर बातें करने वाली, और कितनी साफ गोई से रवि के बारे में इसने मुझे बताया था, उसकी तस्वीरें दिखाई थी, और फिर अचानक जैसे सैलाब आ गया, रवि कहीं गायब हो गया था और यही मीता पेट से थी, रोते हुए इसने बताया था।
0: दीदी दीदी रवि कहीं चला गया है, उसका उसका कोई कांटेक्ट भी नहीं मिल रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा है, वो तकापास निकला। वैसे तो कैसी मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन लेकिन जब मैंने शादी के लिए जोर डाला तो भाग गया बिना कुछ सुने। उसने उसने छल किया है मेरे साथ, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ दीदी, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं दीदी।
1: क्या ये तुमने क्या किया मीता, हिम्मत रखो, पर क्या तुमने ये सब रवि को बताया था, उसे मालूम है कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो?
0: बताया था दीदी, उसे सब कुछ बताया था, उसके बाद से ही तो वो गायब है, अब लगता है कि उसका शादी का कोई इरादा था ही नहीं, वो तो बस मुझे बहला रहा था, झूठे सपने दिखा रहा था। अब मैं भी इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, मैं ही क्यों इस पाप की गठरी को पैदा करूं, क्यों मैं अकेले ही इसकी परवरिश करूं, नहीं नहीं अब मैं इसे जन्म नहीं दूंगी।
1: ये क्या कह रही हो मीता तुम,

0: ऐसा सोचना भी पाप है। मत भूलो कि इस पाप में तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारी।
1: नहीं, ये मेरी आजादी में बाधा है। मैं इसे जन्म नहीं दूंगी, और यदि दिया भी तो जन्म के बाद ही इसे मार डालूंगी।
0: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मीता। यदि तुम इसे पालना नहीं चाहती हो तो मैं बड़ा करूंगी इसे, अपना बच्चा मानकर पालूंगी इसको। तुम तो बस इसे जन्म भर दे दो, फिर तुम्हारी जो मर्जी हो करना, जहां जाना हो चली जाना। और फिर राधिका का जन्म हुआ, और ये मीता अपनी सारी ममता छोड़ इसे मुझे सौंपकर हमेशा के लिए अमेरिका चली गई। पर क्या वो सुखी है, संतुष्ट है अपने जीवन से?
2: लो मैं आ गई फ्रेश होकर। अरे कहाँ खोई हुई थी दीदी?
0: हाँ अच्छा अच्छा, तुम बैठो यहाँ आराम से।
2: यहाँ कितनी धूल मिट्टी होती है ना, बिना नहाए चैन ही नहीं आ रहा था। चलो अब बताओ क्या क्या बनाया मेरे लिए।
0: हाँ हाँ तुम बैठो तो, मैं अभी लाती हूँ। कमला जल्दी से नाश्ता लगा।
3: जी माँ जी, जी माँ जी, सब तैयार है, आ जाओ आप टेबल पर।
0: चल मीता।
2: हाँ हाँ जल्दी चलो, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, कितने दिन हो गए मुझे आलू का पराठा खाए हुए।
0: मीता तुम्हारे आने से कितना अच्छा लग रहा है, 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और इस राधिका को तो देखो, तुम्हें 1 मिनट नहीं छोड़ती, हमेशा चिपकी ही रहती है तुमसे।
2: हाँ दीदी, बड़ी ही प्यारी है राधिका। एक बात कहूँ दीदी, राधिका को आगे पढ़ने के लिए मेरे साथ अमेरिका भेज दो, मुझे भी सहारा हो जाएगा, और तुम परेशान मत हो, तुम भी साथ आ सकती हो। विजिटिंग वीजा, पासपोर्ट, सबका इंतजाम कर दूंगी मैं। वहां मेरा बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, कार है, बस अकेलापन मुझे मार डालता है दीदी। मैं बहुत मेहनत कर चुकी, रात को 12 बजे भी ऑफिस से कॉल आता है तो मैं कार लेकर दौड़ पड़ती हूँ। डॉलर डॉलर डॉलर बहुत कमा लिए। पहले तो मैं सब कुछ वाइंड अप करके यहीं सेटल होने का सोच रही थी,

0: रात को 12 बजे भी ऑफिस से कॉल आता है तो मैं कार लेकर दौड़ पड़ती हूँ। डॉलर डॉलर डॉलर बहुत कमा लिए। पहले तो मैं सब कुछ वाइंड अप करके यहीं सेटल होने का सोच रही थी, पर उसमें थोड़ी सी लीगल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी है, सो तुम्हारा ही वहाँ आना बेटर रहेगा दीदी।
1: क्यों मौसी, बुरा ना मानना, आपकी उम्र अभी इतनी ज्यादा भी नहीं है, आप शादी क्यों नहीं करती? आजकल तो इंडिया में ही बड़ी बड़ी उम्र की लड़कियां शादी करती है, और फिर आप तो इतनी सुंदर हो, सर्वगुण संपन्न।
0: मैं इस उम्र में इतना रिस्क नहीं ले सकती बेटा, इस तरह रहने की तो मुझे आदत हो गई है, और इस उम्र में आकर किसी पर विश्वास करने का जोखिम उठाकर फिर धोखा खा जाओ तो संभलना बड़ा मुश्किल होता है बेटा। मैंने बहुत सी बातें सुनी है इस तरह की, और फिर मेरा एक्सपीरियंस भी है। ना बाबा ना, अब रिस्क नहीं उठा सकती।
2: अच्छा अच्छा, चलो छोड़ो ये बातें। मीता, ये बताओ कहीं घूमने चलना है? तुम्हें याद है बचपन में हम घूमने के कितने शौकीन थे, और तुम तो कैमरा लेकर बस फोटोज खींचती जाती थी, कितनी ढेर सारी फोटोज थी हमारी।
3: अच्छा माँ, तुमने तो कभी नहीं बताया मौसी के बारे में ये सब, ना ही कभी फोटोज दिखाई। बताओ ना कहाँ रखी है वो फोटोज, मुझे देखनी है सारी फोटोज अभी देखनी है।
2: अरे रखी है कहीं संदूक में, वो सब तो बाद में देख लेना, अभी तो मौसी के साथ घूमा कहीं और अपने नए कैमरे से फोटोज ले ले।
3: नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो आप दोनों की फोटोज देखनी है, मैं अभी निकाल कर आती हूँ। कौन सा, वो बड़े वाले संदूक में ही रखी है ना?
2: उफ, ये लड़की भी जो ठान ले करके ही मानती है।
3: इसी संदूक का बोला था माने, देखू तो कहाँ रखी है इसमें। ओहो, कितना सारा सामान रखा है माने इस संदूक में, लगता है सारा सामान निकालना पड़ेगा, नीचे कहीं छुपा के रखी होंगी किसी कोने में। ये क्या है, शायद यही होगी वो फोटोज। अरे ये तो कुछ लेटर्स और साथ में ये कागजों का पुलिंदा, और ये तो लीगल पेपर्स लगते हैं। क्या लिखा है इनमें जरा देखूं तो। अरे ये तो गोद लेने की कार्रवाई के कागजात हैं। अच्छा तो ये मेरे बारे में है, तो माँ ने मुझे गोद लिया, वो भी मीता मौसी से, तो मीता मौसी मेरी माँ है। और ये लेटर्स में क्या लिखा है, ये तो मौसी ने लिखे हैं माँ को। ओ अच्छा, तो ये बात है, और ये सारी बातें आज तक मुझसे छुपा कर रखी, इसीलिए मौसी के आने से माँ बदली बदली सी लग रही है। उन्हें लग रहा होगा कि मैं कहीं उन्हें छोड़कर मौसी के साथ अमेरिका ना चली जाऊं। हो माँ, तुमने कितना कुछ झेला है, तुमने आज तक इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझे याद है कितनी मुश्किलों में भी तुमने मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो तुम किस तरह से मेरी सारी जिदों को पूरा करती थी, मुझे आज भी याद है वो सारी बातें।
4: मुझे रीना जैसी घड़ी चाहिए।
5: राधिका, अभी इस महीने ही तो तुमने नए कपड़े लिए हैं, और वैसे भी किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, अभी तुम इतनी छोटी हो, तुम्हें क्या जरूरत है घड़ी की?
4: नहीं माँ, मुझे नई घड़ी चाहिए।
5: अच्छा ठीक है, अगले महीने ले लेंगे।
4: नहीं, कल मोना की बर्थडे पार्टी है, मुझे वहाँ घड़ी पहन कर ही जानी है।
5: अरे इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा?
4: माँ तो मुझे जरा भी प्यार नहीं करती ना, मैं कुछ भी बोलूँ तुम हमेशा नानुकुर करती हो।
5: अच्छा बाबा ठीक है, शाम को ले आएंगे, अब तो खुश मेरी प्यारी बेटी, छोटी छोटी बातों पर ऐसे रोते नहीं है।
4: तुम कितनी अच्छी हो माँ।
3: माँ।
6: ओ राधिका, क्या हुआ, मिल गई फोटोज या फिर मैं आऊँ?
3: नहीं माँ, नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ कहाँ रख देती हो तुम चीजों को। चलो छोड़ो, बाद में ढूंढेंगे, अभी तो कुछ खाने को लाओ, बड़ी जोरों की भूख लगी है मेरी अच्छी माँ। मौसी, अब कब आओगी इंडिया? देखो अगली बार जब तुम
2: राधिका, 8 बज गए हैं, जल्दी करो, फ्लाइट के समय से 3 घंटे पहले पहुंचना होगा, सिक्योरिटी चेकिंग में ही तो टाइम लगेगा।
3: हाँ हाँ माँ, कर रही हूँ ना।
2: और हाँ राधिका, मैं मंदिर में अभिषेक के लिए सामान देकर आई थी, पुजारी जी ने प्रसाद घर भिजवाने को कहा था, अभी तक भेजा नहीं, मैं जरा जाकर प्रसाद लेकर आती हूँ, तुम मौसी की मदद करो पैकिंग में, मैं आती हूँ।

0: मौसी, क्या कर रही हो? मैं कुछ मदद करूं?
1: नहीं राधिका, कुछ नहीं। पर यदि मेरी मदद ही करना चाहती हो तो जल्दी से कोई तरकीब करके अमेरिका आने की सोचो। इसी में मेरी खुशी है बेटा।
0: क्यों माँ, अचानक मुझ पर इतना प्यार उमड़ रहा है?
1: ये क्या बोल रही हो राधिका? मैं तो
0: मुझे मालूम है मौसी, तुम ही मेरी माँ हो। और आज तक मैं जिसको माँ माँ कहती रही, असल में वो मेरी मौसी है।
1: तो क्या दीदी ने तुम्हें सब बता दिया?
0: माँ ने नहीं बताया कुछ भी। वो तो बताएगी भी नहीं, और क्यों बताएगी वो? पर जब से आप आई हो ना मौसी, तब से माँ में मैंने अजीब सी घबराहट देखी। उनमें एक अजीब सी टेंशन मैंने महसूस की। तो मुझे डाउट हुआ, लगा जरूर कोई ना कोई बात है जो माँ मुझसे छुपा रही है। आपको याद है मौसी, जब मैं फोटोज ढूंढने गई थी, कितनी खुश थी मैं। और तभी मुझे मिले कुछ कागजात, उनमें आपने मुझे गोद देने की पूरी कार्यवाही करके फिर कभी वापस नहीं लेने की बात लिखी थी।
1: पर राधिका, वो तो
0: अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये भी आपने ही लिखा था ना मौसी? और कुछ चिट्ठियां जो आपने अमेरिका में लिखी थी 25 साल पहले, किसी पर विश्वास करके धोखा खाया और ये पाप मेरे पेट में देकर चला गया, ऐसा तुमने माँ को लिखा था ना मौसी? और ये भी कि दीदी, तुमने इसे पालने का जिम्मा लिया था, इसीलिए मैंने इसे पैदा किया, नहीं तो गर्भ में ही खत्म कर देती या पैदा होने के बाद भी मार सकती थी। ऐसे लेटर लिखे आपने मौसी। थैंक यू मौसी, तुमने मुझे पैदा किया और पैदा होने के बाद भी तुमने मुझे जहर देकर या गला दबाकर नहीं मारा, और मुझे पालने के लिए अपनी बहन को दे दिया। थैंक यू सो मच मौसी। ये पाप की गठरी बोल रही है आज आपको। थैंक यू सो मच मौसी।
1: राधिका, मैं तो, मेरा ये मतलब नहीं था बेटा। राधिका सुन मेरी बात। मैं
0: अकेलापन काटता है ना, इसीलिए इस पाप की गठरी से रिश्ता रखोगी? नहीं, पापी लोगों से दूर ही रहना चाहिए मौसी, यही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तुम्हें पता है मौसी, बेचारी माँ ने पापा के जाने के बाद भी मुझे अच्छे से पाला पोसा, अपना सारा प्यार और विश्वास मुझे दिया, मुझे कहानियां सुनाई, लोरियां सुनाई, माना कि वो नए जमाने की नहीं है। तो क्या हुआ मौसी, उनमें ममता है, उनमें स्वाभिमान है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा मौसी कि मैं मेरी माँ को छोड़कर तुम्हारे साथ चल दूंगी, पश्चिमी चकाचौंध से आकर्षित हो जाऊंगी? ये जो इतने उपहार तुम लाई हो, वो एक छल ही तो था ना? नहीं मौसी, नहीं, यही इसी मिट्टी में मेरी जड़े हैं, उसको उखाड़ कर दूसरे देश में ले जाकर रोपने में मैं विश्वास नहीं करती। इस मिट्टी में मेरी माँ ने बड़े प्यार और दुलार से, संस्कारों से मुझे बड़ा किया है मौसी। मुझे परंपराएं सिखाई, आदर्श दिए, आप उन्हें उखाड़ मत देना। मुझे पैदा करने के एवज में बस इतना सा उपहार तो दे ही सकती हूँ मौसी।
1: राधिका सुन तो, ये मैंने क्या किया? अब तो मुझे अकेले ही रहना है, हमेशा अकेले। अब तो मेरी जिंदगी सदा के लिए ठहर गई है।

0: आप सुन रहे थे नाटक ठहरी हुई जिंदगी, लेखिका शांति देवी गंगवाल, प्रतिभागी कलाकार नीना कपिल, रुचि भार्गव, प्रियंका अग्रवाल, पूजा चंदवानी और अंशिका बारहट, प्रस्तुतकर्ता एचएस व्यास।
1: ये था नाटक ठहरी हुई जिंदगी, लेखिका थी श्रीमती शांति देवी गंगवाल।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12:40 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म निकाह में अभी आपने सुना सलमा आगा को। फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मन्ना डे की आवाज में। फिल्म का नाम दर्पण।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमेरु चैनल से सुन रहे हैं।

हिमालय की गोद में। इस फिल्म में अभी आपने सुना मुकेश को। फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम जिगरी दोस्त।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के डोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में जयपुर से रिले होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। लोकसभा में आज सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य प्रश्न पत्र लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करना है। विधेयक पेश होने के कुछ ही देर बाद विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष से विधेयक पर चर्चा में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि ये छात्रों के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है और परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम है। सुप्रीम कोर्ट कल नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस बल के कथित अत्यधिक प्रयोग से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में पुलिसकर्मियों पर हमले के संबंध में उनके परिजनों की ओर से दायर अलग याचिका पर भी साथ में सुनवाई करने पर सहमति जताई है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि शांतिपूर्ण और कानून सम्मत विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह मामले में न्यायालय की सहायता करेंगे। अजमेर की आनासागर झील के संरक्षण और प्रदूषण रोकने के लिए 22 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से कार्य शुरू किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज वैशाली नगर में इस परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत झील में गिरने वाले नालों की ट्रिपिंग प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा ताकि गंदा पानी झील में न पहुंचे। परियोजना में झील के संरक्षण और पर्यावरण सुधार से जुड़े अन्य कार्य भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे जल गुणवत्ता में सुधार होगा और आनासागर झील की प्राकृतिक सुंदरता के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 12 जिले के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना के तहत पात्र युवाओं के पंजीकरण के लिए आज से विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर बालमुकुंद अरसवानी अधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र युवाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना के शुरू होने के 5 दिन में ही 5,000 से अधिक युवाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। राज्य में इस योजना का पायलट चरण फिलहाल केवल 12 जिले

0: अब जयपुर की बगरू विधानसभा क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव 2026 के लिए भीलवाड़ा जिले में रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार नगर निगम भीलवाड़ा के वार्ड संख्या 1 से 35 तक के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रतिमा देवटिया को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं उपखंड अधिकारी और तहसीलदार भीलवाड़ा को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। जिले की विभिन्न नगर पालिकाओं के लिए संबंधित उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोटा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा प्रशिक्षण को अधिक व्यावहारिक और सुरक्षित बनाने के लिए अत्याधुनिक स्किल लैब स्थापित की गई है। करीब 2,14,00,000 रुपए की लागत से तैयार ये लैब प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अपनी तरह की पहली सुविधा है। इसमें अत्याधुनिक मैनिक्विन और सिमुलेशन आधारित उपकरणों के माध्यम से मेडिकल विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों को विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नीलेश कुमार जैन ने बताया कि इससे विद्यार्थियों को वास्तविक मरीजों पर उपचार शुरू करने से पहले सुरक्षित वातावरण में अभ्यास का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा दोनों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आगरा में 9, जवाजा में 5 और कुंभलगढ़ में 3 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 1:05 हुए हैं। बहनें सुनेगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रही हैं मधु शर्मा और साक्षी गोस्वामी।

0: स्वागत है सखियो आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में, और स्वागत कर रही हैं आपकी अपनी दो सखियां, मैं मधु शर्मा और मेरे साथ है
1: साक्षी गोस्वामी। तो कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: मधु, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात मुझे याद आ रही है। वो कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते।
0: बिल्कुल।
1: और ये केवल एक प्रेरणादायक वाक्य ही नहीं है बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के जीवन का सच था जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया को दिखाया कि साधारण परिस्थितियां कभी असाधारण मंजिल की राह नहीं रोक सकती।
0: तमिलनाडु के रामेश्वरम का एक साधारण सा बालक जिसने बचपन में परिवार की मदद के लिए अखबार बेचे, वही आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन बना, देश का राष्ट्रपति बना और करोड़ों युवाओं की उम्मीद बन गया।
1: बिल्कुल। और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम केवल एक महान वैज्ञानिक को याद नहीं कर रहे बहनों, बल्कि उस शिक्षक, उस मार्गदर्शक और उस कर्मयोगी को नमन कर रहे हैं जिसने हर युवा के मन में ये विश्वास जगाया कि यदि इरादे बुलंद हों तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता।
0: बिल्कुल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के कुछ ऐसे प्रेरक प्रसंग जानेंगे जिन्होंने उन्हें केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि करोड़ों दिलों का प्रेरणा स्रोत भी बना दिया। तो बहनों, रुकिएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ इस गीत के बाद भी।

0: बहनों, हम फिर से लौट आए हैं उन्हीं बातों के दौर में जहां आपको छोड़कर गए थे। हम बात कर रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। बचपन का संघर्ष हो या वैज्ञानिक जीवन की चुनौती या फिर देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना, हर कदम पर उन्होंने यही सिखाया कि असफलता अंत नहीं है बल्कि सफलता की नई शुरुआत होती है।
1: तो आइए बहनों, आप जानते हैं कलाम जी के जीवन के कुछ और प्रेरणादायक पहलुओं को जो आज भी हर युवा, हर विद्यार्थी और हर नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि उन्होंने ही हमें सिखाया है कि सपने देखना जितना जरूरी है, उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल। साल 1979, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 अंतरिक्ष में भेजा जाना था। पूरे देश की निगाहें इस मिशन पर थी। परियोजना निदेशक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन क्या मिशन असफल हो गया? वर्षों की मेहनत पल भर में बिखर गई। ऐसे कठिन समय में इसरो के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन आगे आए और उन्होंने कहा कि इस असफलता की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, और उन्होंने अपनी पूरी टीम का मनोबल बढ़ाया।
1: एक वर्ष के बाद यानी 1980 में वही मिशन सफल हुआ। इस बार प्रोफेसर सतीश धवन ने कलाम जी से कहा, आज सफलता का श्रेय तुम्हें और तुम्हारी टीम को मिलना चाहिए, मीडिया से तुम बात करोगे। इस घटना ने डॉक्टर कलाम को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया कि सच्चा नेता वही होता है जो असफलता की जिम्मेदारी स्वयं ले और सफलता का श्रेय अपनी टीम को दे। यही सीख उनके व्यक्तित्व की पहचान बन गई।
0: बिल्कुल। और इसके बाद अब्दुल कलाम ने अपने ज्ञान, परिश्रम और दूरदृष्टि से भारत को रक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बहनों, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में उनके योगदान ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी पहचान दिलाई। लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी उनके व्यक्तित्व में ना तो अहंकार था और ना ही किसी प्रकार का दिखावा।
1: सही कह रहे हो साक्षी, उनकी सादगी ही उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी। वे मानते थे कि गरीबी इंसान को की पहचान नहीं बल्कि संघर्ष करने की प्रेरणा बन सकती है। वर्ष 2002 में जब वे भारत के राष्ट्रपति बने, तब भी उन्होंने उनकी पहचान केवल राष्ट्रपति की नहीं थी बल्कि एक ऐसे शिक्षक की थी जो बच्चों और युवाओं में सबसे अधिक

0: प्रेम करते थे।
1: बिल्कुल, उनको सबसे ज्यादा अच्छा उनको अपने व्यक्तित्व में शिक्षक की ही भूमिका लगती थी, है ना मधु। और वो जहां भी जाते थे बस एक ही बात कहते थे कि बड़े सपने देखो, क्योंकि बड़े सपने ही बड़े विचारों को जन्म देते हैं और बड़े विचार ही महान कर्मों का आधार बनते हैं। 27 जुलाई 2015 का दिन भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन डॉक्टर कलाम मेघालय के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में शिलोंग में छात्रों को रहने योग्य गृह विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। बोलते बोलते वे मंच पर अचानक गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन वे दुनिया को अलविदा कह चुके थे।
0: इससे बड़ा समर्पण और क्या हो सकता है साक्षी, कि जिसने अपना पूरा जीवन युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देने में बिताया, उससे उसने अपनी अंतिम सांस भी विद्यार्थियों के बीच ही ली, है ना, उन्हें प्रेरित करते हुए ली। यदि हम उनके जीवन से केवल 3 बातें अपना लें, बड़े सपने देखना, निरंतर सीखते रहना और विनम्र बने रहना, तो यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: बिल्कुल श्रद्धांजलि होगी बहनों। और अब्दुल कलाम एक बात कहा करते थे कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। आज उनकी पुण्यतिथि में हम ये संकल्प लेते हैं बहनों कि अपने सपनों को अपनी मेहनत, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा की भावना से साकार करेंगे। जैसे भारतीय सेना में निरंतर देश की सीमा में डटी हुई है हर परिस्थिति में, तो आइए भारतीय सेना की शौर्य गाथा सुने कैलाश खेर की आवाज में।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल

0: मधु कहते हैं कि जहां नारी का सम्मान होता है वहीं से एक सशक्त और विकसित समाज की शुरुआत होती है। जब भी हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारे सामने आधुनिक तकनीक, बेहतर शिक्षा, मजबूत अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर देश की तस्वीर उभरती है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल भी उठता है कि क्या महिलाओं की भागीदारी के बिना विकसित भारत का सपना पूरा हो सकता था?
1: बिल्कुल भी नहीं साक्षी। आज के समय में हम महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारियां ही नहीं निभा रही बल्कि शिक्षा, विज्ञान, सेना, खेल, राजनीति, व्यापार, कृषि और अंतरिक्ष जैसे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। हम परिवार की शक्ति भी हैं और देश की प्रगति की भागीदार भी। एक समय था साक्षी जब हम बेटियां केवल हमारी जो बेटियां थी या फिर हम भी केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित समझी जाती थी, लेकिन आज हम हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं।
0: और यही बदलाव केवल महिलाओं की नहीं बल्कि पूरे भारत की सोच में आए बदलाव का प्रतीक है। जैसे कि कल्पना चावला ने भी कहा था कि सपनों को सच करने का रास्ता हमेशा मौजूद होता है, उसे देखने की दृष्टि और उस पर चलने का साहस होना चाहिए। और ये कथन हर उस बेटी को प्रेरित करता है जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहती है।
1: सही कह रहे हो साक्षी। जो हम विकसित भारत का सपना देखते हैं ना, वो तभी पूरा होगा जब हम हर बेटी को समान अवसर देंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, सुरक्षित वातावरण मिलेगा और उसके निर्णय का सम्मान होगा। केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है साक्षी, बल्कि समाज की सोच में भी सकारात्मक बदलाव आना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और इसके लिए मधु हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। बेटा और बेटी दोनों को समान अवसर दें, दोनों को समान संस्कार दें और दोनों के सपनों को समान महत्व दें, क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो केवल एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है। इसलिए कहा भी जाता है बहनों कि एक सशक्त महिला एक सशक्त समाज की पहचान होती है।
1: बिल्कुल साक्षी। वहाँ हमें ये भी समझना होगा साक्षी कि विकसित भारत का सपना केवल कुछ सफल महिलाओं से ही पूरा नहीं होगा। ये सपना तभी साकार होगा जब देश के हर गांव, हर कस्बे और हर शहर की बेटी को पढ़ने का अवसर मिलेगा, अपने सपने चुनने की आजादी मिलेगी और सुरक्षित वातावरण का निर्माण होगा।
0: बिल्कुल। और स्वामी विवेकानंद का एक कथन याद आ रहा है मुझे मधु, कि वो कहा करते थे कि जिस राष्ट्र ने अपनी महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखा वो कभी महान नहीं बन सकता। और ये केवल एक विचार नहीं है बल्कि एक राष्ट्र निर्माण का मूल मंत्र है। आज आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत, स्टार्टअप भारत और विकसित भारत जैसे अभियानों में लाखों महिलाएं अपने हुनर और मेहनत से नई मिसालें कायम कर रही हैं।
1: बिल्कुल साक्षी। कोई स्वयं सहायता समूह चलाकर गांव की तस्वीर बदल रही है, तो कोई छोटा व्यवसाय शुरू करके दूसरों को रोजगार दे रही है, तो कोई विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन कर रही है। लेकिन जैसे ये सच है वैसे भी साक्षी एक सच ये भी है कि अभी भी कई बेटियां बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। यदि हमें सचमुच विकसित भारत बनाना है तो इन चुनौतियों को मिलकर दूर करना होगा।
0: बिल्कुल, दूर करने का पूरा प्रयास रहेगा मधु। तो आइए बहनों हम ऐसा भारत बनाएं जहां हर बेटी अपने सपनों को पंख दे सके, हर महिला सम्मान के साथ जी सके और हर नागरिक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और अब इस चर्चा के बाद हम चलते हैं अपने कार्यक्रम में अगले पड़ाव के पास, यानी कि गीतों के संसार में, और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: बहनों अभी हम बात कर रहे थे विकसित भारत में महिलाओं की, है ना। तो बहनों अब तो हम महिलाओं में इतनी इंडिपेंडेंसी हो गए हैं, हम आ गए हैं हमने कि सिर्फ हम गर्ल्स ट्रिप में भी जाने के सोचने लगे हैं, है ना। और गर्ल्स ट्रिप भी हम बनाने लग गए हैं और घूमने जाते हैं, यानी कि हम सब महिलाएं मिलकर घूमने जाते हैं। तो यदि आप भी अपनी गर्ल्स ट्रिप पर जाना चाहती हैं तो हमारे राजस्थान से सुंदर तो कुछ भी नहीं है। क्या क्या है यहाँ पर और कहाँ कहाँ हम घूमे, जानेंगे इस वार्ता के जरिए जिसका विषय है मरु प्रदेश की अद्भुत एवं अद्वितीय हवेलियां। और वार्ताकार

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: बहनों अभी हम बात कर रहे थे विकसित भारत में महिलाओं की, है ना। तो बहनों अब तो हम महिलाओं में इतनी इंडिपेंडेंसी हो गए हैं, हम आ गए हैं हमने कि सिर्फ हम गर्ल्स ट्रिप में भी जाने के सोचने लगे हैं, है ना। और गर्ल्स ट्रिप भी हम बनाने लग गए हैं और घूमने जाते हैं, यानी कि हम सब महिलाएं मिलकर घूमने जाते हैं। तो यदि आप भी अपनी गर्ल्स ट्रिप पर जाना चाहती हैं तो हमारे राजस्थान से सुंदर तो कुछ भी नहीं है। क्या क्या है यहाँ पर और कहाँ कहाँ हम घूमें, जानेंगे इस वार्ता के जरिए जिसका विषय है मरु प्रदेश की अद्भुत एवं अद्वितीय हवेलियां। और वार्ताकार हैं श्रीमती सुनीता श्रीमाली।
2: मरु प्रदेश की सांस्कृतिक बसावट अपने आप में अद्वितीय है। इसमें सांस्कृतिक वैभव, वास्तु एवं कला का अनूठा संगम देखा जा सकता है। इसी मरु प्रदेश में बसा बीकानेर कलात्मक एवं सांस्कृतिक शहर है। यह शहर अपनी कलात्मक वैभव के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जहां एक ओर रेत का समंदर पसरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर अपने शिल्प एवं स्थापत्य का बेजोड़ उदाहरण हवेलियां सीना तानकर खड़ी नजर आती है। शहर छोटी छोटी गलियों में बटा हुआ है और इन्हीं गलियों में स्थापत्य कला बिखरी हुई है। शहर में चारों ओर लाल पत्थर से बनी सुंदर वैभवशाली छोटी एवं बड़ी हवेलियां अपना इतिहास समेटे हुए बहुत कुछ बयान करती है। यह हवेलियां इस बात की भी गवाही देती है कि यह शहर कितना वैभवशाली रहा है। यहाँ के निवासी स्थापत्य शिल्प एवं वास्तुकला के कितने पारखी रहे हैं। सबसे भी अहम यह कारीगर होंगे जिन्होंने अपनी अथक मेहनती अद्वितीय कारीगरी से इन हवेलियों को वास्तविक स्वरूप दिया। जब हम बीकानेर की हवेलियां देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं कि लाल पत्थर पर जो कोरनी का कार्य किया गया है वह किस प्रकार से किया गया होगा। एक एक हिस्से को बहुत ही बारीकी से उकेरना तथा उसको अगले पत्थर से मिलाना, वास्तव में यह बहुत ही मेहनत एवं बेजोड़ शिल्प कारीगरी का कार्य रहा है। हवेलियों को देखने मात्र से पता चलता है कि यह कार्य कोई साधारण कार्य नहीं था। इस कार्य में धैर्य, साहस, जोखिम एवं कला का उपयोग अपनी चरम सीमा तक किया गया, तब जाकर इन हवेलियों का निर्माण संभव हुआ। बीकानेर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन शहर में थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको लाल पत्थरों से बनी हवेलियां देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहां जो पर्यटक आते हैं वह शहर की प्रसिद्ध रामपुरियों की हवेलियां देखने जरूर आते हैं। यहां की हवेलियां मुख्यतः व्यापारी या धनाढ्य वर्ग की ही है। इसमें मुख्य रूप से रामपुरिया, कोठारी, सेठिया, बागड़ी, मोहता, मुंदड़ा, सुराणा, दम्माणी, डड्डा, डागा आदि तथा कुछ एक पुष्करणा जाति की है। रियासत काल में हवेली में रहना या बनना अपने आप में प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। बीकानेर के राजा राय सिंह के समय बीकानेर किला जूनागढ़ का निर्माण हुआ, जो कि बहुत ही विशाल मजबूत किलों में गिना जाता है। इन्हीं राजा के मंत्रीश्वर श्री करमचंद बच्छावत भी देखरेख से शहर की बसावट का कार्य आरंभ भी हुआ। जाति अनुसार अलग अलग मोहल्लों एवं चौक में लोगों ने रहना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे आम जन ने व्यापार प्रारंभ किए, उनकी आय बढ़ी तथा उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार बड़े महल नुमा घर बनाने आरंभ कर दिए। यह महल नुमा घर ही हवेली कहलाते हैं। यहाँ की हवेलियों का इतिहास लगभग 300 से 350 वर्ष पुराना है। बीकानेर के सभी हवेलियों में दुलमय का लाल पत्थर ही उपयोग लिया जाता है। हवेली का मुख्य भाग बाहरी हिस्सा चेहरा होता है। इस हिस्से पर पत्थर पर कोरनी, बेल बूटे, अलग अलग आकार एवं प्रकार की चित्रात्मक डिजाइन उकेरी जाती थी। हवेली निर्माण का पूरा अपना व्याकरण होता है। इसके अंतर्गत नाप तोल, सुंदरता, वास्तु एवं मजबूत

का बहुत ही बारीक आंकलन किया जाता है। इसी वजह से आज सैकड़ों साल पहले की बनी हुई हवेलियां अपने मूल स्वरूप में देखने को मिलती है। बीकानेर में स्थित रामपुरियों की हवेलियों को देखने देसी तथा विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है। जिस स्थान पर यह हवेलियां स्थित वह स्थान रामपुरिया मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। यहाँ सेठ भंवरलाल रामपुरिया, हीरालाल रामपुरिया एवं माणकचंद रामपुरिया की हवेलियाँ विशेष रूप से पर्यटकों को आकर्षित करती है। तीनों हवेलियाँ बहुत ही विशाल है। बीकानेर में बनी सभी हवेलियों में मुख्य दरवाज़ा बहुत बड़ा होता है, जिसको स्थानीय भाषा में पिरोल कहते हैं, तथा काफ़ी मात्रा में छोटी बड़ी खिड़कियां होती है, जिससे हवा एवं प्रकाश का पूरा बंदोबस्त होता है। साथ ही बाहर आने जाने वाले दिखाई देते रहते हैं। प्रत्येक हवेली में पिरोल के ऊपर जरोखे बने हुए होते हैं। इन जरोखों पर बाहरी और पत्थर लगे हुए होते हैं। इन पत्थरों पर नक्काशी का बेजोड़ कार्य किया जाता था। पत्थरों की जालियां, कोरनी, बेल बूटे, फूल पत्तियां सभी एक निश्चित आकार में धीरे धीरे टंकी एवं हथौड़े से बनाए जाते थे। सभी पत्थर एक दूसरे से मिलने के बाद ऐसे लगते थे कि एक विशाल पत्थर पर यह कार्य किया गया है, जबकि 2 फुट 3 फुट के पत्थरों को एक निश्चित डिजाइन से उकेरा जाता था। यहाँ की हवेलियों में आंगन बड़ा होता था। कई हवेलियों में आंगन में विशेष रूप से टाइल्स का उपयोग किया जाता था, जो कि चाइनीज एवं इटालियन टाइल्स के नाम से जानी जाती है। बड़ा आंगन होने के कारण वर्ष पर्यंत आयोजित होने वाले 30 त्योहारों, रीति रिवाज आदि यहीं संपन्न किए जा सकते थे। हवेलियों में बने कमरों की विशेषता होती है कि यह सर्दी में गर्म तथा गर्मियों में ठंडे रहते हैं। इनका मुख्य कारण है इन कमरों की छतें लकड़ी ठाट की बनी होती थी तथा चिनाई में छोटी छोटी ईंट एवं चूने का प्रयोग होता था। इन कमरों का ओसार भी बड़ा लिया जाता था, जिससे यह बहुत ही मजबूत एवं मौसम के अनुकूल होते थे। बीकानेर की हवेलियों में जहाँ पत्थर का कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है, वहीं उस्ता कला का कार्य भी उतना ही महत्व का है। हवेलियों को अंदर से सुसज्जित करने के लिए हवेलियों की दीवारों, छतों, मेहराबों, स्तंभों आदि को फूल पत्तियों, मीनाकारी, सुनहरी कलम द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट चित्रकारी की जाती थी। इस चित्रकारी के उस्तादों को ही उस्ताद कहा जाता है तथा इनकी कला उस्ताद कला कहलाती है। बीकानेर के उस्ताद कलाकारों का पोर्ट्रेट एवं पेंटिंग बनाने में भी कोई शानी नहीं था। इस प्रकार उस्ताद कला के साथ साथ चूनगरन कलाकारों का भी हवेलियों की साज सज्जा में प्रमुख योगदान है। इसके द्वारा की गई आला गीला कला अपने आप में अनूठी है। इस कला के अंतर्गत चित्र बनाने से पहले चित्र बनाने वाले हिस्से को विशेष रूप से पत्थर के टुकड़े मोर से घोटाई की जाती है। इसके बाद गीली गीली दीवारों पर वाटर कलर से पेंटिंग की जाती थी। यह पेंटिंग दीवार पर छप जाती थी। धूप, बारिश, आंधी इस चित्रकारी को मिटा नहीं सकती। बीकानेर की कई हवेलियों पर आज भी इस कला के चित्र देखे जा सकते हैं। इन कला के अंतर्गत मुख्य रूप से रेलगाड़ी, फूल पत्तियाँ, शादी ब्याह एवं सुंदर सीनरियाँ आदि है। यह चित्र ज़्यादातर हवेली के बाहरी हिस्सों पर बनाए जाते थे। थार रेगिस्तान में होने के कारण बीकानेर कई बार अकाल की चपेट में आया। जब भी अकाल की भयावह स्थिति बनती, यहाँ के सेठ, साहूकार, कारीगर एवं मजदूरों को काम देकर उनके भरण पोषण में

0: सहायता करते। इसी कारण बीकानेर में कई हवेलियां अकाल के समय बनी हुई है। लगभग एक हवेली के निर्माण में 5 से 20 वर्ष का समय लग जाता था। कारीगर एवं मजदूर दिन रात यहीं रहते और कार्य करते, जिससे उनका भरण पोषण एवं नवीन निर्माण दोनों कार्य हो जाते। इस कारण अकाल और हवेलियों का भी आपसी संबंध रहा है। हमें इस ओर जागरूकता बढ़ानी है। शहर की सांस्कृतिक विरासत छुपी हुई है। सैकड़ों कारीगर एवं मजदूरों को श्रम लगा हुआ है। हमारे पुरखों का अपनत्व एवं गौरव बंधा हुआ है। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखना होगा, तभी आने वाली पीढ़ी को हम संस्कृति से जोड़े रख पाने में सफल होंगे।
1: तो बहनों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, जिसका विषय था मोरू प्रदेश की अद्भुत एवं अद्वितीय हवेलियां। वार्ताकार थी श्रीमती सुनीता श्रीमाली। तो बहनों, आपने क्या सोचा? कहाँ घूमने जाने का प्लान बनाया? घूमिए, फिरिए और भरपूर आनंद लीजिए। लेकिन वहाँ जाकर भी हमारा कार्यक्रम यानी कि मेला जगह सुनने का वादा जो आपने हमसे किया है, वो भी आपको निभाना पड़ेगा। कुछ इस गीत की तरह।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।
2: साक्षी कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का सबसे सुंदर उपहार होते हैं। उनकी छोटी छोटी बातें, उनकी मुस्कान और उनके अनगिनत सवाल पूरे घर में एक नई सी ऊर्जा से भर देते हैं, है ना?
3: बिल्कुल।
2: साक्षी, कल शाम की बात है कि मेरी बेटी मेरे पास आकर बैठी। थोड़ी देर तो वो आसमान को देखती रही, फिर वो बोली कि मम्मी, चांद हमारे साथ साथ क्यों चलता है और दिन में तारे कहाँ चले जाते हैं? साक्षी, एक पल के लिए तो मैं मुस्कुरा दी। पहले तो मन हुआ कि कह दूं कि अभी नहीं बेटा, फिर बाद में बताऊंगी, लेकिन फिर लगा कि अगर आज इसके सवाल को मैंने टाल दिया तो शायद कल वो सवाल पूछना ही छोड़ दे।
3: बिल्कुल, है ना? बिल्कुल मधु, सही बात है कि अगर बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं तो वो हमें परेशान नहीं कर रहे होते, बल्कि वे दुनिया को समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। उनके हर सवाल के पीछे कुछ नया सीखने की चाह होती है और उनकी यही जिज्ञासा आगे चलकर उनके सोचने समझने की ताकत बन जाती है। इसलिए उनके सवालों को बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की शुरुआत समझनी चाहिए और प्यार से उनको उत्तर भी देना चाहिए।
2: तभी साक्षी, मैंने भी उस समय अपनी बेटी से कहा, चलो आज हम दोनों मिलकर इसका जवाब पता करते हैं। फिर हमने एक किताब देखी, फिर बच्चों के लिए बने एक कोई साइंस का प्रोग्राम था उसके बारे में भी जाना, और पता है जवाब मिलने के बाद उसके चेहरे पर जो खुशी थी ना, उसे देखकर मुझे लगा कि बच्चों को सिर्फ जवाब देना जरूरी नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर सीखना भी उतना ही जरूरी है।
3: और कहते भी हैं बहनों की सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो आज हम अपने बच्चों से भी कई नई चीजें सीख रहे हैं, है ना? और यही तो बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत होती है मधु। बच्चों को ये सिखाना कि हर बात के पीछे कोई कारण होता है और उसे समझा जा सकता है और समझना भी चाहिए हमें भी। बच्चा अगर कोई सवाल पूछे बहनों, तो उसे डांटने या टालने की बजाय धैर्य से उसकी बात सुनिए और उसका जवाब दीजिए। अगर बच्चा कहे कि बीज से पौधा कैसे बनता है, तो उसे सिर्फ किताब में तस्वीर मत दिखाइए, बल्कि उसके साथ एक गमले में बीज बोइए और रोज उसे बढ़ते हुए दिखाइए। तब बच्चा अपने आप ही जब वो बदलाव दिखेगा तो उसको सीखना उसके लिए आसान हो जाएगा।
2: बिल्कुल सही कहा साक्षी। और बच्चों को प्रकृति के करीब ले जाइए, उन्हें पेड़ पौधों, पक्षियों, बारिश, इंद्रधनुष और रात के आसमान को ध्यान से देखने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि साक्षी कहता है ना कि प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता।
3: बिल्कुल। और आजकल के बच्चे मोबाइल पर काफी समय बिताते हैं, अगर उस समय का थोड़ा सा भी हिस्सा वो विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों में देखने में बिताएं, तो उनके लिए क्या होगा ना कि उनका ज्ञान ही बढ़ेगा। अगर ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ते हैं, खुद को छोटे छोटे प्रयोगों में लगाते हैं, तो उनका मन नई चीजों को सीखने का भी करेगा।
2: बिल्कुल बहनों, एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हमारा बच्चा कोई गलती कर दे या कोई प्रयोग करते समय कोई चीज बिगड़ जाए, तो उसे डांटिए मत, प्यार से समझाएं, क्योंकि सीखने की शुरुआत अक्सर छोटी छोटी गलतियों से ही होती है।
3: गलतियां हमें सिखाती हैं, जैसे कि अभी हमने शुरू में ही बताया था अब्दुल कलाम जी का ये वाक्य था कि गलतियां हमें सिखाती हैं। बहनों, बच्चों को सिर्फ उत्तर याद करवाने के बजाय उनसे पूछिए कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। इससे वो सोचेंगे, समझेंगे और अपनी राय बनाना सीखेंगे। सही आदत, और यही आदत उनको आगे चलकर वैज्ञानिक सोच की मील बनेगी।
2: मैंने याद रखी, हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु होता है, जरूरत केवल इतनी है कि हम उसकी जिज्ञासा को दबाए नहीं बल्कि उसे सही दिशा दें। हो सकता है कि जो बच्चा आज घर में बैठकर आसमान के बारे में सवाल पूछ रहा है, वही कल बड़ा होकर वैज्ञानिक, डॉक्टर या इंजीनियर बने, है ना, और समाज के लिए खोज करने वाला नागरिक बने।
3: बिल्कुल। इसलिए आइए बहनों, अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि सोचने, समझने और हर बात को तर्क की कसौटी पर परखने के लिए भी प्रेरित करें, क्योंकि जिज्ञासा से ज्ञान जन्म लेता है और ज्ञान से उज्जवल भविष्य बनता है।
2: और हमारा कार्यक्रम खूबसूरत तब बनता है साक्षी, जब इसमें होते हैं खूबसूरत नगमे। तो आइए सुनते हैं बहनों कार्यक्रम का अगला गीत।

0: बताएं साक्षी, आज सुबह सुबह हमारे पड़ोस में ना एक भाभी रहती है, वो मुझे मिली। पहले तो वो हमेशा हंसते मुस्कुराती रहती थी, लेकिन आज कुछ नहीं, मुझे थोड़ी उदास सी लगी। अच्छा। जब मैंने उनसे पूछा कि भाभी क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं आजकल क्या हो गया है, सुबह उठते ही थकान सी रहती है, घर का काम करने में मन नहीं लगता और सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूल जाती है और कभी कभी हाथों पैरों में झंझनाहट भी होती है।
1: ये बात तो मैंने भी कई महिलाओं से सुनी है मधु। हम कई बार सोच लेते हैं कि शायद हमारी उम्र बढ़ रही है या काम ज्यादा हो गया है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन कई बार वजह यही नहीं होती है, ऐसा जरूरी है कि यही वजह है।
0: बिल्कुल साक्षी, और पड़ोस वाली भाभी भी यही समझ रही थी, लेकिन जब डॉक्टर के पास गई जांच करवाई तो पता चला कि उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। देखा मैंने, कितनी छोटी सी बात लेकिन अगर समय पर ध्यान में दिया जाए तो बड़ी परेशानी बन सकती है।
1: बिल्कुल मैंने, हम कई बार अपने शरीर के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं, अगर हम समझ जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। जैसे पौधे बढ़ने के लिए पानी और धूप चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए भी कई तरीके के विटामिन चाहिए और उनमें से एक है विटामिन B12। ये हमारे शरीर में खून बनाने, दिमाग और नसों को स्वस्थ रखने और शरीर को ऊर्जा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: और साक्षी, अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारा शरीर में हमें संकेत देने लगता है, जैसे कि बिना वजह थकान रहना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, हाथों पैरों में झंझनाहट होना, छोटी छोटी बातें भूल जाना। मैंने ये सभी चीजें आपके शरीर में हो रही है तो इसे हल्के में ना ले, डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत हो तो तुरंत जांच करवाएं।
1: बिल्कुल, और कहते भी है ना कि हमें हर महीने नहीं तो कम से कम 6 महीने में तो हमें शरीर की जांच करानी चाहिए, ताकि हमें कोई भी बड़ी परेशानी हो उससे पहले ही हमको पता चल जाए। और हम महिलाओं की आदत होती है बहनों कि हम बच्चों की पसंद याद रखते हैं, अपने पति की भी पसंद याद रखते हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखते हैं, उनकी दवाइयां उनको हाथ मिला कर देते हैं, लेकिन अगर अपनी बारी की बात आती है ना तो हम ये सब बातें भूल जाते हैं और सिर्फ कहते हैं दूसरों से कि अपना ध्यान रखो, लेकिन हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये तो मामूली सी कमजोरी है, अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन यही कमजोरी अगर लंबे समय तक बनी रहे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और बहनों एक बात हमेशा याद रखिए कि घर की जिम्मेदारी निभाना अच्छी बात है, लेकिन उन जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपका स्वस्थ रहना भी उससे भी ज्यादा जरूरी है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने परिवार का ध्यान कैसे रख पाएंगे ना मधु। ना हम माँ है, बहन है या बेटी, दादी नानी, घर का हर एक रिश्ता हमारी मुस्कान से, हमारी सेहत से जुड़ा होता है। मैंने इसलिए थोड़ा सा समय निकालिए अपने लिए भी। आप ये मत सोचिए कि ना अगर हमने पहले खा लिया तो क्या होगा, हमारे पति देव ने तो अभी खाया ही नहीं है, तो इन सब बातों को आप मत सोचिए, क्योंकि कई बार होता है ना मधु, हम महिलाएं जो है जो दिन का पहला खाना ही स्किप, पहला मील ही स्किप कर देते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट, और जब सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर हमको ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए।
0: ये काम करके खाएंगे, ये काम करके खाएंगे, काम जो है साक्षी हमारे खत्म ही नहीं होते।
1: हम जब तक सुबह सबसे पहले उठते हैं और रात में सबसे लेट सोते हैं, लेकिन हमारे काम तब भी खत्म नहीं होते। कई बार हम नींद में भी सोचते हैं, अरे हमने तो चने तो गलाए नहीं, सुबह चने खाने थे,
0: यानी कि सुबह की तैयारी हम रात को शुरू
1: कर देते हैं, और इसके चक्कर में हम अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। यानी कि थोड़ा सा समय आप अपने लिए निकालिए बहनों, थोड़ा सा संतुलित भोजन कीजिए, योग व्यायाम कीजिए और समय समय पर स्वास्थ्य की जांच भी करवाइए, और अगर शरीर बार बार कोई संकेत दे रहा है ना तो उसे निग्लेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिए और डॉक्टर से सलाह लीजिए।
0: और याद रखिए बहनों कि अपना ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि आपके पूरे परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। जब आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी तो पूरा परिवार भी खुश रहेगा।
1: हमारी जो परिवार की खुशी है ना, वो हमारे ही स्वास्थ्य पर टिकी हुई है,
0: हमसे जुड़ी हुई है,
1: हमसे जुड़ी हुई है। तो यदि आप चाहती हैं कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, तो आपको अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब आप सोचें कि आपका ध्यान रखने के लिए कोई एक और कोई बंदा आए
0: तो नहीं सकता,
1: तो आपको ही

0: अपना ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप ही अपने परिवार की धुरी हैं। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रखिए
1: और मस्त रहिए।
0: हाँ बिल्कुल, और हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए। लेकिन आज समय हमें इजाजत दे रहा है, जाने के लिए कह रहा है, तो अगली बार हम फिर आपसे मिलने आएंगे। लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और दीजिए आगे अपने दोनों सखियों साक्षी गोस्वामी और
1: मधु शर्मा को इजाजत।
0: नमस्कार।

0: 11th President of India on 25th July 2002. Aman Yadav, Akashani News, Delhi.
1: In shooting, India's Isha Singh grabbed the gold medal in the women's 25-meter pistol event of the ISSF World Cup Rifle Pistol Shotgun in Hangzhou, China today. She upstaged Olympic medalist Manu Bhakar, who took the bronze, to complete a double podium finish for India. The 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026 commenced in New Delhi today. Addressing the inaugural ceremony of the event, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said Commonwealth Table Tennis Championships are an inspiration for everyone that will serve to strengthen relations among participating countries. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government introduces Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition ruckus. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju says preventing discussion on such important issues will send wrong message to the country. Global crude oil prices plunge around 6% after United States and Iran pause military strikes. Weather Department forecast heavy to extremely heavy rainfall in parts of Odisha, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal as deep depression forms over Bay of Bengal. Indian shooter Isha Singh clinches gold in women's 25-meter pistol event at ISSF World Cup. Manu Bhakar settles for bronze. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कांगेर क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले सगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
3: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
2: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
5: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम

0: वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्तु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रश्न का शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
0: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
3: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों। प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
1: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
4: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिनट तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र

0: क्षेत्रों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगत सिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
2: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के होंगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
4: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25

राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-23-31-04-81

संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सुनिधि चौहान को अभी आपने सुना फिल्म सिमरन में। फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम आशिकी 2।

कई कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जुबिन नौटियाल और साथियों की आवाज में, फिल्म का नाम काबिल।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत, अभिजीत की आवाज में, फिल्म का नाम राज़।

फिल्म राज में अभिजीत के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं। शाम 5 बजे से हमारी दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, ये प्रोग्राम हमारे DRM चैनल 1386 किलो हर्ट्ज पर भी उपलब्ध थे।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। शाम के 5 बजे हैं हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में पहले सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर

0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: श्री बिरला ने सदस्यों से सहयोग और सार्थक चर्चा की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच उन्होंने सदन को शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माले बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माले बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने SIT को जांच के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितम्बर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु ने कांस्य पदक जीता। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़। शाम के 5:05 हुए हैं। अब युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा वाणी।

0: शब्दों में ताकत होती है, खबरों में असर होता है। एक सच उम्मीद जगाता है और एक झूठ कहर होता है। सोच समझकर जो कदम बढ़ाए वही समझदार कहलाता है। फेक न्यूज़ के इस दौर में जागरूक नागरिक ही समाज बचाता है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त निशा शर्मा।
1: और मैं हूं दोस्तों आपका विशाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
0: विशाल, आज मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक हम न जाने कितनी बार खबरें पढ़ते हैं, लेकिन क्या हर खबर सच होती है?
1: बिल्कुल नहीं निशा। आजकल एक झूठी खबर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। कई बार लोग बिना पढ़े, बिना समझे और बिना जांचे उसे आगे भेज देते हैं। यही छोटी सी गलती बड़ी परेशानी बन जाती है।
0: दोस्तों, फेक न्यूज यानी ऐसी खबर जो पूरी तरह झूठी हो, आधी अधूरी हो या लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से बनाई गई हो, ये किसी फोटो, वीडियो, ऑडियो, संदेश या समाचार के रूप में हो सकती है।
1: और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि एक फेक न्यूज हमेशा झूठ जैसी नहीं दिखती। कई बार उसे इतना वास्तविक बना दिया जाता है कि पढ़ने वाला आसानी से विश्वास कर लेता है।
0: विशाल, कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र को सोशल मीडिया पर एक संदेश मिला। उसमें लिखा था, आज रात 12 बजे से सभी बैंक बंद हो जाएंगे, तुरंत पैसे निकाल लीजिए। तो उन्होंने बिना सोचे समझे वो संदेश पूरे परिवार और दोस्तों को भेज दिया।
1: अरे, फिर क्या हुआ निशा?
0: फिर हुआ विशाल कि लोग घबरा गए। अगले दिन बैंक पहुंचे तो पता चला कि ऐसी कोई घोषणा हुई ही नहीं थी, सिर्फ एक अफवाह ने हजारों लोगों को परेशान कर दिया।
1: यही है फेक न्यूज का खतरा। एक झूठ हजारों लोगों का समय, विश्वास और मानसिक शांति छीन सकता है।
0: इसलिए दोस्तों, हर वायरल खबर का उद्देश्य लोगों की मदद करना नहीं होता है, कई बार उसका उद्देश्य केवल भ्रम फैलाना भी होता है। इसलिए सोशल मीडिया आज जानकारी का सबसे बड़ा माध्यम है, लेकिन इनका सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है।
1: दोस्तों, सोशल मीडिया न अच्छा है न बुरा, उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति तय करता है कि वह समाज में जागरूकता फैलाएगा या अफवाह।
0: विशाल, एक फेक न्यूज सच में इतना नुकसान पहुंचा सकती है ना?
1: हाँ निशा, लोगों में भय फैल सकता है, समाज में तनाव पैदा हो सकता है, किसी की प्रतिष्ठा नष्ट हो सकती है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, गलत स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लोगों की जान तक जोखिम में डाल सकती है, कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
0: इसलिए दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल हम पहचाने कैसे? बिल्कुल आसान तरीके से, पहला खबर का स्रोत देखें, दूसरा हेडलाइन देखकर ही विश्वास मत करें,
1: और तीसरा खबर की तारीख अवश्य देखें, चौथा एक ही खबर को दूसरे विश्वसनीय समाचार माध्यम में खोजे, पांचवा अगर कोई संदेश बहुत ज्यादा भावनात्मक या डराने वाला हो और उसमें लिखा हो इसे तुरंत सबको भेजे तो सावधान हो जाइए।
0: और दोस्तों, अगर फिर भी संदेह हो तो उसे शेयर मत कीजिए।
1: और दोस्तों, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI की मदद से नकली वीडियो और आवाज भी बनाई जा रही है, इसलिए अब केवल देखकर या सुनकर विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, सत्यापन पहले विश्वास बाद में।
0: विशाल, युवा जो है वो सबसे ज्यादा इंटरनेट का उपयोग करते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा है। यदि युवा जागरूक होंगे तो पूरा समाज जागरूक होगा।
1: और दोस्तों, घर में बच्चों और बुजुर्गों को भी समझाइए कि हर वायरल संदेश सच नहीं होता।
0: और दोस्तों, परिवार में ये आदत बनाइए कि कोई भी संदिग्ध खबर आए तो पहले उसकी पुष्टि की जाए। याद रखिए, एक क्लिक आपकी जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, किसी भी खबर को बिना सत्यापित किए आगे बढ़ाना अनजाने में अफवाह फैलाने जैसा हो सकता है, इसलिए हमेशा सोचें, जांचें और फिर ही साझा करें।
1: बिल्कुल निशा, सच की राह पर चलना ही एक जागरूक नागरिक की पहचान है। आइए आज हम सब एक छोटा सा संकल्प ले, न हम फेक न्यूज बनाएंगे, न फैलाएंगे और न ही बिना जांच किए किसी खबर पर विश्वास करेंगे, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और मजबूत समाज की नींव रखता है।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: साथियों, ज्ञान कभी पुराना नहीं होता और सीखने का सफर कभी थमता नहीं। इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का क्विज सेगमेंट।
2: दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। और दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक के खिलाफ किसे सम्मानित किया गया है। इसके जवाब हम कार्यक्रम के अंत तक देंगे।
1: दोस्तों, धरती केवल मिट्टी नहीं होती, उसके सीने में भविष्य भी धड़कता है। कहीं सोना चमकता है, कहीं संगमरमर मुस्कुराता है, तो कहीं जस्ता, तांबा और चूना पत्थर विकास की नई इबारत लिखते हैं। ऐसी ही समृद्ध धरा है राजस्थान। दोस्तों, जब भी राजस्थान का जिक्र होता है, हमारी आंखों के सामने राजसी किले, रंग बिरंगे मेले, लोकगीत, ऊँटों की कतारें और सुनहरे थार का रेगिस्तान उभर आता है।
2: निशा, राजस्थान की एक और पहचान है जो इसकी अर्थव्यवस्था, उद्योग और देश के विकास की मजबूत नींव है। यह वह धारा है जिसके गर्भ में प्रकृति ने अनमोल खनिजों का एक ऐसा भंडार छिपाया है कि इसे गर्व से भारत का खनिजों का अजायब घर कहा जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने विशाल। भारत में मिलने वाले लगभग 80 से अधिक प्रकार के खनिजों में से 50 से ज्यादा खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं और यही वजह है कि इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है।
2: दोस्तों, खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ है जो करोड़ों वर्षों में धरती के भीतर बनते हैं। इन्हें उद्योग, भवन निर्माण, बिजली उत्पादन, आभूषण, दवाइयों और आधुनिक तकनीक तक में इस्तेमाल किया जाता है।
1: दोस्तों, यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहां खनिजों का उपयोग न होता हो।
2: बिल्कुल सही कहा निशा तुमने। आपके मोबाइल से लेकर घर की दीवारों तक, सड़क से लेकर रेल की पटरियों तक, हर जगह खनिज मौजूद है। राजस्थान इसलिए खनिजों का अजायब घर कहलाता है क्योंकि राजस्थान का भूभर्गीय इतिहास लगभग 2500 मिलियन वर्ष पुराना है। यहाँ अरावली पर्वतमाला, विंध्यन चट्टाने और मरुस्थलीय क्षेत्र मिलकर ऐसी भूभर्गीय स्वरूप बनाते हैं, उनके प्रकार के खनिज पाए जाते हैं।
1: दोस्तों, प्रकृति ने राजस्थान को सचमुच खजाने से भर दिया है। राजस्थान के बहुत सारे खनिज हैं जिसमें संगमरमर, अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत संगमरमर में राजस्थान का नाम सबसे ऊपर आता है तो गलत नहीं होगा। राजसमंद, उदयपुर, किशनगढ़ और मकराना का संगमरमर तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
2: दोस्तों, मकराना का सफेद संगमरमर ही वह पत्थर है जिसे विश्व प्रसिद्ध ताजमहल बनाया गया, जिंक और शीशा।
1: दोस्तों, राजस्थान जिंक उत्पादन में भी देश का अग्रणी राज्य है।
2: और दोस्तों, उदयपुर जिले की जावर और चित्तौड़गढ़ जिले की दरीबा खदानें विश्व प्रसिद्ध है। यहीं से निकलने वाला जिंक उद्योग में अत्यंत उपयोगी है।
1: दोस्तों, अब आता है तांबा। झुंझुनू जिले का खेतड़ी क्षेत्र भारत की सबसे प्रसिद्ध तांबा खदानों में गिना जाता है। दोस्तों, तांबे का उपयोग बिजली के तार, मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में होता है।
2: दोस्तों, जिप्सम बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में जिप्सम की भरपूर मात्रा मिलती है। सीमेंट उद्योग और कृषि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चूना पत्थर राजस्थान सीमेंट उद्योग की रीढ़ माना जाता है।

0: तोड़गढ़, नागौर, जैसलमेर, कोटा और बूंदी में चूना पत्थर के विशाल भंडार हैं।
1: विशाल, तुम्हें पता है जालौर को तो भारत की ग्रेनाइट नगरी भी कहा जाता है।
0: वाह,
1: राजस्थान का ग्रेनाइट विदेशों तक निर्यात किया जाता है।
0: दोस्तों, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खनन उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होता है और निर्यात से विदेशी मुद्रा भी आती है। आज खनन केवल मजदूरी तक सीमित नहीं है।
1: साथियों, भूवैज्ञानिक, माइनिंग इंजीनियर, पर्यावरण विशेषज्ञ, मशीन ऑपरेटर, सुरक्षा अधिकारी और शोधकर्ता जैसे अनेक करियर विकल्प उपलब्ध हैं। लेकिन हर विकास के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं।
0: सही कहा निशा तुमने। अनियंत्रित खनन से पर्यावरण को नुकसान, भूजल स्तर में गिरावट, धूल प्रदूषण और जैव विविधता पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आज आवश्यकता है सतत और वैज्ञानिक खनन की। चलिए अब कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं।
1: विशाल, पहला तथ्य है भारत में जिंक का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है।
0: वाह, और दूसरा है दोस्तों मकराना का संगमरमर लगभग 400 साल बाद भी अपनी चमक बनाए रखता है।
1: तीसरा है राजस्थान में 50 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं।
0: और दोस्तों चौथा है जालौर का ग्रेनाइट, दुनिया के कई देशों में निर्यात होता है। राजस्थान केवल वीरों, महलों और संस्कृति की भूमि ही नहीं बल्कि प्राकृतिक संपदा का अद्भुत खजाना भी है।
1: चलिए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।
2: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: निशा, आज सुबह सुबह हमारे पड़ोस वाले वर्मा जी के घर बड़ी गहमा गहमी हो गई थी।
1: अरे क्या हुआ विशाल, सब ठीक तो है ना?
0: हाँ सब ठीक है, पर हुआ ये कि पिछले महीने उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अब क्लेम पास होने में थोड़ी अड़चन आ रही थी, तो वो परेशान होकर बोल रहे थे कि अरे भाई, ये बीमा कंपनियाँ पैसे लेते वक्त तो बड़े बड़े वादे करती है, पर क्लेम के समय चक्कर कटवाती है।
1: अच्छा तो ये बात है। वैसे विशाल, वर्मा जी की शिकायत अपनी जगह सही तो है, लेकिन क्या तुमने उन्हें ये बताया है कि अगर कोई बीमा कंपनी बेवजह परेशान करे तो हमारे सिर पर एक एम्पायर भी बैठा है?
0: एम्पायर? विकेट वाला एम्पायर? निशा, मैं यहाँ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ।
1: अरे बाबा, क्रिकेट वाला एम्पायर नहीं, वित्तीय दुनिया का एम्पायर। जैसे क्रिकेट में नो बॉल या आउट का फैसला एम्पायर करता है ताकि खेल निष्पक्ष रहे, वैसे ही भारत में तमाम बीमा कंपनियों पर नजर रखने के लिए एक संस्था है, IRDAI।
0: IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में कहे तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राथमिकरण।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। जैसे बैंकों का ख्याल RBI रखता है और शेयर बाजार का SEBI, वैसे ही आपकी लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ या व्हीकल इंश्योरेंस, सबकी देखरेख और सुरक्षा का काम IRDAI का है।
0: अच्छा निशा, यह तो बताओ कि यह संस्था आई कब, मतलब क्या यह शुरुआत से ही थी या बाद में बनाई गई थी?
1: बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। तो बात करते हैं 1999 की। सरकार ने मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के बाद IRDA एक्ट पास किया था और फिर अप्रैल 2000 में IRDAI को एक स्वायत्त यानी स्टैचुरी बॉडी के रूप में स्थापित किया गया। इसका मुख्य मुख्यालय हैदराबाद में है।
0: अच्छा, तो वर्मा जी जैसे आम ग्राहकों के लिए IRDAI का होना क्यों जरूरी है? यह आम जनता की मदद कैसे करता है?
1: इसके मुख्य रूप से तीन बड़े काम है विशाल। ग्राहकों के हितों की रक्षा, यानी कोई भी कंपनी आपसे झूठे वादे करके पॉलिसी न बेचे और क्लेम सही समय पर दे। नियम बनाना, सभी बीमा कंपनियों के नियम और गाइडलाइंस तय करना ताकि कोई मनमानी ना करे। बीमा क्षेत्र का विकास, देश के कोने कोने तक, गांव-गांव तक बीमा सुविधा पहुंचे, इसे बढ़ावा देना।
0: और दोस्तों, अगर आपकी बीमा कंपनी आपकी शिकायत नहीं सुन रही है तो आप IRDAI के बीमा भरोसा पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहाँ आपकी सुनवाई तय सीमा में की जाती है, यानी अगर कंपनियां क्लेम अटकाए या बात ना सुने तो सीधा IRDAI के शिकायत निवारण पोर्टल पर दस्तक दी जा सकती है। यह तो वर्मा जी के बहुत काम की बात है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और यही नहीं विशाल, आज

0: IRDAI एक बहुत ही शानदार लक्ष्य पर काम कर रहा है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, यानी भारत की आज़ादी के 100वें साल तक देश के हर नागरिक के पास जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति का सुरक्षा कवच होना चाहिए।
1: और दोस्तों, बीमा सुगम, बीमा विस्तार जैसी नई पहले भी तो इसी दिशा में उठाई गई कदम है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी पॉलिसियां मिल जाएगी।
0: विशाल, कुल मिलाकर बात यह है कि बीमा लेते समय नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें और बेफिक्र रहें, क्योंकि IRDAI आपके अधिकारों का पहरेदार बनकर खड़ा रहता है।
1: अरे वाह निशा, आज तो चाय के साथ साथ ज्ञान का भी बढ़िया डोज मिल गया। मैं अभी जाकर वर्मा जी को बीमा भरोसे के बारे में बताता हूँ।
0: बिल्कुल विशाल, और हमारे श्रोताओं को भी यही कहेंगे, जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित।

0: में उठाई गई कदम है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी पॉलिसियां मिल जाएगी।
1: विशाल, कुल मिलाकर बात यह है कि बीमा लेते समय नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें और बेफिक्र रहें, क्योंकि IRDAI आपके अधिकारों का पहरेदार बनकर खड़ा रहता है।
0: अरे वाह निशा, आज तो चाय के साथ साथ ज्ञान का भी बढ़िया डोज मिल गया। मैं अभी जाकर वर्मा जी को बीमा भरोसे के बारे में बताता हूँ।
1: बिल्कुल विशाल, और हमारे श्रोताओं को भी यही कहेंगे, जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: विशाल, ये अलार्म क्लॉक की कर्कश आवाज, हर सुबह की वही भाग दौड़, डिजिटल घड़ियों की टिक टिक, कभी कभी लगता है जैसे हम किसी मशीन का पुर्जा बन गए हैं। मन करता है सब कुछ बंद करके कहीं ऐसी जगह चली जाऊं जहां सिर्फ शांति हो।
3: शांति? निशा, जरा आंखें बंद करो और सोचो सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट, नीम के पत्तों से छनकर आती धूप, गोबर से लिपा हुआ औगन और दूर किसी खेत से आती आहला या काजरी की तान। क्या यह काल्पनिक शांति है या हमारी पहचान?
2: पहचान तो है विशाल, लेकिन ये बातें सुनने में जितनी सुकून देने वाली लगती हैं, आज के दौर में उतनी ही दूर भी महसूस होती हैं। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहाँ हर चीज की उम्र महज कुछ सेकंड्स की रह गई है।
3: दोस्तों, बिल्कुल सही पकड़ रही है निशा। लोग कहते हैं कि समय बदल गया है, पर सच तो यह है कि हमारे देखने का नज़रिया बदल गया है। जिस सुकून को हम आज योग, मेडिटेशन और महंगे रिजॉर्ट्स में ढूंढ रहे हैं, वो सुकून तो सदियों से हमारी लोक संस्कृति की नसों में दौड़ रहा था।
2: पर सवाल यही है विशाल कि आज की नई पीढ़ी इस बात को कितना समझ पा रही है। जब भी लोक संस्कृति शब्द सामने आता है तो ज़्यादातर युवाओं को लगता है कि ये कोई पुरानी घिसी पिटी या किताबों में बंद रहने वाली चीज़ है, जिसका उनके मॉडर्न करियर और लाइफ स्टाइल से कोई लेना देना ही नहीं है।
3: और यही सबसे बड़ा भ्रम है निशा। लोक संस्कृति कोई अलमारी में सजाकर रखने वाला प्राचीन सोपिस नहीं है। लोक का अर्थ है जन सामान्य और संस्कृति का अर्थ है जीवन जीने की कला। जब कोई गांव का किसान फसल काटने पर खुशी से झूम उठता है तो वो लावणी, बीहू या भांगड़ा बन जाता है। जब कोई माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाती है तो वो लोकगीत बन जाता है। माटी की सौंधी महक में छुपा है इतिहास हमारा, लोक गीतों की तान में बहता है विश्वास हमारा।
2: सही बात है विशाल, पर सोचो आज का जो युवा है वो कर क्या रहा है। जब कोई पारंपरिक धुन इंटरनेट के दौर में नए कलेवर के साथ सामने आती है तो लाखों युवा उस पर झूमते हैं, उसे बार बार सुनते हैं, लेकिन विडंबना देखो, उन्हें उस धुन के पीछे की सदियों पुरानी कहानी, उस बोली के मायने या उस लोक कलाकार का नाम तक नहीं पता होता है।
3: सही कहा निशा तुमने, यानी आकर्षण तो आज भी है, नई पीढ़ी को लोक संगीत की मिठास और लोक कला का सौंदर्य अपनी ओर खींचता तो है, लेकिन रिश्ता सिर्फ सतह तक सीमित रह गया है, गहराई में जाने की फुर्सत किसी के पास नहीं है।
2: लेकिन इस स्थिति के लिए सिर्फ युवाओं को दोष देना भी तो सही नहीं होगा विशाल।
3: सही कहा निशा।
2: क्या हमने कभी उन्हें अपनी जड़ों से इस तरह जोड़ा है कि उन्हें इस पर गर्व महसूस हो? जब स्कूल, कॉलेज या घरों में क्षेत्रीय भाषाओं या बोलियों में बात करने पर टोक दिया जाता है तो बच्चा अपनी ही संस्कृति से झिझकने लगता है।
3: अद्भुत बात कही तुमने निशा। तुम कूल दिखने की इस भाग दौड़ में हमने अपनी ही भाषा और बोली पर एक अजीब सी झिझक का पर्दा डाल दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि जो इंसान अपनी जड़ों को भूल जाता है तो वो हवा में तैरते हुए उस सूखे पत्ते की तरह हो जाता है जिसकी कोई अपनी मंजिल नहीं होती।
2: लेकिन विशाल, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है जो उम्मीद जगाता है। आज देश के ढेरों युवा ऐसे हैं जो अपनी कॉरपोरेट नौकरियां छोड़कर

0: पारंपरिक हस्तकला, मधुबनी चित्रकला, ब्लॉक प्रिंटिंग और मिट्टी के बर्तनों को नए जमाने की जरूरतों के हिसाब से ढाल रहे हैं और पूरी दुनिया में पहचान दिला रहे हैं। साथियों, आधुनिक तकनीक और पारंपरिक लोक संस्कृति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। तकनीक यदि माध्यम बन जाए और लोक संस्कृति उसकी आत्मा, तो हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपनी मिट्टी से जुड़े रह सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा निशा तुमने, इसे ही तो कहते हैं संस्कृति का निरंतर प्रवाह। लोक संस्कृति कभी ठहरती नहीं, वो नदी की तरह बहती रहती है। पुरानी पीढ़ी ने इसे गीतों और कहानियों में संभाला है, तो आज की पीढ़ी इसे डिजिटल माध्यमों और नए डिजाइनों में सहज सकती है।
0: साथियों, जरूरत बस इस बात की है कि हम इसे सिर्फ किसी खास त्योहार या प्रदर्शन तक सीमित ना रखें। अपनी रोजमर्रा की भाषा, अपने पहनावे, अपनी कलाओं और अपने लोक संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।
1: और दोस्तों, जब तक हमारे दिलों में अपनी माटी के लिए सम्मान रहेगा, तब तक हमारी लोक संस्कृति ने न कभी पुरानी होगी और न कभी लुप्त होगी। नई पीढ़ी को बस इतना समझना है कि आगे बढ़ने के लिए पंख जरूर चाहिए, पर टिके रहने के लिए जड़े ही काम आती है।
0: बिल्कुल विशाल, और अपनी समृद्ध लोक संस्कृति और माटी की मिठास को महसूस करने के लिए आइए अब सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे, आइए उनके जवाब जानते हैं।
1: दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल था, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है, और इसका सही जवाब था नंदन नीलकणी। और दूसरा सवाल था, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक के खिताब से किससे सम्मानित किया है, इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज के हमारे रोजगार सूचना का समय हो चुका है।
0: दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर 2026 की अधिसूचना जारी हो चुकी है। आवेदन 22 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 है। दोस्तों, योग्य उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल scraj.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1: निशा, अभी हम कार्यक्रम में राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और यहाँ की जमीनों के नीचे छिपे खनिज संसाधनों पर बात कर ही रहे थे कि मुझे अचानक याद आया।
0: क्या याद आया विशाल? जमीन के नीचे दबे किसी खजाने के बारे में सोच रहे हो क्या?
1: अरे, खजाना ही तो है निशा, बस यह जमीन के नीचे नहीं, हमारे मोबाइल के हेडफोन में छिपा है। मैं सोच रहा था कि जैसे हमारी लोक संस्कृति की कथाएं और खनिज संसाधन इस धरती की पहचान है, वैसे ही आज की नई पीढ़ी की आवाज का सबसे बड़ा खजाना बन चुकी है पॉडकास्ट की संस्कृति।
0: अरे वाह विशाल, क्या खूब रिलेट किया है तुमने। सच में जैसे खनिजों का तराश कर हम उनके असली रूप तक पहुंचते हैं, वैसे ही पॉडकास्ट भी तो बातचीत का वो अनगढ़ा सच्चा और एकदम प्राकृतिक रूप है जो सीधे दिलों तक पहुंच जाता है।
1: बिल्कुल निशा, और देखो ना, हमारी लोक संस्कृति में भी तो मौखिक परंपरा यानी सुनकर बातें याद करने का रिवाज सदियों से रहा है। चौपालों पर किस्से कहानी सुनना हमारी रग रग में है। आज का पॉडकास्ट और कुछ नहीं बल्कि डिजिटल जमाने की वह आधुनिक चौपाल ही तो है।
0: एकदम सही कहा तुमने विशाल, पहले लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किस्से कहानियां और लोकगीत सुना करते थे, और आज युवा बस ईयरफोन लगाते हैं और अपनी पसंद के विषय पर पॉडकास्ट सुनते हैं, चाहे वो इतिहास हो, लोक कथाएं हो, या फिर टेक्नोलॉजी हो, या फिर करियर।
1: और अच्छा निशा, तुम्हें क्या लगता है कि इस पॉडकास्ट कल्चर ने लोगों की सुनने की आदत को इतना क्या बदला है? लोग घंटे घंटे भर सिर्फ ऑडियो क्यों सुन रहे हैं?
0: विशाल, इसकी सबसे बड़ी ताकत है पर्सनल कनेक्ट और सुविधा। स्क्रीन पर लगातार देखने से आंखें थक जाती हैं, लेकिन पॉडकास्ट आप गाड़ी चलाते समय, मेट्रो में सफर करते समय, सुबह वॉक करते या फिर घर के काम निपटाते समय भी आसानी से सुन सकते हैं। ये स्क्रीन फ्री एंटरटेनमेंट है।
1: और दोस्तों, दूसरी बात यह भी है कि पॉडकास्ट में कोई बनावटीपन नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे दो दोस्त आपके बगल में बैठकर दिल से बातें कर रहे हैं, बिना किसी जबरदस्ती की स्क्रिप्ट या तड़क भड़क के।
0: और सबसे खूबसूरत बात जानते हो क्या है?
1: क्या है निशा?
0: इसके जरिए हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं और स्थानीय किस्से भी अब विश्व स्तर पर पहुंच रहे हैं। अब राजस्थान का कोई युवा अपनी मातृभाषा में पॉडकास्ट बनाकर पूरी दुनिया को अपनी माटी की महक से जोड़ रहा है।
1: यानी कह सकते हैं कि जैसे हमारी जमीन खनिजों से भरी है, वैसे ही हमारी आवाजों में विचारों का खजाना भरा है, और पॉडकास्ट उसे दुनिया के सामने लाने का सबसे बेहतरीन जरिया बन चुका है।
0: क्या बात है विशाल, तो फिर क्यों ना हमारे श्रोता भी अपनी बात, अपनी संस्कृति और अपने विचारों को एक पॉडकास्ट का रूप दें।
1: क्योंकि दोस्तों, हर आवाज खास है और हर आवाज की अपनी एक संस्कृति है,
0: और इन्हीं खास आवाजों, सुरों और लय के इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हुए आइए अब रुक करते हैं संगीत की दुनिया की ओर।

0: वाह निशा, आज के कार्यक्रम में सफ़र कितना खूबसूरत रहा ना। हमने ज़मीन के नीचे छिपे खनिजों की बात की, अपनी समृद्ध लोक संस्कृति के रंगों को महसूस किया, और फिर आज के दौर की इस डिजिटल चौपाल यानी पॉडकास्ट संस्कृति से भी खुद को जोड़ा।
1: तो बस दोस्तों, अपनी परंपराओं को सहेजिए, नई तकनीकों को अपनाइए और अपनी आवाज़ को पहचान दीजिए।
0: और दोस्तों, अब आज के इस सफ़र से हमें दीजिए इजाज़त, विशाल और
1: निशा को हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुत कर रहे थे निशा शर्मा और विशाल आचार्य। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात 10 बजे हम रिले करेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। समय एक बार फिर से सुन लीजिए, रात 10 बजे।

ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7 बजे, जिसमें आज चर्चा होगी इस सप्ताह के कृषि कार्य और चर्चा होगी सहजन के वृक्ष लगाएं, राजस्थान तारबंदी योजना, देशी गो नस्लों का संरक्षण। इसके अलावा लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे।

हम सभी सुनने वालों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे, रात 10 बजे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। आप सुनेंगे 8 बजे संसद समीक्षा। सुगम संगीत का समय रहेगा 7:45। पुरानी फिल्मों से गीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं 9:30 पर।

0: ये थी कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। 6 बजने को है। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित

0: साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आज आप सुनिए एक ही गीतकार कार्यक्रम। हमारे आज के गीतकार हैं योगेश।

साथियों, गीतकार योगेश गौर का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था और आपका निधन 29 मई 2020। हिंदी सिनेमा के उन विरले गीतकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने सरल शब्दों में जीवन के गहरे दर्शन, मानवीय संवेदनाओं और रिश्तों की आत्मीयता को अभिव्यक्त कर किया। आपका जन्म लखनऊ में हुआ था। किशोरावस्था में वे फिल्मों में काम करना चाहते थे और इसलिए वो मुंबई पहुंच गए। शुरुआती संघर्ष के बाद 1962 की फिल्म सखी रॉबिन से गीतकार के रूप में आपका सफर शुरू हुआ।

रोजमर्रा की बोली में गहरे भाव व्यक्त करते थे। प्रेम, विरह, जीवन दर्शन, उम्मीद और मानवीय रिश्ते उनके गीतों का मूल स्वर रहे हैं। उन्होंने स्वयं कहा था कि वे अपने आसपास के लोगों और जीवन से प्रेरणा लेकर लिखते हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आनंद फिल्म से गीत हमने लिया था, स्वर था मुकेश का। साथियों, कई बार यूं ही देखा है, ये रजनीगंधा फिल्म का गीत है और इस गीत को योगेश को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त भी हुआ था। साथियों, योगेश व्यावसायिक चकाचौंध से दूर रहकर योगेश जी ने हमेशा गीत की आत्मा को महत्व दिया। उनके गीत आज भी रेडियो, संगीत प्रेमियों और नई पीढ़ी के गायकों की पहली पसंद बनी हुई है। उनकी रचनाएं ये सिद्ध करती है कि सादगी में भी गहरी साहित्यिक ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती है। आइए सुनते हैं आप ही का लिखा हुआ अगला गीत।

साथियों, 29 मई 2020 को योगेश जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके शब्द आज भी करोड़ों श्रोताओं के मन में जीवित है। हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास जब भी संवेदनशील और अर्थपूर्ण गीतों की चर्चा करेगा, योगेश गौर का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाएगा।

श्रोताओं, गीतकार योगेश ने कभी शब्दों का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि भावनाओं को शब्द दिए। यही कारण है कि उनके गीत समय के साथ और भी अधिक प्रासंगिक होते गए। सरल भाषा, गहरी संवेदना और जीवन दर्शन से भरपूर उनके गीत हिंदी फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर है। तो साथियों, ये था हमारा आज का एक ही गीतकार कार्यक्रम। हमारे आज के गीतकार थे योगेश। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 101.6 मेगा हर्ट्स। शाम के 6:30 होने को है। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर के आमेर चैनल से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज

भी कई बार बाधित। राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी जज 31 जुलाई और 1 अगस्त को जयपुर पीठ में मुकदमों की सुनवाई करेंगे। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए फूड पार्कों और एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टरों में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर। और बंगाल की खाड़ी से उठे नए मानसूनी तंत्र से राज्य में अगले एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार स्थगित की गई। शोर शराबे के बीच ही लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। पेपर लीक की रोकथाम के लिए लाए गए इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने

0: धन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। पेपर लीक की रोकथाम के लिए लाए गए इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने और उसकी गरिमा बनाए रखने की अपील की।
1: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र की कार्रवाई पेपर लीक मुद्दे और छात्र आंदोलन को लेकर लगातार बाधित हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के सभी जज 31 जुलाई और 1 अगस्त को जयपुर पीठ में मुकदमों की सुनवाई करेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा सहित सभी 39 न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय शांति मध्यस्थता सम्मेलन का भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
2: 52 ऐसे देश हैं जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज से संबंधित हैं और इन सभी में मुख्य तौर पर ब्रिटिशर्स जो थे, जब उन्होंने जब कानून लाया अपने इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो भी कानून लाया गया उसमें हम सभी उसी कानून से गवर्न हो रहे थे। तो हमारे सैद्धांतिक रूप से इन सभी देशों में जो प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है उनमें समरूपता है, तो हम कॉमन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करने वाले देश हैं, इसलिए हम कॉमनवेल्थ के रूप में भी जाने जाते हैं। अब इन सभी देशों की आज के समय में जो मीडिएशन है, मीडिएशन ड्राइव है, उसके अंदर जब प्रासंगिकता को हमने देखा।
0: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज पाली जिले के दौरे पर रही। उन्होंने सोजत में शहरी सेवा फॉलोअप शिविर का जायजा लिया और पात्र लाभार्थियों को जमीनों के पट्टे वितरित किए। उपमुख्यमंत्री ने मारवाड़ जंक्शन ओवरब्रिज तथा सिरियारी, सरवाड़ और शिवसागर नदी पर बने पुल तथा विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देने के लिए आज जयपुर में मंथन किया गया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव एपी दास जोशी की मौजूदगी में हितधारकों की बैठक हुई। बैठक में राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास, नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने पर जोर दिया गया। फूड पार्कों और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टरों को बढ़ावा देने के साथ ही नई तकनीक के उपयोग और कारोबारियों को बेहतर सुविधा देने पर चर्चा की गई। बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों, एमएसएमई, एफपीओ, निर्यातकों, स्टार्टअप्स और बैंकिंग क्षेत्र तथा अन्य स्टेक होल्डर्स ने अपने सुझाव दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि बैठक में मिले सुझावों के आधार पर जरूरी पहल की जाएगी। केंद्रीय सचिव श्री जोशी ने कहा कि राजस्थान में कृषि और बागवानी के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन तथा प्रसंस्करण क्षमता विस्तार करने के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। राजस्थान नदी बेसिन और वाटर रिसोर्सेस प्लानिंग अथॉरिटी की आज जयपुर में बैठक हुई। इसमें राज्य के जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में जल सुरक्षा, पीने के पानी की आपूर्ति और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए सभी 11 संबंधित विभागों के साथ चर्चा की। उन्होंने सभी को समन्वय के साथ मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर बेसिन की समग्र परियोजना तैयार करने तथा फसल चक्र और सतही जल के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में 1990 के दशक के बाद से ही सभी 16 नदी बेसिन

0: योजनाओं को समय के अनुसार अपडेट किया जा रहा है। इसके तहत आधुनिक तकनीक, जल दक्षता और नहरी सुधारों पर बल देते हुए सिंचाई कमांड क्षेत्र में बढ़ोतरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठे नए मॉनसून तंत्र का असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा। इससे पूर्वी राजस्थान में कल से और उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में परसों से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। ये सिलसिला 2 अगस्त तक बना रहेगा। मौसम विभाग ने कल 24 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच आज राजधानी जयपुर में भी कुछ स्थानों पर छितराई बारिश हुई। सवाईमाधोपुर सहित कई जगह लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल रहे। पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम ने रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने डॉक्टर कलाम को एक प्रेरणादायक शिक्षक के रूप में याद किया।
1: 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर कलाम को नमन करते हुए कहा कि विज्ञान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के लिए उनमें अद्वितीय समर्पण था। उनके आदर्श और विचार आज भी करोड़ों युवाओं को बड़े सपने देखने और उनको साकार करने की प्रेरणा देते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का आज 88वां स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर CRPF कर्मियों के अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। अपने शुभकामना संदेश में श्री मोदी ने माओवाद के खतरे को समाप्त करने में CRPF के प्रयासों को विशेष बताया। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और चुनौतीपूर्ण हालात में नागरिकों की सेवा CRPF कर्मियों के लिए सर्वोपरि रही है। एक रिपोर्ट।
2: देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक CRPF गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका दायरा राज्य पुलिस से अलग और व्यापक होता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता, दंगा नियंत्रण, आतंकवाद और उग्रवादी रोधी अभियानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में CRPF को तैनात किया जाता है। दुर्गम क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में शांति बनाए रखने, नागरिकों की रक्षा करने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाले CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस पर सलाम। सलेहा गाजी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर भाजपा की ओर से 29 जुलाई से समरसता संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान अगले साल 20 फरवरी तक चलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने बताया कि गुरु रविदास के जन्म स्थान वाराणसी में कल कलश पूजन होगा और शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
3: भारतीय जनता पार्टी ने गुरु रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष को समरसता संकल्प अभियान के रूप में मनाने का फैसला किया है। 29 जुलाई 2026 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 यानी गुरु रविदास जी के जयंती तक लगभग 7 माह तक एक राष्ट्रीय अभियान समरसता संकल्प अभियान के नाम से चलाया जाएगा।
0: प्रदेश भर में समरसता संकल्प अभियान के तहत हरि कीर्तन, सत्संग और विचार गोष्ठियां रखी जाएगी। अजमेर में आज से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण संबंधी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। 4 दिन के इस प्रशिक्षण का आयोजन राजस्व मंडल में हो रहा है। मंडल निदेशक बीना वर्मा ने बताया कि इसमें राज्य के सभी 41 जिलों के सांख्यिकी विभाग और भू अभिलेख शाखाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से GCES पोर्टल पर फसल कटाई प्रयोग को सही रूप से दर्ज करने के बारे में

0: बताया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज भी कई बार बाधित। राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी जज 31 जुलाई और 1 अगस्त को जयपुर पीठ में मुकदमों की सुनवाई करेंगे। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए फूड पार्कों और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टरों में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर। और बंगाल की खाड़ी से उठे नए मानसूनी तंत्र के असर से राज्य में अगले एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं राजेश सोनी। वागड़ अंचल के बांसवाड़ा जिले में पिछले महीने स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, शिक्षा और जनकल्याण से जुड़ी कई गतिविधियां हुई। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों के साथ चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने, रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत हरिदेव जोशी रंगमंच में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में पचपदरा से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण देखा गया। जिले के विभिन्न विभागों में चयनित 1530 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर इन कार्मिकों से पूरी निष्ठा के साथ जनसेवा करने का आह्वान किया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने महात्मा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण कर हाल ही में हुई प्रसूताओं की मृत्यु की घटनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया, मरीजों से बातचीत की और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिले के 84 चिकित्सा संस्थानों में विशेष शिविर लगाए गए। इनमें 4682 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और आवश्यक स्क्रीनिंग की गई। स्वास्थ्य विभाग ने नियमित जांच और संस्थागत प्रसव के लिए जागरूक भी किया। महात्मा गांधी जिला अस्पताल में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सखी व्यवस्था शुरू की गई। प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी और महिला स्वास्थ्य कर्मी गर्भवती महिलाओं को भर्ती से लेकर प्रसव, उपचार और डिस्चार्ज तक आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएंगी। इस पहल का उद्देश्य मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाना है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले दिनों मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा के लिए विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खुशपाल सिंह राठौड़ और डिप्टी सीएमएचओ डॉ. राहुल डिंडोर ने स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता, अभिलेखों और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण MCHN दिवस की गतिविधियों की जाँच की और आवश्यक निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बांसवाड़ा जिले को राज्य स्तर पर सम्मान मिला। जनसंख्या स्थायित्व के विभिन्न मानकों में जिले ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं PPIUCD सेवाओं में भी राज्य में पहला स्थान हासिल करने पर जिले को प्रशस्ति पत्र और 4,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने आंबाबाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। यहां 700 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों ने पौधरोपण के साथ उनकी नियमित देखभाल का भी संदेश दिया। जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन जारी रहा। इन शिविरों के माध्यम से पालनहार योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाया गया। कई पंचायतों में फॉलो अप शिविर लगाकर लंबित प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन VBG रामजी के तहत तलवाड़ा पंचायत समिति की माकोद ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय जनसम्मेलन आयोजित हुआ। इस अवसर पर उक्त कार्यस्थल पर योजना के तहत कई कार्यों का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में रोजगार गारंटी, डिजिटल व्यवस्था और ग्राम विकास से जुड़े कार्यों की जानकारी दी गई। इसमें श्रमिकों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने पिछले दिनों जनजातीय आश्रम छात्रावासों का निरीक्षण कर भोजन व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारी

0: खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर राजकीय मेडिकल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई और नशा मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया गया। जिले में राजनीतिक गतिविधियां भी देखने को मिली। कांग्रेस नेता सचिन पायलट एक दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे। उन्होंने कुशलगढ़ में एक श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया, साथ ही एक निजी विद्यालय के कार्यक्रम में भी भाग लिया। इसके साथ ही बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, लोकसभा में आए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन बिल 2026 पेश। विपक्षरा हंगामा रे कारण संसद रा दोन्यू सदना री कार्रवाई में आज ही अड़चन आई। राजस्थान हाई कोर्ट रा सगला जज 31 जुलाई और 1 अगस्त ने जयपुर पीठ में मुकदमा री सुनवाई करेला। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण हलकारा विकास सारु फूड पार्क और एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर में नूवी तकनीक काम लेवन माथे जोर। और प्रदेश में आवता एक सप्ताह टाइम बिरखा में बढ़ोतरी रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। संसद रा दोन्यू सदना री कार्रवाई आज ही विपक्षरा सदस्या रा हंगामा रा कारण कई दफा टालनी पड़ी। शोर शराबा बीचे लोकसभा में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन बिल 2026 पेश कीनो। पेपर लीक री रोकथाम सारू लाइचिया इन बिल में दोषियां ने 10 साल ताई री कैद और वहां माथे 10 करोड़ रुपया ताई रो जुर्मानो लगावन सागे वारी संपत्ति जब्त करण रो प्रावधान है। इरे अलावा मामला रो बेगो निपटारो ते करण सारू सगला राज्यां और केंद्र रा राजवाड़ा प्रदेशां माए खास फास्ट ट्रैक अदालतां खोली जावेला जठे मामला री रोजीना सुनवाई वेला। बिल के पेश करती बगत विपक्षरा सदस्य नीट परीक्षा पेपर लीक रा मुद्दा माथे विरोध प्रदर्शन रे दौरान विद्यार्थियों रे खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई माथे चर्चा री मांग करता थका हंगामो कीनो। इन परान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन री कार्रवाई ठीक ढंग चलावण माए मदद करण और मारो मान बनायो राखण री अरज कीनी।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: ध्यान जोग है कि 20 जुलाई सरूफिया पावस सत्र री कार्रवाई माए पेपर लीक मुद्दा और विद्यार्थियों रा आंदोलन रा मामला न लेर लगातार अड़चन आ रही है। राजस्थान हाई कोर्ट रा सगला न्यायाधीश 31 जुलाई और 1 अगस्त ने कोर्ट री जयपुर पीठ माए मुकदमा री सुनवाई करेला। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा समेत सगला 39 जज इनमाए शामिल भेला। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रा सदस्य सचिव हरिओम अत्री बतायो कई दौरान अंतर्राष्ट्रीय शांति मध्यस्थता सम्मेलन ही राख्यो चावेला। वह बतायो कि सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इन सम्मेलन रो उद्घाटन करेला।
3: 52 ऐसे देश हैं जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज से संबंधित हैं और इन सभी में मुख्य तौर पर ब्रिटिशर्स जो थे, जब उन्होंने जब कानून लाया अपने इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो भी कानून लाया गया उसमें हम सभी उसी कानून से गवर्न हो रहे थे। तो हमारे सैद्धांतिक रूप से इन सभी देशों में जो प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है उनमें समरूपता है, तो हम कॉमन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करने वाले देश हैं, इसलिए हम कॉमनवेल्थ के रूप में भी जाने जाते हैं। अब इन सभी देशों की आज के समय में जो मीडिएशन है, मीडिएशन ड्राइव है, उसके अंदर जब प्रासंगिकता को हमने देखा।
1: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज पाली जिला रा सोजत माए शहरी सेवा फॉलो अप शिविरों रो दौरो कीनो और पात्र लोगों ने पट्टा दीना। उपमुख्यमंत्री मारवाड़ जंक्शन ओवरब्रिज और सिरियारी सवराड़ और शिवसागर नदी माथे बनिया

0: पुल और विकास रा दूजा कामा रो उद्घाटन ही कीनो। प्रदेश माए खाद्य प्रसंस्करण हलकारा विकास माथे विचार करण सारू आज जयपुर माए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए हितधारकां री मीटिंग राखी जी। इन माए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव एपी दास जोशी मौजूद हा। मीटिंग रे दौरान राज्य माए फूड प्रोसेसिंग री नुवी इकाइयां खोलण पर जोर दियो चियो। इस आगे फूड पार्क और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर ने बधावो देवन सारू नुवी तकनीक काम लेवन और कारोबारियां ने बेहतर सुविधा मुहैया करावन रे बारा माए चर्चा करी जी। मीटिंग माए मुख्य सचिव कहो के मीटिंग रे दौरान मिलिया सुझावां रे मुजब जरूरी पहल करी जावेला। केंद्रीय सचिव जोशी कहो के राजस्थान माए खेतीबाड़ी और बागवानी रा हलका रे जरिए नौकरी धंधा रा मौका मुहैया कराया जा सके है। राजस्थान नदी बेसिन और वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग अथॉरिटी रे आज जयपुर माए मीटिंग हुई। इन माए प्रदेश माए पानी जुड़िया साधना रा प्रबंधन माथे विचार करी जियो। मीटिंग माए मुख्य सचिव जल सुरक्षा पीवन रा पानी री पूर्ति और पाणत सारू पानी माए बढ़ोतरी जुड़िया 11 महकमा रा अहलकारा सागर चर्चा कीनी। मुख्य सचिव कहो कि राज्य माए 1990 पाछे सगली 16 नदी बेसिन परियोजनावां ने जरूरत रे मुताबिक सुधारी जा रही है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य रा उगनी हलका माए काल और उत्तराद आतुनी हलका माए 29 जुलाई 2 अगस्त ताई बिरखा माए बढ़ोतरी रा आसार है। मौसम विभाग काल 24 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। इन बीचे आज राजधानी जयपुर माए कठे कठे छांटो छिड़को भियो। दूजिकानी सवाई माधोपुर समेत कई ठोणा उमस लोग परेशान रहा। देश रा पहली वाला राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन रा नाम जानिया जावन वाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने आज मारी बरसी रे मौके श्रद्धा भाव सागर याद करया जा रहा है। डॉक्टर कलाम रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान रा हलका माए देश ने नुवी ऊंचाइयां ताई पुगायो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल आकाशवाणी प्रसारित करी चिया मन की बात कार्यक्रम माए डॉक्टर कलाम ने सीख देवन वाला शिक्षक बताता थका श्रद्धा भाव सागर याद कीना।
1: 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई डॉक्टर कलाम ने नमन करता था का कहो के वहां माए विज्ञान नुआ काम और देश बनावन बाबत जबरदस्त समर्पण हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा डॉक्टर कलाम रा आदर्श और विचार आज ही नौजवाना ने मोटा सपना देख हरवाना साचा करण री सीख देवे है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF रो 88वां स्थापना दिवस आज मनायो जा रियो है। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CRPF रा कर्मचारियां री जबरदस्त हिम्मत और कर्तव्य निष्ठा री सराहना कीनी है। शुभकामना संदेश माए श्री मोदी माओवाद रो खतरो खत्म करण माए CRPF री कोशिशा ने खास बताई। देश माए हिफाजत री व्यवस्था ने मजबूत बनावण और चुनौती वाला हालात माए जनता री सेवा CRPF रा कर्मचारियां सारू सबू ऊंचो काम है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: देश रा सबू मोटा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बला माए शुमार CRPF गृह मंत्रालय रे अधीन काम करे है। इनरो दायरो राज्य पुलिस ऊ न्यारो वे है। CRPF रा जवाना ने कानून व्यवस्था बनाई राखण माए मदद करण, दंगा माथे काबू करण, आतंकवाद और उग्रवाद रे खिलाफ अभियाना और खास प्रतिष्ठाना री हिफाजत रा काम माए लगायो जावे है। स्थापना दिवस रे मौके मुश्किल हल्का और हालात माए शांति बनाई राखण, जनता री हिफाजत करण और देश रा एका ने मजबूत करण वाला CRPF रा सगला जवाना ने सलाम। समाचार कक्षों सलेहा गाजी।
0: संत गुरु रविदास री 650वीं जयंती रे मौके भारतीय जनता पार्टी री ओर 29 जुलाई आवता साल 20 फरवरी ताई समरसता संकल्प अभियान चलायो चावेला। भाजपा रा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ बतायो के गुरु रविदास रा जन्म स्थान वाराणसी माए काल कलश पूजन सागे शोभा यात्रा रा कार्यक्रम राख्या चावेला।
3: भारतीय जनता पार्टी ने

0: गुरु रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष को समरसता संकल्प अभियान के रूप में मनाने का फैसला किया है। 29 जुलाई 2026 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 यानी गुरु रविदास जी के जयंती तक लगभग 7 माह तक एक राष्ट्रीय अभियान समरसता संकल्प अभियान के नाम से चलाया जाएगा।
1: इमोकर राज्य में आई समरसता संकल्प अभियान रातेत हरि कीर्तन सत्संग और विचार गोष्ठियां राखी जावेला। गुरु रविदास भक्तिकाल रा संत कवि और समाज सुधारक हा। वे जाति रा आधारों दुभांत और छुआछूत री करडी खिलाफत करता थका बराबरी और सामाजिक न्याय री सीख दीनी। हर साल माघ महीना री पुण्यु ने वानी जयंती मनाई जावे है। झुंझुनू रेलवे स्टेशन माथे आज सेफ्टी संवाद कार्यक्रम राखीचियो। इन दौरान रेलवे रा जयपुर मंडल रा DRM रवि जैन री मौजूदगी माए कर्मचारियां ओ हिफाजती इंतजामात अर काम री ठौड़ ने बेहतर बनावण जुड़ी राय ली री जी। इ पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का DRM बतायो के अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत झुंझुनू स्टेशन माथे नुआ बनाई जा भवन रो काम लगभग पूरो फे गयो है और इनरो बेगोई उद्घाटन करियो चावेला। चूरूरा सरकारी लोहिया कॉलेज में भारतीय उद्योग परिसंघ CII री ओरू मॉडल करियर केंद्र चलायो जा रियो है। इन जरिए नौजवानों ने बैंकिंग माली सेवावां ई कॉमर्स मेहमान नवाजी और डिजिटल साक्षरता समेत कई हलका माए सीख दी जा रही है। करीब 2 सालों चल रहा इन केंद्र रे जरिए जिला रा 232 गाँव रा करीब 10,000 नौजवानों ने करियर मार्गदर्शन दियो चियो है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहा हो। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन बिल 2026 पेश। विपक्ष रा हंगामा रा कारण संसद रा दोनों सदन री कार्रवाई में आज ही अड़चन आई। राजस्थान हाई कोर्ट रा सगला जज 31 जुलाई और 1 अगस्त ने जयपुर पीठ में मुकदमा री सुनवाई करेला। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण हलकारा विकास सारू फूड पार्क और एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर में नूवी तकनीक काम लेवण माथे जोर। और प्रदेश में आवता एक सप्ताह ताई बिरखा में बढ़ोतरी रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: दिनों बाद।
3: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
3: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
3: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
5: हर लेन देन अब है आसान।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनने वाले सगले किसान भाइयों ने आपरे साथी दीवान दान रत्नू
1: और संदीप पारिखरा घना घना राम राम राम।
0: संदीप भाई देखो बरसाले री ऋतु है और बारिश लार ले दो तीन दिन में बीकानेर क्षेत्र में भी आखिर में बारिश पहुंच गई है, कटी कटी बारिश हो रही है और किसान भाई देखो हर खूँ खेता में आपरा कामकाज कर रहा है।
1: देखो बात तो बिल्कुल सच्ची है कि जठ जठ जकी जकी छोड़ ठोड़ जकी बिरखा हुई है तो बट है तो अब किसान चेहरा जगह है खिलेड़ा है एकदम राजी है और होना भी जरूरी है क्योंकि किसान जिके साल भर री उड़ीक है जका अपने सावनी की फसल तो जिया मूंग बारिया है मोठ बारिया है या बाजरी बारी है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो बीजाण चुको है वो तो आप देखो होने लग गयो है
0: बिल्कुल।
1: पर इंगे सागे आपने एक चीज रो ध्यान रखना है कि निनाण चुको है पी पर पूरो बगत दे
0: बिल्कुल। जे अपा आगत में ये पहला अपा खेती कर ली है तो अबारी बखत में भी फसल वास्ते बिल्कुल संदीप भाई के अपा ने निदान री जरूरत है बखत माते अपा निदान काटाला तो निदान काटने कहीं वैसा के धान रे साथ है जिको घास उग जावे जिके ने अपा खरपतवार बोला वो खरपतवार यदि बीर साथे साथे उगड़ो रहे तो चाहे अपा पानी लगावा चाहे फवारा लगावा और चाहे भगवान बारिश करे तो वो पानी तो कहीं है आधो खरपतवार ले ले और आधो अपन पौधे ने पहुंचे।
1: और इंगे सागे सागे एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि जब फसल आवे तो फसल के सगड़न ललचावे तो किसान ने तो चौकी लागी है पर जगह दूसरा कीड़ा पतंगा है या सफेद माखी है तने की लट है ऐसे की चीजें लग गए तो बांसू बचाव के लिए भी आपने थोड़ी सावचेती रखनी जरूरी है। अब सावचेती में क्या है कि मान लो आप फसल लगा दिए निनाण भी कर रहे हाँ पर खेत को निरीक्षण जो को है नी दीवान भाई वो करनो घनो जरूरी है भी कठे भी आपन लागे भी कोई कीट पतंगों को प्रकोप दिख रही है तो बी थोड़ बी वगत ये नी बी गो उपचार जो को है बचाव गो जो को आपन जगह तजवीज जकी है बा करनी चाहिए
0: बिल्कुल। जी आपन मूंगफली री फसल री बुवाई आपा पहला कर राखी है गन्ने री फसल में कर राखी है या खरीफ री जकी भी फसल है प्रमुख फसल में कर राखी है तो बी में इया तो नहीं है कठे कोई कीड़ो लाग रही है जहाँ सफेद लट लाग रही है तो बिना अबारी अपा करना तो भाई दूसरे पौधा तक और पूरे फसल में और फसल में नहीं लगे
1: बिल्कुल। और जरूरी को नहीं कि आप धान आ रही फसल बो रही है मान लो कई भाई लोगों का जगह करने सिंचाई
0: का साधन है
1: तो मान लो कोई टमाटर लगाएड़ो है कोई लौकी है
0: फसल
1: पेठा है
0: तो सब्जियां वगैरह
1: पर भी आप जाना देखो कि सब्जियां री फसल है वहां पर कीड़ा पतंगा जगह
0: ज्यादा संभावना
1: तो इन चीज को भी आप थोड़ा ध्यान रखो और सागे सागे जो को आपनो पशुधन है दीवान भाई तो टीकाकरण तो आप उम्मीद करा भाई लोग करा लियो होगो पशुओं लेकिन जो नहीं कराए हुए तो अब भी देर को नहीं बना करा लेना चाहिए
0: बिल्कुल टीकाकरण कराना क्योंकि आगे चौमासा में रोग री संभावना ज्यादा हुए तो इस खातर टीकाकरण आप पशुओं कराना भी जरूरी है। और संदीप भाई एक जिकी जठे भी बारिश नहीं हुई है तो समय पर बखत पर आप हो सके तो हल्की सिंचाई जरूर कर ला क्योंकि आके तो अपन बारिश हो ही सके लेकिन नहीं हुए तो अपन हफ्ते 10 दिन में बीच में कोई बारिश जरूर कर ला ताकि अपन जी की बुआई करी उड़ी फसल बा खराब नहीं हुए।

0: एक चीज और है, देखो दीवान भाई, आप जो की बात बताई बारिश आ रही,
1: हुँ.
0: तो अब जो को मौसम का पूर्वानुमान है वो
1: हुँ.
0: पहले काफी बेहतर हुआ है,
1: हो रही है.
0: तो बींग पर भी आप पूरी नजर रखा और मौसम के पूर्वानुसार जो को भी पूर्वानुमान है बिंग अनुसार आपका खेती बाड़ी की जो रूपरेखा है
1: तैयार
0: बात
1: कर
0: तैयार करता रहा,
1: बिल्कुल.
0: ताकि आपने खेती जो की चौकी हुए और फसल की लागत जो की कम आवे।
1: अरे एक और बताऊं के हमारी नज़र में यदि कभी कभी अपन ज़्यादा पानी भी हो नहीं, वो भी अपन फसल ने नुकसान हो जने. वो भी ध्यान रखा, ज़्यादा बारिश हो जाए अपा खेत में जावा नहीं, तो खेत में जा पर और जल निकासी रो भी पूरू पूरू ध्यान रखा.
0: और अब कार्यक्रम में आगे ध्यान रखना आप ना गीत संगीत रो,
1: गीत हो.
0: तो भाई लोगों ने और जब कभी कार्यक्रम सुनने आपने बहना है वहां सगड़ा सुनावा एक मीठो सो लोकगीत।

0: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
1: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
0: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
4: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: तो देखो सा तो हाँ संदेश और संदेश पहली आप जो को गीत सुनियो बिन गायो हो बोल है बिना मोर मोर बोल रहे बहुत ही मीठो फूटरो गीत
1: वीरेंद्र जी।
0: और अब देखो आगे जी की बात करांगा दीवान भाई बात चर्चा किए
1: बा देखो बरसाली ऋतु में आपा संदीप भाई हम मन हमेशा कह भाई हाँ के बारिश रे माया वृक्ष लगाओ पेड़ लगाओ बहुत जरूरी है वक्त माते क्योंकि जिकी वृक्षारोपण पौधारोपण आप बारिश में बरसाले में करा उनो अलग ही हुए क्योंकि भगवान रे गुरु जो को पानी बारिश आउड है उन ज्यादा पनपे पौधों भी पनपे और वक्त माते सही टाइम माते पनप जावे इन खातर अपने ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करनो और आज वृक्षारोपण में ही आज अपा एक ऐडी चीज ले रहे हैं जिकी बात करा अपा के सहजन वृक्ष सहजन पौधे री जिको औषधि भंडार है बीरा गुण है बा मतलब गिणे अपा गिण को सकन इतना गुण है
0: भाई देखो यहाँ है दीवान भाई ओ जिको सहजन रो पेड़ है नी यहाँ कह कर है कि वो चमत्कारी पेड़ है एक तो जी आपने खिजड़ी ने पानी कौन चाहिए भी इन्हें भी ज्यादा पानी की दरकार कौन
1: है
0: और तावड़ो कितो ही पड़ो कोई फर्क को नहीं बड़वार बहुत
1: बल भगवान ही प्रकृति रूप पौधो अपना पनप बोकरी और देखो बढ़िया बात आ है कि अपने पश्चिम राजस्थान रो जो वातावरण है वो भी अनुकूल है
0: बिल्कुल और एक चीज और मैं बताऊं आपने सहजन रो पेड़ एक इयाल को पेड़ है जबकि ये एक भी चीज जकी है वह बेकार कौन
1: बेकार कौन
0: अब जहाँ फलियां है पत्तियां है मेरा फूल है बीज है जड़ है
1: सब
0: कोई ना कोई काम में जरूर आएगा
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और इन जगह फलियां है बंग सब्जी इतनी स्वादिष्ट
1: स्वादिष्ट हो बिल्कुल और बीर पत्तियां हुए जी की पोषक तत्व हूँ भरपूर हुए मतलब बीरे माया दूध तो ज्यादा कैल्शियम हुए और आयरन री भरपूर मात्रा हुए साथे साथे बीरी पौधे री जी की पत्तियां हुए या फिर दूसरी चीजा आप लेवा तो बीसू मनुष्य रे मानखे में इम्यूनिटी सिस्टम हुए जिको वो रोग
0: प्रतिरोधक
1: क्षमता बा बिल्कुल सही हुए इन खातर आपने चाहे वैद हुए चाहे डॉक्टर हुए चाहे पढ़ियो लिखियो बनियो पढ़ियो आदमी हुए जिको बुद्धिजीवी वो हरेक कहे सहजन रो पौधो अपने आखे पाके लगानो चीज है और बिनु कहीं आप

0: सहजन रे पौधे से स्वास्थ्य लाभ भी ले सका।
1: बिल्कुल। और एक चीज और है कि सहजन रो पौधो जो को है बिंगो जो को पेड़ आपन लगावा बिंगी पत्तियां जकी है वे आपने पशुओं के हरे चारे के भी काम आवे और इनके अलावा आन दिना इरु उपयोग जो को है वो बढ़तो जा रहे है। और घनकरी सी जी की दवाइयां बना हरी कंपनियां है वे इंगी गोलियां कैप्सूल जकी है वे भी बनाए करे जी आप अबार जिक्र करो इसु रोग प्रतिरोधक क्षमता जी की है। और देखो मान लो आपने घर में बाकड़ में कटी आप सहजन पेड़ लगाए तो रोज बिंगी चार पांच पत्तियां भी आप चबावा नहीं तो भी सुबी आपनो शरीर जो को है वो निरोगी रहे
0: निरोग और इन सु हड्डियां भी मजबूत हुए
1: बिल्कुल
0: और जोड़ा रो दर्द है वो भी कम हुए इन सहजन रे पत्तियों
1: कम हुए। और एक थन और बात बताऊं आपने अठे जो को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो को है केशवानंद बट के है कि इन प्रकार की लाड़ले महीने भी एक ट्रेनिंग को कार्यक्रम हुयो और ई महीने भी मतलब अगले अगस्त के महीने में भी एक ट्रेनिंग को प्रोग्राम हो रहा है जका में जका भी किसान भाई लोग है वे चावे तो वे सहजन ने किन प्रकार से लगावा जावे इरी पूरी ट्रेनिंग जकी है बा दी जावे और बिंग पछे ट्रेनिंग जद आप पूरी कर लेवा तो हर एक किसान ने हजार सहजन रा पौधा जका है नी दीवान भाई हजार पौधा वे मुफ्त में मिले।
0: बिल्कुल। अरे वाह क्या बात है किसान भैया बिल्कुल अपा बीकानेर गंगानगर रोड कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर जरूर पहुंचा और सहजन रा पौधा निशुल्क प्राप्त कर सका
1: और ट्रेनिंग लेगे
0: और ट्रेनिंग ले रहा
1: बिल्कुल
0: पौधारोपण अपा
1: आम का आम गुठलिया
0: गुठलिया रा दाम बिल्कुल।
1: और कार्यक्रम में आम रा आम गुठलिया रा दाम है कि जानकारी यारी बात करा और बीसु फायदों उठावा और साथ ही साथ
0: बढ़िया
1: आनंद
0: आनंद लेवा। तो सुना आपा सीमा मिश्रा गौड़ो गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
3: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणप्पुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
2: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
4: तो संदेशों पहले आप सीमा मिश्रा की आवाज में बन्ना रे बागा में झूला घाल्या। तो देखो अब जो अब सावन को जो वक्त हुआ है बी में तो झूला पड़े ही है
5: बिल्कुल,
4: और गीत संगीत जो है बिंग माध्यम से जीवन में एक सहजता, सरलता और आनंद जो है बिंग भाव आवे।
5: और बीकानेर तो ये निरालो ही है, क्योंकि सावन और बीकानेर एक चोली दामो साथ है, क्योंकि ईर में सावन रबो कह सियाड़ो खाटू बलोर उनाड़ो अजमेर नागोरी नित्रो बलोर सावन बीका इकहत्तर सावन रो देखो सा बहुत ही है। अरे उड़ी के अब दो दिन बाद में सावन आवेला तो और भी अपा किसान भैया ने सावन रा मीठा मीठा गीतला सुना वाला।
4: अब देखो एक बात जी आप दीवान भाई कही कि उड़ीक है, अब आ उड़ीक जी सगड़ा न हो
5: बिल्कुल
4: अब छोटो टाबर है तो बिन उड़ीक रहे भी माँ कन जाऊ छोटो नानो टाबर है बिन माँ बिना को नहीं आवड़े
5: आवड़े।
4: अब दुकानदार जो को है वो सोचे दुकान पर जाके बैठूं बिन दुकान बिना कौन रहेंगे। अब खेत में किसान जब फसल लगा ले तो बिंगो मन भी घरे कौन लाके वो कह मैं खेत में रहूंगो। अब जब खेत में फसल लाग जाए नी तो फिर रोज डाया दूसरा जानवर है नी वाहन भी ठीक रहेगी भी जे
5: मौका मिले तो मैं भी लेवा
4: लेकिन अभी सुहावन फसल ने बचानो भी जरूरी है।
5: जरूरी तो बिल्कुल सरकारी भी कई योजना भी है संदीप भाई जी का बहुत महत्वाकांक्षी बहुत ही शानदार योजना है जो किसान रहते सी है किसान भाई रे खातर है। तो बा आप थके हो जिके अनुसार मैं समझ ही गयो आज रे अपन जी की आउडी मेन योजना प्रमुख योजना राजस्थान में तार बंदी योजना। किसान भाई अपारे हमारे पशुओं रे बचाने खातर सरकारो एक बहुत जोरदार तोहफो है योजना रे मार्फत के अपा हमारा पशु है भी हूँ बचाने वास्ते अपारी फसलों ने बचाने खातर अपा तारबंदी करा लेकिन भी तारबंदी रो सरकार पिचित्र प्रति

0: से तकरो अनुदान सरकार सहायता रे रूप में अपने प्रदान कर दे।
1: बिल्कुल, जके सू आम किसान पर आर्थिक बोझ जुको है वो
0: कम हो
1: और बे आपरी फसल की बेहतर सुरक्षा जिकी है बे कर सके। विशेष रूप से जहाँ कोई नील गाय है या दूसरा आवारा पशु जका है या जंगली पशु है, वहां से नुकसान ने रोकने में आयोजना जिकी है वो बहुत ही कारगर
0: है।
1: अब एक चीज और है, देखो दीवान भाई, जब इन योजना से आप फायदे की बात करानी तो आज की योजना है राजस्थान तारबंदी योजना, इसु केवल आपने फसल की सुरक्षा ही को नहीं हुए, इसु आपने खेत की सीमा जिकी है अभी स्पष्ट निर्धारित
0: बिल्कुल तय हो जाए, क्योंकि आप दो किसान भाई है, चार किसान भाई है आसा पास आड़ा, यदि भी तारबंदी करा ला पट्टी का टुकड़ा या जो भी पोल लगवा ला तो बीटे में सगड़ा सामूहिक रूप में मिल परार आप अपने खेत में लगवा ला, तो एक तरीबा सी भी होगी है और सिंह रे साथ साथ तारबंदी भी होगी और तारबंदी होने रे बाद में बठे भी जगह रूख वृक्ष लाग पर और जोरदार हरियाली भी हो जावे।
1: बिल्कुल
0: है, बा हरियाली बा सीमा अपने पशुओं भी बचावे और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं भी बचावे करे।
1: बिल्कुल, और जब आप तारबंदी योजना से जुड़ा नहीं तो फसल की गुणवत्ता जिकी है बा भी बेहतर हुए और उत्पादन में वृद्धि हुए क्योंकि नुकसान को नहीं हुए,
0: नुकसान को नहीं
1: और कई तरह की सब्जियां जिकी है बागवानी है नकदी फसल जिकी है बांगी सुरक्षा भी जिकी है इन योजना से बहुत सुनिश्चित हो जावे। अब जका भाई लोग इन सु जुड़ना चाहे और जका कन खेती है आपकी है। तो आवेदन के वक्त वह खेती संबंधी जका भी दस्तावेज है जनाधार है आधार कार्ड है बैंक खाता को जो विवरण है आपने प्रस्तुत करना चाहिए और अपा चाहवा तो ऑनलाइन पोर्टल जो है बिंग माध्यम से भी कर सका या ई मित्र के माध्यम से जाके आप अप्लाई जो है बुक कर सका और आवेदन जब आपको स्वीकार हो जाएगा बिंग पक्ष निर्धारित नियमों के अनुसार तार बंदी को काम जो है वो आप करा सका और सत्यापन के पक्ष अनुदान की जिकी भी राशि है बात किसान के बैंक खाते में जमा
0: सीधी खाते में। बिल्कुल, अपन दस्तावेज री बात करी तो दस्तावेज हुए और साथे साथे अपन राजस्थान किसान पोर्टल के माध्यम ऑनलाइन आवेदन घरे बैठे भी कर सका, ई क्यूसो को भी कर सका और अपारे बैंक खाता संबंधी कागज देवा भी रिमाया सीधी अपारे अनुदान राशि वेला। लेकिन अनुदान राशि में भी संदीप भाई एक जोरदार चीज है, यदि सम्मानीय किसान है जो कोई व्यक्तिगत अनुदान लेना चाहे तो बीमे तो 50-60% अनुदान मिल सके, मान लो अधिकतम 44,000 रुपए तक अनुदान, और जिको लघु सीमांत किसान है बीमे 60% तक अनुदान मिल सके 48,000 अधिकतम, और सामूहिक रूप में किसान है चार भाई है या पांच भाई रो खेत है तो सामूहिक रूप में यदि तारबंदी करनी चाहे तो वो भी इमें कर सके, और सामूहिक रूप में जो अनुदान राशि है बा 70% तक अपने किसान भाई ने मिल सके।
1: बिल्कुल, आज तो बहुत अच्छी जानकारी है ताकि आप कौन सी श्रेणी में आवा अनुसार आप सब्सिडी ले लगा हकदार है। अब एक चीज अपन और भी ध्यान रखनी चाहिए कि अपन खेत की सुरक्षा करनी है तो जो रण मिल गए एक सामूहिक रूप से आप काम करानी तो आपने जितना भी खेत है बाकी अधिकतम सुरक्षा जी के
0: कर सका
1: सुनिश्चित कर सका
0: कर सका। देखो सब संदीप भाई आ तो ही राजस्थान तारबंदी योजना रहे और अब किसान भाई ने सुना कोई बढ़िया मीठो सो गीतड़ लो अफरोज बानरो गावड़ो ओ गीत।

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: शहर और जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अब शहरों में रहते हैं और ये शहर दुनिया के 3/4 ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो और आबादी घनी हो, वहां बुरे मौसम, हवा में गंदापन और बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन शहर समस्या का हल भी बन सकते हैं, जैसे बेहतर सार्वजनिक परिवहन, कम गाड़ियां और अपने शहर में ही खाद्य उगाना। यह सब प्रदूषण को घटाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। सतत योजना बनाना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि यह एक आवश्यकता बन गया है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। आज लगभग 55% लोग पृथ्वी पर शहरों में रहते हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है।
2: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
3: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनप्पुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का

0: होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
1: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
2: जब सुन

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारु चैनल की प्रस्तुति।
1: दीवान भाई देखो है तो हो गया संदेश और संदेश ऊपर लिया पा गीत भी सुन लियो। अब थारू एक बात पूछनी है।
2: बिल्कुल संदीप भाई पूछो।
1: घबराओ क्यों,
2: सामान्य घबराओ तो यह है कि देखो जब बूढ़ा बडेरा कोई बात छोटे टाबर ने पूछे नहीं तो मैं तो थारा आगे एक तरह देखो कम अनुभव वालो एक टाबर दई मैं तो आठ
1: पूछूं क्या
2: इतना डर लाग जाए यार थे नहीं कोई बात पूछो तो मन आवे।
1: नहीं नहीं देखो एक सामान्य सी बात है थोड़ा ठंडा दिमाग सोच बताओ कि जमानो जो है जमानो आपने बुजुर्गारो बढ़िया हो या अबारो।
2: देखो संदीप भाई जमानो तो कहवे नहीं के अबार विज्ञान है और विज्ञान तरक्की कर रही है और जमान विज्ञान रो भी विज्ञान रो अबार रो घणो जोरदार है लेकिन कई सुख ऐडा है जिका वाकायदा पहला जिका सुख हा पहलो प्रकृति ही पहली धरा ही बा बीरो होड को नहीं वे कहवे यानी भाई बात आ है के जिकी विज्ञान रे तरक्की में विज्ञान रे युग में ठीक है आपदापी है विज्ञान रो लेकिन जद भी अपन ने देखा के लारली जगह देखा लारे समय देखा लारे रो बखत देखा तो कठिन कठिन सुकून देवनालो है नी बात चीज है नी वो लारलो में।
1: अब सुनो विज्ञान है तो विज्ञान सु अपन ने आखिर हासिल के करना है सुकून
2: सुकून सुख
1: तो सुखी कह दो या सुकून जो को है वो आपने बुजुर्गां करना हो जो आपने करना कौन
2: नहीं
1: और क्यों हो कि बे बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में रहता
2: बिल्कुल खुले
1: पान जो को है नहीं
2: बढ़िया हो तो
1: एकदम शुद्ध हो तो चाहे दूध दही की बात कर लिया कोई नाज की बात कर लिया ओढ़नो बिछाणो करनो हो पहनो है एकदम शुद्ध हो तो वो
2: बिल्कुल
1: और जीवन जो को है भी मैं एक दिनचर्या होती जगह को मैं पालन करता तो मैं जिकी भी चीज खाता और जीवन में जिकी बातेंगो मान्यताओं पालन करता नहीं तो मांगो जीवन हमेशा सुखी रहो
2: सुखी रहे।
1: बिल्कुल, आज के जमाने में विज्ञान ने कह दिया आपा विज्ञान है लेकिन आखिर जीवन चाहे के सुकून सुख
2: सुख
1: सुख वो सुख आपने करना आज को नहीं और सो मोटी बात घनकरी सी बीमारियां अब होने लगी हैं जिकी पहले कौन
2: नहीं होती
1: तो पहली खान पान जो है वो शुद्ध तो ऊपर जो को नाम आवे नी दीवान भाई वो आवे दूध रो
2: दूध रो
1: दूध कह करे अमृत समान हो तो
2: वो
1: अब आपा ने देखो गांव में आपा बसा तो देखो बात चीज पहली एक बहुत बड़े स्तर पर हर एक ने उपलब्ध थी पर आज ये बात करा तो असल दूध जो को है अमृत समान दूध जो
2: वो अपन नहीं बिल्कुल कौन नहीं है क्योंकि मिलावटी दूध ज्यादा आ गया मिलावट खोर ज्यादा आ गया अरे अठे तक तो जिकी नस्ला है बीमे भी मिलावट आ गई।
1: बात आई है नी कि भई मिलावट क्यों करनी पड़ी कि जिकी असल चीज ही असल जिकी नस्ल ही देसी नस्ल आई जे आपने अठे राठी ही
2: थारपारकर
1: ही देसी ही है नी तो इन प्रकार जिकी नस्ला ही अच्छे दूध आ रही बे तो अब धीरे धीरे
2: कम हो रही है बिल्कुल
1: तो जब नस्ला कम होगी तो शुद्ध दूध कठू
2: बिल्कुल देसी नस्ल री होड को नहीं है अपर गाय जिकी देसी नस्ल है अपर पशु जिकी देसी नस्ल है भी देसी नस्ल हो जिको दूध उत्पादन हो तो मेरी हो सके वो सुख है वो स्वस्थ है वो यू ही बरकरार
1: है। एक बात और सुन लो सुख स्वस्थ सुकून के लिए बाबा रो नाम भी जप लिया तो भी देखो की न की सुकून तो कार जमा है
2: और अपर जो कार्यक्रम रो लास्ट जा तक आप जे बाबे रो भजन रो जे थोड़ा बहुत हर जैसे अंश सुन लानी भी सुकून आ जाए।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, प्रस्तुत कर रहे थे श्री दीवान दान रत्नु और श्री संदीप पारिक। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

आप सुन रहे थे ये गीत और स्वर था शोभा माथुर का। और लीजिए अब सुनिए गजल, आवाज है पुष्पा पगधरे की।

मनीष शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। सरकार ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया। नीट प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्षी दलों से आज शाम तक सहमति बनाने की भी अपील की। सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय

मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब ये है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। 4 बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह

में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सभापति से अनुमति मिलने पर विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खड़गे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खड़गे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खड़गे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खड़गे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृह मंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। ये विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का

0: प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मानसून सत्र शुरू हुए एक सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृह मंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

ये गीत हमने दशावतार फिल्म से लिए था, स्वर थे शान और श्रेया घोषाल के। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने आजमाई फिल्म से लिया है, स्वर है सोनू निगम और अलका याग्निक के।

आजमाइश फिल्म का ये गीत था सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। और लीजिए अब सुनिए अभिजीत और सोनू निगम को, ये फिल्म है मुकाबला।

सोनू निगम अभिजीत के गाए मुकाबला फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।

अभी आप ये लोक भजन सुन रहे थे, स्वर था राजेश चांगरा का। और आइए अब सुनते हैं लोकगीत, स्वर है सीमा मिश्रा का।

इस लोकगीत में स्वर था सीमा मिश्रा का। और आइए अब सुनते हैं अगला लोकगीत, स्वर है ललित कुमार व्यास और साथियों का।

0: ललित कुमार व्यास और साथियों के गए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। 8:45 होने को है।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। दही मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
3: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही

0: पर स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर से कहते हैं कि आप बोलिए।
0: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमार्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं या स्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इजराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है।

0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने के अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं

0: मंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों रोकथाम सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ. अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही ने एक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Public Examinations Amendment Bill introduced in Lok Sabha proposing stricter action in paper leak cases. Both Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition on alleged police action during protests over knee tissue. Uttar Pradesh government sets up a 4-member SIT under IGP to investigate alleged Ram Temple Trust donation embezzlement. Supreme Court directs to include forensic auditor in team. New Delhi summons Ukrainian ambassador lodging strong protest over death of an Indian national in vessel attack. Deep depression over northwest Bay of Bengal triggers widespread torrential rainfall across Orissa. Orange alert for heavy rainfall issued across North India. And in Commonwealth Games, weightlifter Gyaneshwari Yadav clinches silver medal in women's 53-kilogram category. And now the news in detail. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over knee tissue. A report.
2: For the sixth consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to

लता मंगेशकर के साथ ये आवाज थी तलत अजीज की, ये फिल्म थी बाजार। और आइए अब सुनते हैं प्रीति सागर को, ये फिल्म है मंथन।

मंथन फिल्म में यह आवाज थी प्रीति सागर की। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं और आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम।

अज ये इश्क देखिए क्या दिन दिखाने वाला है, जरूर कोई नया गुल खिलाने वाला है।

अज ये इश्क देखिए क्या दिन दिखाने वाला है, जरूर कोई नया गुल खिलाने वाला है।

0: वाला है।
1: अरे भाई जरूर आएगा।
0: कभी घड़ी को कभी नामा बर को देखते हैं,
2: कभी घड़ी को कभी नामा बर को देखते हैं,
3: कभी घड़ी को कभी नामा बर को देखते हैं,
2: कभी घड़ी को कभी नामा बर को देखते हैं,
3: कभी

बेकसूर फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी और दुरानी की आवाजों में। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

से कुछ बोले, हाँ भैया से कुछ बोले, देखो भैया से कुछ बोले। साज महल कर दूसरी, साज महल कर दूसरी, बेदम बन कर बोले, हाँ बेदम बन कर बोले, देखो बेदम बन कर बोले। और बिजली बन कर तीसरी, बिजली

जिगरी दोस्त फिल्म से ही हमने गीत लिया था, स्वर थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

बूंद जो बन गई मोती। इस फिल्म का अभी आपने गीत सुना, आवाज थी आशा भोसले और साथियों की। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत।

मोहम्मद रफी के गाए बॉयफ्रेंड फिल्म के इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 9:30 बजने को है, अब थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: नमस्कार श्रोताओं, खेल जगत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले आप सुनेंगे पैरा स्विमर और कोच जगदीश तेली से बातचीत।
1: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि पानी हर बाधा को अपने रास्ते से काटता हुआ आगे बढ़ता रहता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही खिलाड़ी जिन्होंने ना सिर्फ पानी की लहरों को बल्कि जीवन में आई हुई सभी चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए सफलता के नए आयाम कायम किए हैं। आइए स्वागत करते हैं जगदीश तेली जी का। जगदीश जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: जी नमस्कार सर।
1: जगदीश जी, कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
2: सर, मेरा नाम जगदीश तेली है, मैं राजसमंद का निवासी हूँ और पैरा में मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ।
1: जैसे कहा आप पैरा स्विमर हो
2: जी,
1: तो ये जो आपके साथ जो घटना हुई है इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, ये कैसे हुई और किस उम्र में हुई?
2: सर, ये घटना मैं जब 7 साल का था तब हुई है। उस समय मतलब छोटा था मैं उस समय, लेकिन ये 7 साल की उम्र में साथ घटना हुई थी।
1: अचानक से हो गई थी ये?
2: अचानक मतलब ऐसे मेरे माता पिता बताते हैं कि अचानक मतलब पैर जो है पैरालिसिस हो गया, मैं चल नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ तो वापस थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था।
1: जैसे आपने कहा आपको 7 साल की उम्र में ये हुआ, तो उसके पहले तो आप एक नॉर्मल किड थे
2: जी,
1: लेकिन जब ये घटना हुई तो फिर आप
2: एक
1: पैरल वो हो गए, आप डिसेबल।
2: हाँ,
1: वो हो
2: गए। जो चलने में भी सहारे की जरूरत होती थी उस समय
1: जी। तो जो समाज है उसका रवैया आपके लिए बिल्कुल बदल गया या वो ही रहा?
2: नहीं, बहुत नेगेटिव था सर।
1: जैसे कि
2: जैसे हीन भावना से या फिर कोई बोल देना, जैसे डायरेक्ट ही बोल देते थे, मतलब एक ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन अब ऐसे शब्द है कि जैसे लंगड़ा है ऐसे बोल
1: जी जी,
2: इस तरह की सुनने को मिलता था। अब कुछ नहीं कर पाएगा बच्चा,
1: मतलब वो समझते थे कि आप बोझ बन जाओगे।
2: जी, बोझ बन जाओ जी।
1: और आपके माँ बाप क्या सोचते थे?
2: नहीं, उनका मतलब बहुत पॉजिटिव था भाई, जो भी है वैसा है, क्योंकि माँ का एक मतलब कैसा बच्चा हो,
1: हाँ,
2: माँ बाप का तो लाडला होता है
1: जी
2: जी। तो वो उसमें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई उनके सपोर्ट से।
1: आपको कब ऐसा लगा कि मुझे कुछ अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करना है, खासकर स्विमिंग को लेकर?
2: ये सर एक मतलब एक खेल खेल में हुआ है। मैं जब ऐसे स्विमिंग खाली सीखने जा रहा था और जब मैंने भक्ति शर्मा का देखा, उदयपुरी जलपुरी नाम से फेमस है
1: जी,
2: और उनकी माता जी के अंदर में मैंने स्विमिंग सीखी थी बाद में, तो उनका मैंने एक आर्टिकल देखा जिसमें वो इंग्लिश चैनल पार किया था 2016 में। तब से मेरे भी मन में आया कि लड़की होके कर सकती है, तो मैं खाली राजसमंद झील क्यों, मैंने नहीं सोचा कि मैं राजसमंद झील में भी पार करूँ। तो

0: ऐसे सोचा था, वो किसी को बोला मैंने भाई मैंने ऐसे राशि मंजिल पार करनी, तो मुझे बोला कि नहीं नहीं तू तो दिव्यांग नहीं कर पाएगा। तो फिर मैंने दिमाग से आने की अब तो करना ही है, मतलब एकदम मैंने पॉजिटिव लिया कि नहीं नहीं अब तो मुझे करना है, उन्होंने मना किया इसका मतलब, तो क्योंकि मुझे स्विमिंग आ गई थी और मुझे पता है कि मैं डूबूंगा तो नहीं, कम से कम कैसा भी हो जाए, मौसम कैसा हो जाए बोले या फिर कुछ भी हो जाए।
1: स्विमिंग में सबसे जरूरी होती है कि आपके हाथों के साथ साथ पैरों का भी इस्तेमाल हो
0: जी,
1: ठीक है। तो आपको शुरुआती दौर में इन बाधाओं का सामना करना पड़ा?
0: सर एक भगवान मतलब एक लोग कहते हैं कि भगवान कुछ लेता है तो देता भी है, तो मेरे में एक चीज थी कि मेरे जब कोच भी बोलते सब कि मेरे जो पैर में जो पोलियो है उसकी वजह मतलब पता नहीं मतलब, लेकिन मेरे हाथ में जो हाथ है आम स्विमर जो होते हैं उनसे थोड़े लंबे है।
1: अच्छा।
0: तो मेरे वो मुझे फायदा मिला उसका,
1: उस चीज का फायदा मिला
0: जी।
1: और फिर जब आपने शुरुआत की तो फिर कहाँ से, नॉर्मल स्विमिंग से ही की, जैसे आप गांव में तो लोग तालाबों से शुरुआत करते हैं?
0: तालाबों से सर, वही नॉर्मल स्विमिंग जो देसी गांव में होती है, क्योंकि मुझे फ्री स्टाइल का स्ट्रोक भी उदयपुर में आया तब पता चला क्योंकि ये एक्यूरेट स्विमिंग ये भी होती है।
1: अच्छा। और फिर उसके बाद फिर आप कैसे कैसे धीरे धीरे अप्रोच करते गए?
0: मैं फर्स्ट टाइम सर यहाँ यूपी में एक रिवर स्विमिंग थी नेशनल इवेंट, उसमें गया ब्रॉन्ज मेडल लगा, तो एक तरह का होता है जैसे एक मेडल लग गया तो आपके पंख लग गए हो।
1: हाँ बिल्कुल
0: जी, तो उस टाइप का मेरा वहाँ हुआ। फिर मेरा मतलब एक अब खुद में भी सर पॉजिटिव सोच ये सब जागृत हो जाती है कि एक मेडल लग गया तो मतलब आपको फिर धीरे धीरे सब रास्ते भी खुल जाते हैं, कहाँ से कहाँ आगे क्या बढ़ना है, आगे के जो भी स्ट्रोक है कैसे सीखने हैं ये चीजें सब।
1: एज अ पैरा स्विमर और नॉर्मल स्विमर जब सीखते हैं तो इन दोनों में ट्रेनिंग को लेके क्या अलग अलग रवैया रहता है
0: बहुत,
1: या फिर मतलब टेक्निक वगैरह कुछ अलग रहती है दोनों में?
0: नहीं तकनीक तो सर सेम होती है, लेकिन समझाने का तरीका जो होता है
1: जी,
0: जैसे आम स्विमर है उनको कोच समझा सकता है उनके तरीके से क्योंकि उनको पता है वो। आज हमें पूरे भारत में कहीं बहुत कम देखने को मिलते हैं दिव्यांग के लिए स्पेशल कोई कोच हो।
1: बिल्कुल।
0: तो अब कोच दिव्यांग अगर के लिए दिव्यांग के लिए होगा तो वो उसकी तरफ से समझा सकता है क्योंकि उन्होंने वो फेस किया है। अब जैसे मैं हूँ, मैं दिव्यांग हूँ और मेरे जो स्टूडेंट है मैं मुझे पता है ये अगर पैर नहीं है तो क्या तरीका अपनाएंगे तो जाके वो मेडल लाएगा, तो उस तरीके से वो अब धीरे धीरे होने लगा है। पहले ये नहीं था कि दिव्यांग के लिए समझाने वाला हो, जैसे मुझे बहुत सारी जगह ऐसे भी थे कि नॉर्मल स्विमर जो स्विमर स्विमिंग कर रहे हैं उससे अलग रखा जाता है भाई ये तू अलग यहाँ पे कर ले, तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई कि मैं उनके पास में हालांकि उनके साथ नहीं कर रहा हूँ लेकिन पास में करके मैं उनके तरह के कॉपी करने की कोशिश करता था तो उससे मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ ज्यादा।
1: तो ये स्विमिंग करने के लिए कुछ जैसे स्पेशल इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल होता है
0: जी, जी।
1: पैरा स्विमर्स के लिए कि वही इक्विपमेंट्स होते हैं जो नॉर्मल स्विमर्स के लिए रहते हैं?
0: पैरा में कुछ अब आने लगे हैं, पहले नहीं होते थे इतने,
1: पहले नहीं होते थे
0: जी।
1: अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है,
0: अब अपग्रेड होती जा रही है, जैसे अभी डाइविंग के लिए भी आ रहे हैं, सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीजें चेंज हुई अब।
1: अच्छा, जब आपने अपना पहला मेडल जीता था जैसे कि आपने बताया ब्रॉन्ज मेडल था, उसके बाद जो समाज का रवैया था वो कितना चेंज हुआ आपके प्रति?
0: जो लोग सर मुझे बोलते थे पहले जैसे मैंने राश मंजिल पार करी उस समय मुझे जो बोलते थे भाई तू नहीं कर पाएगा ऐसा वैसा, वही लोग जैसे माला लेके आए फिर वही लोग तारीफ करते थे तो वो फिर एक अलग ही खुशी देता था।
1: आपने इंटरनेशनल भी कम्पीट किया है?
0: जी।
1: तो जो आपका फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें आप कंपटीशन में जा रहे थे उस समय आपकी क्या फीलिंग थी? कभी आपने सोचा था कि मैं एज अ पैरा स्विमर इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाऊंगा?
0: सर सोचा तो नहीं था क्योंकि मैं एक किसान परिवार से आता हूँ तो इतना बड़ा सोचना मेरे लिए बहुत बड़े एक सपने की तरह था
1: जी।
0: लेकिन जब समाज का सपोर्ट अपने घर वालों का सपोर्ट सबका जो कोच का जो रवैया है या भी उनका जो तरीका है अपने बताने का फेस करने का उससे सर मुझे बहुत मतलब फायदा हुआ है। और समाज जब एक होता है जब मेरा मतलब ब्रॉन्ज मेडल आया उसके बाद से मेरा लाइफ एक तरह का जैसे चेंज होने लगी थी तो उससे मतलब अब जब इंटरनेशनल जा रहे हो आप तो उसमें तो होता ही सर एक प्रेशर तो होता है हालांकि वो वाले खेलने का लेकिन एक खुशी भी होती है कि चलो एक गांव से निकल के यहां तक पहुंचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
1: जी बिल्कुल। आपकी उपलब्धियों में सबसे बड़ी चीज है इंग्लिश चैनल और कैटालिना चैनल की।
0: जी जी।
1: इन दोनों चैनलों के बारे में आपके मन में सबसे पहले विचार क्या आया?
0: सर मेरा
1: और कहां से आया मतलब आपने कैसे सोचा कि मैं इन दोनों चैनलों में उतरूं और इनको पार करूं?
0: मैं सर है मतलब जब स्विमिंग की मेरी शुरुआत हुई थी मेन तब मैं निकला इसलिए था कि इंग्लिश चैनल करना 2009 में 10 में हमारा प्लान था कि इंग्लिश।
1: अच्छा, आपने उनसे जो उदयपुर की जो भक्ति जी थी उनसे प्रेरणा लेके?
0: उनसे प्रेरणा ली कि मुझे भी इंग्लिश चैनल करना है। लेकिन क्या हुआ कि ऐसे जैसे सर फंड की भी जरूरत होती है
1: जी बिल्कुल।
0: जैसे मैंने पहले बताया कि परिवार में किसान परिवार से हूँ तो इतना वहां से तो होना नहीं मतलब बाहर तक जाना मतलब सोचने से भी और ट्रेनिंग के लिए भी नहीं हो रहा तो वहां तो क्या होगा सर। तो फिर

0: ऐसे नहीं हुए थे, मतलब 2010 तक मेरे बजट नहीं हुआ था तो फिर नहीं कर पाया मैं। लेकिन जब मेरे स्टेट लेवल पे नेशनल पे मेडल लगने शुरू हो गए और लोगों का जैसे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, तो अलग अलग बहुत सारी कंपनियों भी हमें सपोर्ट किया, जैसे हमारे केलवा से भी कुछ संस्थाएं हैं, राजसमंद से, उदयपुर से हैं, मुंबई से हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी संस्थाएं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया था। और उससे हम इंग्लिश चैनल करके आए और इंग्लिश चैनल में हमारा सर एक पैरा ग्रुप बना, जैसे हम नेशनल लेवल पर मिलते रहते खिलाड़ी लोग, तो उसमें हमारा एक ग्रुप बना, उसमें बोला सबको करना था इंग्लिश चैनल, तो हमने वहीं से एक प्लान करके 2018 में प्लान किया कि अब करना है। तो फिर हम रोहन, हमारे जो कोच थे रोहन मोरे जो पुणे के हैं, उनके दिशा निर्देशन में हमने ट्रेनिंग करी वहाँ और फिर 2018 में करके आए हम।
1: तो जब आप इंग्लिश चैनल पार कर रहे थे तो उस समय आपको क्या रियलाइज हुआ, कितनी बड़ी चुनौती है और ये उस समय क्या क्या बाधाएं आई?
0: सर एक तो इंग्लिश चैनल अपन बोलते हैं, यहाँ खाली बोलना देखना मतलब करना ऐसे सोचना आसान है, लेकिन जब हम वहाँ हम गए ट्रेनिंग के लिए तो वहाँ जो लगा जैसे एक हाथ पैर सुन हो जाना,
1: बिल्कुल
0: ये चीजें हमारे
1: पानी का बहाव भी ज्यादा होता है,
0: तो दिमाग में कभी भी ऐसा हमारे भी दिमाग में आया था कि यार इसकी जगह कोई दूसरा गेम चूज करते तो अच्छा था, क्योंकि इतना ठंडा पानी और खाली यहाँ मतलब दूसरा गेम करते तो ठंड तो ठंड से बचाते, लेकिन वहाँ चलो गए। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने ट्रेनिंग करी वहीं पे, तो हम उसी लेवल मतलब जहाँ पे हम देखते थे वहाँ के लोग एकदम ओपन, जैसे हम कट में घूम रहे हैं कट कपड़े पहन के और हम ऐसे जो अपने सर्दियों में पहनते हैं वो कपड़े पहन के घूम रहे थे, तो वहाँ पे भी लगा कि सर ये मतलब इसके ये अब हम कैसे कर पाएंगे। तो धीरे धीरे धीरे हम 1.5 महीना वहाँ प्रैक्टिस करी, उसके बाद में हमने उसी उनकी तरह आराम से कर लिया जैसे।
1: और फिर उसके बाद कैटेलिना चैनल का नंबर आया
0: जी।
1: जो चुनौतियां इंग्लिश चैनल के समय थी, क्या वही चुनौतियां कैटेलिना चैनल के समय थी कि वहां पे कुछ विपरीत वो माहौल था?
0: वो विपरीत माहौल था, वहाँ इंग्लिश चैनल बहुत टफ है, कैटेलिना चैनल थोड़ा सा लाइट, मतलब थोड़ा सा मतलब एकदम इजी भी नहीं मान सकते उसको, लेकिन थोड़ा लाइट है, जो ठंडे जो कम ठंडा है जैसे, और चैलेंजिंग नहीं। इंग्लिश चैनल में बहुत करंट आते हैं, जैसे करंट वेव आते हैं अंदर के जो आपको पीछे खींचते हैं, तो केटला चैनल में इतना नहीं था। और प्लान था हमारा कि जैसे इंग्लिश चैनल करना फिर केटला चैनल करना, 7C का टारगेट था, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए थे।
1: अच्छा सर, आप एक ट्रेनर भी हैं
0: जी,
1: आपके पास जब कोई बच्चा स्विमिंग के लिए आता है खासकर पैरा स्विमर, उसमें आप सबसे पहले कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करते हैं कि वो पानी में उतर के स्विमिंग कर ही पाएगा?
0: नहीं, उनको विश्वास में लेते सर, प्यार से भी बच्चे मतलब कर लेते हैं, जैसे साम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ते हैं हालांकि।
1: अच्छा,
0: लेकिन पहले जो होता है प्यार से समझाना जैसे करना ना कर लेते हैं, हालांकि ज्यादातर स्ट्रिक होने की जरूरत नहीं होती है। मैंने अब तक जो सिखाए जितने भी पैरा है, मुझे जो नॉर्मल लोगों को सिखाना और उनको सिखाना बहुत आसान लगा, मतलब पैरा को सिखाना मुझे बहुत आसान लगा।
1: ऐसा क्यों
0: पता नहीं, ये अलग ही उनके अंदर एक सर अलग ही होता है, वो जुनून होता है थोड़ा सा, क्योंकि वहां तक आना
1: साबित करने का जुनून रहता है।
0: हाँ, साबित करने का जुनून होता है।
1: अच्छा जगदीश जी, जाते जाते हमें जो छोटा है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को अपने बचाव इतना स्विमिंग आनी चाहिए। अगर आप अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बचाव जितने तो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, और माता पिता को भी अपने बच्चों को अपने बचाव जितने सिखानी चाहिए।
1: तो श्रोताओं, ये थे श्री जगदीश तेली जी। आपने अपनी कहानी से ये बताया, ये साबित किया कि शारीरिक बाधाएं सिर्फ नाम की होती है, अगर आपका मानसिक ताकत हो और आपके पास कर जाने का जुनून हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, भले वो इंग्लिश चैनल हो या कैटेलिना चैनल हो। और हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में सातों के सातों चैनल पार करें। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद सर।
2: इस प्रेरणापूर्ण बातचीत के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के अगले क्रम में हम आपको सुनवाते हैं पैरा एथलीट सुदर्शन मीणा से राजेश महावर की बातचीत।
3: दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, खेलों के बारे में बहुत सी प्रतियोगिताओं का जिक्र आपने सुना होगा, जिन्हें हम ये कहते हैं कि शारीरिक रूप से जो पूर्ण नहीं है, पैरा उनके लिए भी एथलेटिक्स होती है। और आज हमारे साथ में हमारे आज के अतिथि हैं सुदर्शन मीणा, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। सुदर्शन जी नमस्कार।
4: नमस्ते सर।
3: सुदर्शन जी, आपसे बहुत कुछ हम जानेंगे आज, हमारे श्रोताओं के लिए प्रेरणा की बात होगी, उत्साह की बात होगी। और सुदर्शन जी, आप छपाऊदा बूंदी के रहने वाले
4: जी? सर
3: जी, ये एक बहुत बड़ा इलाका नहीं है, छोटा सा गांव है, दूरस्थ गांव है, है ना? वो ऐसी स्थिति है कि इंटरनेट के अलावा अब तो वहां की पहुंच का कोई खास साधन नहीं था पहले
4: जी सर,
3: लेकिन उसमें भी वो कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा
4: जी जी,
3: या फिर गांव में भी एक सुंदर फूल खिला करता है
4: जी सर।
3: तो आज हम यही आपका परिचय दे रहे हैं हमारे श्रोताओं को कि दूर दराज आप खिले हुए फूल की तरह हैं
4: जी सर,
3: जिन्हें अवसर मिला तो सुगंध भी अब चहुं और फैल रही है। तो सुदर्शन जी, आपसे हम

0: बात करें, उससे पहले अपने श्रोताओं को हम आपके बारे में बता दें, खेलो इंडिया की टी शर्ट आपने पहन रखी है
1: जी सर,
0: और आपसे हम खेलों की ही बातें करेंगे, तो पहले तो इस टी शर्ट के बारे में आप बताओ जिस पर खेलो इंडिया लिखा हुआ है।
1: जी सर, मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं सभी श्रोताओं का नमस्ते बोलूंगा कि आज मैं खेलो इंडिया की टी शर्ट पहन रखी है, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा मेरे घर वालों को बहुत ज्यादा योगदान है, जिसने मेरे को सपोर्ट किया उनका योगदान है। और पैरा खेलो इंडिया गेम होते हैं, अभी 2023 से स्टार्ट हुआ है खेलो इंडिया पैरा गेम, उसमें मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था उसमें। तो वहां पे हम जब खेलने जाते हैं तो हमें किट उपलब्ध करवाया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसमें किट उपकरण के तौर पे टी शर्ट वगैरह, सॉक्स वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है, तो ये टी शर्ट मैंने वहां से उनके द्वारा पहन रखी है केंद्र सरकार के द्वारा। तो और मैं सभी को बोलना चाहूंगा, खेलों से अपनी बहुत सारी गतिविधियां ऐसी है कि अपन बहुत ज्यादा मानसिक स्थिति सुधार सकते हैं व्यक्ति की, क्योंकि ग्राउंड से जुड़े रहते हैं ना, तो वो एक अलग सी एक्टिविटी इंसान की बन जाती है।
0: जब हम ग्राउंड पर रहते हैं और एक्टिविटी करते हैं तो हमारी रगों में जो खून है वो तेजी से दौड़ता है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना काम करते हैं। एक एथलीट, एक खिलाड़ी जो होता है वो सुबह 4 बजे उठता है, एक नॉर्मल इंसान हो 7 या 8 बजे उठता है। तो वो मैं ये मानता हूँ कि खिलाड़ी उससे कितने घंटे पहले है,
0: बिल्कुल
1: ये चीज होती है कि 2 या 3 या 4 घंटे उससे पहले है, तो उसका वर्कआउट करके 9 या 10 बजे तो वापिस सो ही जाता है। तो दूसरा जो इंसान है नॉर्मल, वो 7 बजे उठेगा, कंप्लीट होगा अपना ऑफिस वर्क जो भी हो, अब दिनचर्या सबकी अलग अलग होती है, तो खिलाड़ियों की बहुत अलग सी दिनचर्या होती है मेरे हिसाब से। तो
0: बिल्कुल, तो सुदर्शन आपने ये जो बातें बताई कि औरों से आप बहुत पहले हैं, ये बातों का संचय आपके पास कैसे आया, ये बातें आई कहां से आपके पास?
1: ये मैंने इसमें उसका प्रैक्टिकल करके देखा है ना, और मेरे कोच साहब हमेशा बोलते हैं कि तुम जल्दी 4 बजे उठते हो ना, तो वो अपन 4 घंटे पहले उनसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मैंने कोच साहब से बहुत कुछ सीखा, मेरे कोच साहब समरजीत सिंह मल्ली हैं
0: जी। तो कोच जो कि आपके गुरु हैं
1: जी,
0: उनसे आपने खेलने की प्रेरणा ली। अब ये बताओ आपकी खेल की इस मैदान में आप कैसे उतरे?
1: जी ये बहुत अलग सी बात हो जाएगी, मैं आपको बताऊं, मैं पहले क्रिकेट में था
0: जी,
1: इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, तो उसमें मेरे को कुछ
0: पैरा क्रिकेट आप इंटरनेशनल
1: जी, मैं इंटरनेशनल खेला हूं, पर जो डिसेबल क्रिकेट है उसको बीसीसीआई ने मान्यता नहीं दी, मतलब सीधे तौर पे गवर्नमेंट ने उसको मान्यता नहीं दी। तो मेरा एक दोस्त महेंद्र गुजर, तो उसने मेरे को बोला कि मैं तेरे को एथलेटिक्स में लाना चाहता हूँ अगर तेरी हो तो। तो अपन शुरू से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतना कुछ है नहीं
0: जी।
1: तो मैंने उसको पूरा जो क्लियर होता है मेडिकल मिडिल जो क्लास है मैंने पूरा बता दिया, मैंने कहा भाई अपने पास सभी दिक्कत है, सभी प्रॉब्लम भी है, पैसों की प्रॉब्लम है सब। तो उसने मेरे को बोला एक बार तो हाथों से फिर करते हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरे कोच साहब से वहां मिला था, तो कोच साहब भी अच्छा लगता मेरा, वो अच्छे मिले, उन्होंने सपोर्ट किया, और थोड़ा तो गुड़ते धीरे धीरे मतलब करते करते और मेरे को फर्स्ट मेडल 2023 में लगा।
0: तो आप क्रिकेट से
1: पैराथलेटिक्स जी, जी सर 2023 में मेरे को पहला नेशनल मेडल मिला, पहला नेशनल मेडल लगा सर, तो मेरे मतलब इतनी खुशी हुई बहुत ज्यादा, क्योंकि उससे पहले मैं 2 बार नेशनल पार्टिसिपेट रह चुका था, और मेरे को मतलब भुवनेश्वर की तो अभी तक मेरे को पता है, उड़ीसा में खेलने गया था, अच्छी तैयारी थी, सब कुछ बढ़िया था, पर मेरे वहां मेडल नहीं लगा, तो मेरे को आज भी वो दिन याद है कि मैं वहां बैठ कर रोया था ग्राउंड में।
0: यानी कि आपकी जो मेहनत थी आपने ये माना कि मेरी मेहनत सफल नहीं हुई।
1: हाँ,
0: लेकिन फिर भी सुदर्शन वो ऐसा कहते ना कि मेहनत करते रहो, अगर हार भी जाओ तो थको नहीं, फिर से शुरू करो, तो आपने यही किया।
1: तो फिर मैंने उसी टाइम मैंने सर को फोन किया, दिक्कत होगी मेडल नहीं लगा, तो सर ने बोला कोई बात नहीं, हो सकता है सामने वाला अपन से बेस्ट करके आया हो
0: जी,
1: तो तू वापिस आ जा, तो फिर अपन 2 बार वापिस स्टार्ट करेंगे। फिर वापिस सर ने बढ़िया मेहनत करवाई, और फिर 2023 में पुणे में मेरे सिल्वर मेडल लगा।
0: पुणे में?
1: पुणे में
0: जी,
1: वहां पे। तो उससे मैंने थोड़ा सा और भी ज्यादा उम्मीद जग गई, क्योंकि राजस्थान सरकार की आउट ऑफ टर्म एक ऐसी पॉलिसी है जो नेशनल मेडल पे राजस्थान के खिलाड़ियों को सीधी ज्वाइनिंग देती है,
0: जॉब देती है,
1: सीधी जॉब देती है गवर्नमेंट जॉब, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो नेशनल मेडलिस्ट होना चाहिए
0: उनके लिए, वो कोटा होता है,
1: कोटा होता है, स्पेशल कोटा होता है जो राजस्थान सरकार का ही है अभी तक ऑल इंडिया में। तो मैं राजस्थान सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो अपने राजस्थान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए ये जॉब का बहुत अच्छा उन्होंने कर रखा।

0: है।
1: बिल्कुल, तो सुदर्शन ये जॉब आपको मिले ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं आपको, और वैसे आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हो ही। अच्छा, अब जैसे पैरा क्रिकेट से आपने दौड़ लगाई और फिर दौड़ना शुरू किया और उसी कंपटीशन में आप आ गए और आपने 2030 में पहला नेशनल मेडल जीता पुणे में।
0: पुणे में
1: जी। और ये जो खेलो इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को और बताओ कि जो खेलो इंडिया है वो खिलाड़ियों को किस तरह से प्रोत्साहित कर रहा है।
0: जी, खेलो इंडिया में जो टॉप्स में आते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड मेडलिस्ट होते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने 10,000 रुपए मिलते हैं। वो स्पॉन्सर करती, एक तरह से उनको अच्छा सपोर्ट करती है आगे बढ़ने के लिए। तो खेलो इंडिया मतलब पहले था नहीं, अभी 2023 से स्टार्ट हुआ है। पहले नॉर्मल होता था एबल बॉडी वाला, पेरा खेलो इंडिया अभी से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें राजस्थान मतलब जैसे हर इससे राज्य से खिलाड़ी आते हैं तो इसमें टॉप फोर लेते हैं, वो टॉप सिक्स टॉप फोर खिलाड़ी वो लेते हैं टोटल ऑल इंडिया से।
1: बिल्कुल,
0: तो उस हिसाब से वो खिलाते हैं।
1: अच्छा, अब ये कि पैरा एथलीट किसी हम बात करते हैं, आपने किस खेल में ज्वाइन किया?
0: जी, मैंने स्टार्टिंग तो जेवलिन से स्टार्ट किया था।
1: अच्छा,
0: हाँ, जेवलिन थ्रो।
1: तो किससे प्रोत्साहित हुए थे आप जेवलिन?
0: वो मेरा दोस्त जेवलिन थ्रो ही करता था। अच्छा। अभी उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, महेंद्र गुजर नाम है उसका। तो वही मैंने स्टार्ट किया था।
1: दोस्त भी वो जो आप ही के क्षेत्र से,
0: वो भी पैरा, तो मैंने पहले वो स्टार्ट किया था। तो फिर मेरे को लगा और मैंने कहा इसमें तो नहीं बैठ पा रहा, टेक्निक वगैरह बहुत सारी चीजें, और वो करता भी था पर मेरे को। तो फिर सर ने बोला कि तेरी हाइट वाइट थोड़ी बॉडी ठीक है तो शॉर्ट पुट ट्राई कर। मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर उसके बाद मैंने शॉर्ट पुट ट्राई किया, शॉर्ट पुट में बेस्ट हुआ, तो फिर सर ने एक ही गेम रखा।
1: क्या बात है, मतलब आपका दोस्त भाला फेंक और आप गोला फेंक।
0: गोला फेंक,
1: क्या बात है। बहुत अच्छी बात है सुदर्शन, आपने खेल खेल में एक खेल प्रतियोगिता ज्वाइन कर ली
0: जी।
1: और आपके चेहरे पर जो हंसी है, आपने बहुत सारे मेडल जीते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी सफलता की ये कहानी जिसमें उतार चढ़ाव बहुत आए, हमारे श्रोताओं को आप बताओ कि कितनी मेहनत आपने की, किस तरह से पुरस्कारों के लिए आपने दौड़ लगाई, गोले फेंके, और आपकी बातें सुनकर हमारे और जो युवा हैं वो भी प्रोत्साहित हैं।
0: देखो सर, मैं आपको बताऊं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलना और गेम में जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसमें इतने खर्चे,
1: अंतरराष्ट्रीय
0: नेशनल अंतरराष्ट्रीय पहुंचने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। मिडिल क्लास से निकलते हैं तो अपन सबसे पहले चीज आती है पैसा, वो कहां से आएगा। और घर से भी सपोर्ट थे, घर वालों का खुद का सपोर्ट था, पर घर पे अपने पास उतना वो नहीं है तो वो अपने को कहां से करेंगे। आज एक प्रोटीन का डिब्बा 6,000-7,000 रुपए का आता है, जो एक या दो महीना चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता। कई सारे वो सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, तो अपने को वो सारी चीजें हैं, अपने शॉर्ट पुट वगैरह उसके लिए किट वगैरह सारी, और एक्टिविटी भी करनी पड़ती है, शूज भी महंगे आते हैं, वो सारी चीजें होती है। तो मिडिल क्लास के लिए मेरे हिसाब से तो बहुत कठिन चीज है, पर फिर भी मैंने इस कंडीशन में निकल के जब मेरा फर्स्ट मेडल आया था स्टेट में, तो फिर
1: कब आया था
0: वो? मेरे सर 2019 में आया था।
1: अच्छा, मतलब खेल आपके
0: खेल पहले था मैं, पर वो एक प्रोफेशनली जो होता है ना कि नहीं अपने को पूरा इसमें जाना है। पहले मैं क्रिकेट में था तो ठीक है, हाँ भाई पर एथलेटिक्स होता है
1: ठीक,
0: तो ऐसे जाते थे दोस्तों से मिल भी लेंगे और खेल भी लेंगे, मतलब इतना प्रोफेशनली नहीं था कि मैं तैयारी से गया हूँ वहाँ पे।
1: लेकिन सकारात्मक दिशा आपको मिली?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फिर वहां गए तो वहां पे मेरे को 2019 में ब्रॉन्ज मेडल लगा था। जो राज्य सरकार अपने को गोल्ड में 1,00,000 रुपए, सिल्वर में 50 और ब्रॉन्ज में 30, तो उसके 30,000 रुपए मेरे को दिखे, तो मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश था उस चीज को लेकर। मन का
1: मेडल मेडल होता है,
0: मेडल होता है
1: से उसकी आपकी शुरुआत,
0: तो उनका पैसे भी है और गेम में कुछ अच्छी पहचान भी है अपनी। तो फिर उसके बाद क्रिकेट के पीछे बढ़ा रहा, क्रिकेट चलता रहा, फिर क्रिकेट में मेरे को लगा नहीं कि इसका कुछ आगे होने वाला है।
1: आप कुछ मंजिल हासिल करना चाहते
0: जी? मैं कुछ
1: क्रिकेट छोड़
0: पर्सनली कुछ अपनी एक पहचान होती है ना, क्योंकि पहचान तो सर ऐसा होता है ना कि मेरा ये मतलब फिजिकली चैलेंज मेरे लिए खुद के लिए था।
1: बिल्कुल,
0: सबसे पहले तो मेरे लिए था। आज मैं ज्यादा

0: तेरा का या फिर दूसरा मेरे को नहीं जानता होगा। एक पहचान जो होती है कि आज मैं कहीं भी उच्च अधिकारियों से भी मिलता है ना, तो एक मेरे पास पीछे लगाने के लिए है कि मैं सुदर्शन मीणा नेशनल पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट।
1: क्या बात है।
0: तो सर एक वो मेरी एक पहचान है, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है
1: ये योग्यता आपने अपनी मेहनत के बल पर बनाई है। तो हम ये बात कर रहे थे कि आपके मेडल्स का हमारे श्रोताओं को बताओ कि कौन कौन से मेडल कब कब आपने लिए और उनके पीछे की मेहनत आप बताओ।
0: जी स्टेट में मैंने बताया सही, मैं 2019 में मेरा फर्स्ट मेडल था, उसके बाद सिल्वर, पर नेशनल भी, नेशनल तो मैं गया था दो या एक, मतलब 23-22-21 में गए थे, पर उनमें मेडल नहीं थे। मेरा फर्स्ट मेडल है पुणे नेशनल
1: 2023 में,
0: नेशनल चैंपियनशिप है, नेशनल चैंपियनशिप, तो उसमें सिल्वर मेडल आया, तो मैं एक अलग से उत्साहित था कि नौकरी भी अपनी पक्की होगी और जो भी थोड़े
1: आधार मिल गया
0: मन का, ठीक है। उसके बाद मैंने और अच्छे से मेहनत की, उसके बाद फिर मेरे को 2024 में गोवा में नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लगा, गोल्ड मेडल, और उसके बाद फिर पैरा गेम्स हुए तो उसमें भी सिल्वर। हाँ, और अभी 2025 का मैं आपको बताऊं कि अभी चेन्नई में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी वापिस, तो उसमें सिल्वर, और अभी दिल्ली में 2025 में ही खेलो इंडिया पैरा गेम हुआ था, उसमें मेरे सर गोल्ड मेडल है। ऐसे टोटल मिला के मेरे पास 5 मेडल है, 2 गोल्ड 3 सिल्वर।
1: क्या बात है। तो हम चंबल चैनल की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे दें, और अग्रिम शुभकामनाएं भी ये है कि आप अपनी मेहनत करते रहें।
0: मेरा पहला टारगेट है 2028 में पैरा ओलंपिक, तो मैं उसके लिए भरपूर मेहनत कर रहा हूँ।
1: तो अब इस मेहनत में आप क्या क्या शुमार है आपके, किस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं?
0: जी सर वही अपना उठने का पूरा, उठने से मैं आपको बताऊं, मैं
1: समय का प्रबंध,
0: समय का बिल्कुल 3:50 में अभी भी उठ जाता हूँ मैं, कंप्लीट होके 4:30 ग्राउंड।
1: अब आपको अलार्मिंग की जरूरत नहीं?
0: नहीं, वो उल्टे से मैं बंद करता हूँ उसको, उससे 2 या 5 मिनट पहले उठ जाता हूँ कभी, पर फिर भी वो लगा के रखना पड़ता है कि कहीं कभी ऐसा हो जाए कि, और मैं 10-10 बजे फिक्स सो जाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं।
1: अच्छा।
0: और जैसे कि मॉर्निंग, मतलब मेरा दिनचर्या मैं आपको बता दूं सर, 3:50 पे उठना, कंप्लीट होकर 4:30 ग्राउंड जाना, फिर उसके बाद मैं 7-7:30 तक प्रैक्टिस करके वापिस आना, जो भी अपनी डाइट हो, खाना पीना जो भी है, उसके बाद में मैं 10-10:30 वापिस सो जाता हूँ।
1: अच्छा।
0: 10।
1: तो इस रूटीन के दरमियान
0: जी
1: आप वो जो सोशल मीडिया जैसी एक नाम है जो बहुत फैला हुआ है, उसमें कितना वक्त गुजारते हैं?
0: सोशल मीडिया में सर मैं जैसे कि 10 बजे आपको सोने का बताया मैंने, 10 बजे फिर मैं उठता हूँ 12:30, 1 बजे, 1 बजे, 1 बजे के बाद मैं फिर मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी फोन का है, मतलब मेरे हिसाब से जुड़ना जरूरी है, अपडेट होना जरूरी है इंसान की, ये मैं नहीं बोल रहा कि तुम लंबे समय तक उससे जुड़ो, फिर मैं 1 या 1.5 घंटा उसमें जो भी अपडेट, जो भी देखना है मेरे को, जो भी सीखना है, टेक्निक भी अगर सीखनी है यूट्यूब से तो माध्यम से उसको देखता हूँ, उसके बाद में 2 या 2.5 बजे जो भी खाना मेरे को और भी दिन का करना होता है खा पी के, मैं 4:30-4 बजे वापिस ग्राउंड से लेता हूँ कम्प्लीट होकर।
1: मतलब इंटरनेट जैसी सुविधाओं के कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं और समय को बर्बाद कर देते हैं, आप उस समय का सदुपयोग करते हैं।
0: करना भी चाहिए सर।
1: वाकई। तो आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं और अपने शारीरिक के सौष्ठव के लिए आप क्या करते हैं?
0: अच्छी डाइट लेना सबसे पहले, तो अच्छा व्यायाम करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, और जैसे जैसे वर्कआउट होता है तो वीकली हमारा वर्कआउट अलग अलग होता है, वर्कआउट जैसे मंडे को अलग, ट्यूजडे, सब अलग अलग होता है, तो वीक में हमारा 2 टाइम वेट ट्रेनिंग होता है जिसे अपन जिम बोलते हैं, तो उससे भी और बहुत सारी एक्टिविटी होती है वीक में पूरा, और संडे का पूरा रेस्ट होता है।
1: अलग अलग वर्कआउट का ये मतलब है कि आप एक ही तरह के वर्कआउट से हो सकता है बोर हो जाए?
0: नहीं, वो सर अलग अलग करना पड़ता है, जैसे कि मंडे को थ्रो होते हैं तो सुबह नॉर्मली एक्सरसाइज करके शाम को बॉडी थ्रो के लिए कंप्लीट रखें, अगर सुबह ज्यादा कर देंगे तो शाम को थ्रो नहीं हो पाएंगे, बॉडी फटीक हो जाएगी, टूटने लगेगी।
1: बिल्कुल।
0: वैसे तो अलग अलग वर्कआउट होता है।
1: तो आपको, आपके वर्कआउट के लिए आपके कोच सजेस्ट करते हैं?
0: जी क्या वर्कआउट वही बेस्ट है।
1: कोच की बातें कितनी मानते हैं आप?
0: कोच की बात 90%।
1: सुदर्शन, आपने अपने खेल के बारे में बहुत कुछ बताया और आपने जो जानकारियां दी उससे ऐसा लगता है कि सफलता आपकी राह का इंतजार कर रही है।

0: रही है और मंजिल आपके बिल्कुल आंखों के सामने है, बस यूं कि आप इसी गति से चलते जाएंगे तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो आकाशवाणी के स्टूडियो में आपने अपनी बातें बताई और कुछ अगर युवाओं को प्रेरणा देना चाहते हैं तो वो जरूर बताएं।
1: मैं युवाओं को तो ये बोलना चाहूंगा कि देखो, सबसे पहले तो मैं पैरा वालों को ये बोलना चाहूंगा जो डिसेबल है, और मैं तो एक बात जानता हूँ कि वो ग्राउंड से जुड़े ना तो उनके लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि एक जो हैंडीकैप होता है उसको रोड पे या फिर ग्राउंड में जाना उसके लिए आसान नहीं होता, घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक उसके लिए कई सारी फिजिकल चैलेंज होते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं मतलब जो उसको देख के हंसते हैं, उसको आगे मतलब मोटिवेट नहीं कर सकते पर उसको डिमोटिवेट जरूर करेंगे। तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि पैरा एथलेटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी बहुत अच्छी पहचान बना सकते हो, और दूसरे से भी यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एक तो सोशल मीडिया को इतना भी उसमें मत लो, और सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी बात मैं बोलूंगा कि नशे से दूर रहो।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बातें बताई सुदर्शन आपने, बहुत अच्छा लगा सुदर्शन आप स्टूडियो में आए, युवाओं को जानकारियां दी और आपने अपने गौरव गाथा से औरों को प्रेरित करने का काम किया।
2: अभी आप सुन रहे थे पैरा एथलीट सुदर्शन मीणा से राजेश महावर की बातचीत। इसके साथ ही कार्यक्रम का समय हो चला है, अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। रात के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

यह आवाज थी भूपेंद्र सिंह की। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल, स्वर है पंकज उदास का।

आप सुन रहे थे पंकज उदास को, और लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम की अगली गजल। आवाज है गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की।

ये गजल थी गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की आवाज में, और आइए सुनते हैं नजर मोहम्मद की आवाज में ये गजल।

0: आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज। रात के 11 बजने को है। अब आप थोड़ी देर में समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
2: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्ष दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर 89 अमरीकी डॉलर और 74 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता